मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। आज शुक्रवार है, सक संवत 1948 के भाद्रपद मास की छठवीं तिथि, तदनुसार 28 अगस्त सन 2026। इस समय सुबह के 5:57 और 15 सेकंड हुए हैं। अब आज की हमारी प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है। इस सभा में मैं आपके साथ हूँ, आपकी रेडियो मित्र रश्मि राहुल। सभी श्रोताओं को रश्मि राहुल का प्यार भरा नमस्कार।

0: नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 389 हो गई है। प्रशासन हजारों लापता लोगों को खोजने के लिए तेजी से काम कर रहा है। तिब्बत और नेपाल के अधिकारियों ने बताया है कि अभी 1500 से अधिक लोग लापता हैं, जिनमें कई विदेशी नागरिक शामिल हैं। लापता लोगों में 30 से अधिक देशों, मुख्य रूप से भारत, अमेरिका, मलेशिया, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, कनाडा, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, जर्मनी और रूस के लोग शामिल हैं। नेपाल पुलिस ने बताया कि प्रभावित इलाकों से लगभग 1500 से अधिक लोगों को बचाया गया है, इनमें घायल लोग भी शामिल हैं। भारत के विदेश मंत्रालय ने बताया कि नेपाल में बाढ़ के बाद 290 भारतीय नागरिकों से संपर्क नहीं हो पाया है, जबकि 84 भारतीयों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। इनमें त्रिशूली 1 जल विद्युत परियोजना के 63 कर्मचारी और कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए तमिलनाडु के 21 लोग शामिल हैं। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि भारत ने नेपाल में बचाव और राहत अभियानों में सहायता के लिए 47 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी है।
1: 2 जहाज पे हम लोगों ने सहायता नेपाल को पहुंचाया है। पहला जहाज यहाँ से 10 टन करीबन रिलीफ मटेरियल लेके काठमांडू पहुंचा था, जिसमें कि कंबल, सोलर लैंप, दवाइयाँ, हाइजीन किट्स और टेंट वगैरह इस प्रकार की चीजें हैं। दूसरा जहाज इसमें 37.5 टन की सप्लाई, जिसमें कि 28.5 टन रिलीफ आइटम्स और 8 टन दवाइयाँ और 1 टन खाने पीने की सामग्री और जो भी मानवीय सहायता हो सकता है वो भी हम प्रदान करेंगे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की 4 दिन की यात्रा पर जाएंगे। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी देशों के मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री मोदी उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेफ के निमंत्रण पर ताशकंद की 2 दिन की राजकीय यात्रा करेंगे। इस दौरान श्री मोदी राष्ट्रपति मिर्जियोयेफ के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। ताशकंद के बाद प्रधानमंत्री किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक जाएंगे। प्रधानमंत्री जनधन योजना के 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। ये देश में वित्तीय समावेशन के परिदृश्य को बदलने की दिशा में एक अहम पड़ाव है। इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2014 में आज ही के दिन की थी। सरकार ने प्याज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और कीमतों पर नियंत्रण के लिए बफर स्टॉक से प्याज की नियंत्रित बिक्री शुरू कर दी है। उपभोक्ता कार्य विभाग की सचिव निधि खरे ने नई दिल्ली के कृषि भवन से प्याज की खुदरा बिक्री वाले वाहनों को रवाना किया। रक्षाबंधन का त्योहार आज पूरे देश में मनाया जा रहा है। पर बहनें अपने भाइयों की कलाई पर रंग बिरंगी राखी बांधती हैं और उनकी खुशहाली, सेहत और समृद्धि की प्रार्थना करती हैं। भाई भी अपनी बहनों को उनकी रक्षा करने का वचन देते हैं और उन्हें उपहार देते हैं। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष ने रक्षाबंधन के पर्व पर देशवासियों को बधाई दी है। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज रक्षाबंधन के त्यौहार के साथ संपन्न होगी। 57 दिन तक चली यह यात्रा 3 जुलाई को शुरू हुई थी। यात्रा का समापन पवित्र गुफा मंदिर में महंत दीपेंद्र गिरी के नेतृत्व में पवित्र छड़ी मुबारक के पहुंचने के साथ होगा। इस वर्ष पहलगाम और बालतल दोनों रास्तों से 4,80,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने यह यात्रा पूरी की है। मौसम विभाग ने आज ओडिशा और बिहार में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आज छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और झारखंड में भी तेज वर्षा होने का अनुमान है। खेलों में हॉकी विश्व कप में भारतीय महिला टीम ने नीदरलैंड्स के एम्स्टलवीन में 5वें स्थान के लिए खेले गए मुकाबले में जर्मनी को 3-1 से हरा दिया है। वर्ष 1974 में हुए पहले विश्व कप में 4था स्थान हासिल करने के बाद ये भारतीय महिला टीम का सबसे अच्छा प्रदर्शन था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय हमारी स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 6:05 हुए हैं। तो लीजिए प्रस्तुत है भक्ति संगीत।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। और वंदना के इस कार्यक्रम में शुरुआत की थी हमने सामूहिक स्वर में देशगान से। तो आइए कार्यक्रम को अब आगे बढ़ाते हैं और अब आपको सुनवाते हैं हरिओम शरण व साथियों के स्वरों में गाया हुआ ये बहुत ही मधुर सा भजन।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। और इस वंदना के कार्यक्रम में अभी आपने सुना हरिओम शरण व साथियों के स्वरों में गाया हुआ ये भजन। तो आइए अब सुनते हैं आशा भोसले की मधुर आवाज़ में कार्यक्रम का ये अगला भजन।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना, जिसमें अभी आपने सुना आशा भोसले की मधुर आवाज़ में गाया हुआ ये भजन। तो आइए अब सुनते हैं राजेंद्र नीना मेहता की आवाज़ में गाया हुआ कार्यक्रम का अगला भजन।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना, और अभी आप सुन रहे थे राजेंद्र नीना मेहता की आवाज़ों में गाया हुआ ये भजन। तो आइए, कार्यक्रम में हम आपको सुनवाते हैं अनूप जलोटा व साथियों के स्वरों में कार्यक्रम का ये अंतिम भजन।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे अनूप जलोटा व साथियों के स्वरों में गाया हुआ ये भजन। इसी भजन के साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना यहीं संपन्न हुआ। यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। सुबह के 6:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम चिंतन। चिंतन के इस कार्यक्रम में आज सुनिए रक्षाबंधन पर विशेष उमा चतुर्वेदी के विचार।
1: भारतीय संस्कृति उत्सव धर्मी संस्कृति है, जिसका मूलाधार आनंद की प्राप्ति है। देश भर में मनाए जाने वाले व्रत, पर्व और त्यौहार इसी आनंद धर्मिता की अभिव्यक्ति हैं। जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत हिंदू जीवन का प्रत्येक पक्ष धर्म से जुड़ा हुआ है। अतः इन व्रतों, पर्वों और त्यौहारों को भी अलग अलग देवी देवताओं की उपासना और पूजा पद्धति से जोड़ दिया गया है। प्राचीन हिंदू समाज की व्यवस्था का आधार वर्ण व्यवस्था पर आधारित है। आज सभी वर्ण त्योहारों को मनाते हैं और अब तो अन्य धर्मावलंबी भी इन त्योहारों को मनाने लगे हैं और सहयोग करते हैं। इन त्योहारों के साथ कोई न कोई प्राचीन पौराणिक अथवा ऐतिहासिक घटना जुड़ी हुई है, उसी घटना की स्मृति में इन्हें मनाया जाता है। इस प्रकार इन त्योहारों से जुड़े हुए देवी देवता, उनकी पूजा पद्धति तथा उस पूजा में प्रयुक्त होने वाली सामग्री, इनकी प्रवृत्ति और स्वभाव की भी द्योतक है। आज के वर्ण विषय रक्षाबंधन के संदर्भ में इन कथित बातों को भलीभांति देखा जा सकता है। पुराणों में वर्णित इस त्यौहार की प्रमुख विशेषता इसकी सात्विकता है। विशुद्ध प्रेम, कर्तव्य बोध और सबके प्रति शुभाकांक्षा इस त्यौहार के मूल में दिखाई देती है। रक्षाबंधन के संदर्भ में एक कथा विष्णु पुराण में मिलती है। भक्त प्रहलाद के पोते पाताल के राजा बलि ने जब 100 अश्वमेध यज्ञ करके इंद्र का सिंहासन प्राप्त करने की चेष्टा की, तब इंद्र तथा अन्य देवताओं ने भयभीत होकर भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वे उन्हें असुर राजा बलि से बचाएं। भगवान विष्णु ने वामन का रूप धारण कर राजा बलि से 3 पग भूमि मांग ली। अपने गुरु शुक्राचार्य के विरोध के बाद भी सब कुछ समझते हुए भी दानवीर बलि ने 3 पग भूमि का दान दे दिया, जिसे पाकर वामन भगवान ने एक पग से पृथ्वी और दूसरे पग से आकाश और पाताल नाप लिया। तीसरे पग के लिए बलि ने अपना सिर प्रस्तुत कर दिया। बलि के इस दान से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने अनेक वरदानों के साथ साथ बलि की रक्षा करने का वचन दिया। राजा बलि द्वारा प्रदत्त इस दान और भगवान विष्णु द्वारा दिए गए वरदान को चिरस्थायी बनाने हेतु रक्षाबंधन का त्यौहार आरंभ हुआ। भगवान विष्णु ने चूंकि वामन अवतार के रूप में ब्राह्मणत्व ग्रहण किया था, अतः इस त्यौहार का देवता श्रवण को माना गया है। श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन आज भी ब्राह्मण पूजा अर्चना के पश्चात अपने यजमान को तिलक लगाकर कलाई में रक्षा सूत्र बांधते हैं और यजमान से दान प्राप्त करते हैं। कालांतर में घटित एक ऐतिहासिक घटना ने इस त्यौहार को एक नया स्वरूप प्रदान किया। इतिहास में वर्णित घटना के अनुसार मध्यकाल में गुजरात के शासक बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर चढ़ाई की। तब चित्तौड़ की रानी कर्मवती ने दिल्ली के बादशाह हुमायूं को भाई संबोधन के साथ रक्षा सूत्र भेजकर चित्तौड़ के सम्मान की रक्षा हेतु प्रार्थना की। बादशाह हुमायूं ने भी कर्मवती के सम्मान की रक्षा करते हुए चित्तौड़ को बचाने के लिए युद्ध किया। सर्वसाधारण ने इस घटना को चिरस्थायी बनाने और भाइयों को कर्तव्य बोध की याद दिलाने के लिए इस त्यौहार का वर्तमान स्वरूप आरंभ किया। इस घटना के पश्चात बहनें भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर अपने पवित्र प्रेम को प्रकट करती हैं और भाई भी उनकी रक्षा का वचन देते हैं। भाई बहन के बीच पवित्र बंधन के प्रतीक इस त्यौहार को बहनें उत्साह के साथ मनाती हैं। आधुनिक युग में नवीनता की चाह और प्रदर्शन वृत्ति तथा बाजारवाद ने इस त्यौहार के स्वरूप को बदल दिया है। रक्षा सूत्र या राखी का स्थान कीमती राखियों ने, सोने चांदी की राखियों ने ले लिया है। आवश्यकता इस बात की है कि हम इस त्यौहार की सादगी और सात्विकता को अक्षुण्य रखें, ताकि यह श्रेष्ठ त्यौहार लालच और प्रदर्शन से परे अपनी पवित्रता बनाए रख सके।
0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चिंतन, जिसमें आज आपने सुने रक्षाबंधन पर विशेष उमा चतुर्वेदी के विचार। यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। सुबह के 6:35 हुए हैं। तो लीजिए प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस का संगीतमय पाठ।

श्री राम के हाथों जब पल भर में शिवजी का धनुष टूट गया तो आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। पृथ्वी, पाताल तथा स्वर्गलोक में सुयश फैल गया कि श्री राम ने शिव का धनुष भंग करके सीता का वरण कर लिया है। देवलोक भी नृत्य गीत के स्वर से झंकृत होने लगे। सीता जी ने श्री राम के गले में जयमाला पहना दी। सखियां कह रही हैं, सीते स्वामी के चरण छुओ, किंतु सीता से ऐसा करते नहीं बनता। उन्हें गौतम ऋषि की पत्नी अहल्या का स्मरण हुआया और वो मानो भयभीत हो गईं। सीता जी की अलौकिक प्रीति जानकर श्री राम मन ही मन मुस्काने लगे। किंतु उपस्थित राजाओं में से अनेक ईर्ष्या द्वेष से जल उठे। किसी ने कहा कि दोनों कुमारों को बांधकर सीता को छीन लो, हमारे जीते जी सीता को अन्य कैसे ब्याह सकता है। किंतु वास्तविकता तो ये थी कि वे गाल बजा रहे थे। उनका बल, प्रताप, वीरता, तेज सभी तो धनुषभंग होते ही लुप्त हो गए थे। उनकी ऐसी दुष्ट बुद्धि है, तभी तो उनके चेहरों पर कालिख पुत गई। राजाओं के दुर्वचन सुनकर लक्ष्मण के नेत्र लाल और भौहें टेढ़ी हो गईं। उसी समय धनुष भंग का निनाद सुनकर क्रोधी परशुराम वहां आ पहुंचे।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस का संगीतमय पाठ। यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। सुबह हमारी स्टूडियो की घड़ी में अभी 6:45 और 18 सेकंड हुए हैं। तो नीचे प्रस्तुत है कृषि चर्चा। सामायिक चर्चा के अंतर्गत आज आप सुनेंगे गाजर घास खरपतवार नियंत्रण क्यों और कैसे। जानकारी दे रहे हैं SS चौधरी। तो आइए इनके द्वारा सुनते हैं कृषि चर्चा।
1: किसान भाइयों, गाजर घास खरपतवार, जिसे हम चटक चांदनी के नाम से भी जानते हैं, ये सभी जगह खेतों, खलिहानों, नालों, सड़क के किनारे, घरों के आसपास बहुत ही तेजी से चारों ओर फैल रहा है। ये एक समस्याजनक खरपतवार है। इसका कुप्रभाव मनुष्य व पशुओं के स्वास्थ्य पर तो पड़ता ही है, साथ ही ये फसलों और चरागाहों को भी काफ़ी नुकसान पहुंचा रहा है। इसका नियंत्रण बहुत ही ज़रूरी है, अन्यथा फसलों को उगाने की जगह नहीं रहेगी, पशुओं को चारा नहीं मिलेगा और अधिकांश आबादी एक्जमा और चर्म रोगों से पीड़ित हो जाएगी। निकट भविष्य में हमारे सामने एक बड़ा संकट आ सकता है, तो हमें समन्वित रूप से इसके नियंत्रण के प्रयास करने चाहिए। गाजर घास का पौधा उचित जलवायु और तापक्रम मिलने पर बहुत ही तेजी से बढ़ता है। ये पौधा 100 से 130 सेंटीमीटर ऊंचा होता है। इसकी पत्तियां गाजर या सेवंती से मिलती जुलती हैं। इसके फूल छोटे और सफ़ेद होते हैं और गुच्छों में लगे होते हैं। 30 से 300 पुष्प गुच्छ प्रति पौधा हो सकते हैं। इसके बीज बहुत ही छोटे, लगभग 2000 बीज प्रति पौधा होते हैं। बीजों की अंकुरण क्षमता लगभग 75% और इनकी कोई सुषुप्त अवस्था भी नहीं होती। गाजर घास का पौधा अपना जीवन चक्र करीब 125 दिनों में पूरा कर लेता है। इसके 40 दिन बाद फूल आना प्रारंभ हो जाते हैं। किसान भाइयों, गाजर घास खरपतवार के नियंत्रण हेतु समन्वित कार्यक्रम की आवश्यकता है, क्योंकि भूमि किसी एक ही संस्था या व्यक्ति के कब्जे में तो है नहीं। तो गाजर घास खरपतवार के नियंत्रण के लिए पड़ती और फसली क्षेत्रों में अलग अलग उपाय किए जा सकते हैं। फसली क्षेत्रों में हल बखर चला करके नष्ट कर सकते हैं। मिट्टी पलटने वाले हल से गहरी जुताई करें, इससे इसके बीज गहराई पर चले जाते हैं और अंकुरण भी नहीं हो पाता। एक बीजपत्री फसलों में 20 दिन बाद की अवस्था पर 2,4-D खरपतवार नाशी दवा 1 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से 500 से 600 लीटर पानी में घोल करके छिड़काव करें। पड़ती भूमि में गाजर घास खरपतवार को नियंत्रित करने का सबसे सरल और सस्ता उपाय है 15% नमक के घोल का छिड़काव, जिसे 500 लीटर घोल प्रति हेक्टेयर की दर से अगर छिड़का जाए तो समूल नष्ट किया जा सकता है। 15% नमक का घोल पौधे की प्रत्येक अवस्था पर असर करता है, परंतु पुष्पन अवस्था के बाद संपूर्ण भाग को उपचारित करना जरूरी है। यदि कुछ पौधे ना मरें तो दूसरी बार छिड़काव करना चाहिए, लेकिन अच्छा तो ये रहता है कि फूल आने के पहले ही गाजर घास को हम नष्ट करें। हाथ में दस्ताने पहनकर ही उखाड़ें और जला दें। क्योंकि गाजर घास के बीज साल भर उगते हैं, इसलिए इन तरीकों का उपयोग आवश्यकता अनुसार 3 या 4 बार भी करना पड़ सकता है। सड़क के किनारे व खाली स्थानों में फूल आते समय ही इसे काट देना चाहिए या ट्रैक्टर चला करके नष्ट कर दें। इस प्रकार इसका फैलाव कम होगा और नियंत्रण करने में सुविधा रहेगी। किसान भाइयों, गाजर घास के संपर्क में आने से मनुष्य व पशु दोनों को हानि होती है। इसके पराग कणों द्वारा एलर्जी होती है। इसका लक्षण जो मनुष्यों में दिखाई देता है वो है खुजली, उसके बाद लाला में सूजन और फफोले तक चेहरे व गले में पाए जाते हैं। इसके बाद कोहनी और घुटनों में फैल जाता है। क्रांतिक अवस्था में प्रमुख लक्षण चमड़ी का मोटा व काला होना है। जानवर जब इसके संपर्क में आते हैं गाजर घास के, तो इसके प्रभाव से अयन तथा पूरे शरीर में चर्म रोग हो जाता है। भेड़ बकरी तथा मुर्गियों पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि कभी कभी जानवर इसे खा लेते हैं और बुरा प्रभाव पड़ता है। तो इसका नियंत्रण बहुत ही ज़रूरी है।
0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कृषि चर्चा। सामायिक चर्चा के अंतर्गत आज आपने सुना गाजर घास खरपतवार नियंत्रण क्यों और कैसे, जानकारी दे रहे थे SS चौधरी। यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। सुबह के 6:50 और 18 सेकंड हुए हैं। तो लीजिए प्रस्तुत है सूचना परक कार्यक्रम दर्पण।

जीएसटी काउंसिल ने बीमा पर लगने वाले 18% टैक्स को घटाकर जीरो कर दिया है। ऐसे में जीवन बीमा लेने वालों को अब सिर्फ इंश्योरेंस का प्रीमियम ही भरना होगा और इस पर कोई भी अतिरिक्त टैक्स नहीं देना होगा। ये हेल्थ इंश्योरेंस लेने वालों के लिए बड़ा फायदा है क्योंकि LIC को पहले से ही इनकम टैक्स में छूट मिली हुई है। वहीं अब GST भी हटने से बीमा लेना फायदे का सौदा होगा।

0: फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश आकाशवाणी ग्वालियर से आप सुनते हैं रविवार से शुक्रवार तक सुबह 10:05 से सुबह 11 बजे तक। यदि आप भी अपनी फरमाइश पर कोई गीत सुनना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए 9425702768। एक बार फिर से सुनिए 9425702768। तो कार्यक्रम सुनिए और व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी फरमाइश भी हम तक पहुंचाइए।
1: प्लास्टिक पॉलीथीन का छोड़ो साथ, प्रकृति से मिलाओ हाथ। प्लास्टिक पॉलीथीन थैलों का उपयोग भूमि की उर्वरा शक्ति के लिए है रोग। खरीदारी करते समय कपड़े से बना थैला हमेशा साथ रखें। यदि पर्यावरण बचाना है पॉलीथीन दूर हटाना है।
0: श्रोताओं, आकाशवाणी ग्वालियर का प्रसारण अब आप मीडियम वेव के साथ साथ मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। अपने मोबाइल फोन में डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से ऐप न्यूज ऑन AIR और फिर लाइव रेडियो के ऑप्शन में जाकर क्लिक कीजिए AIR ग्वालियर पर और जुड़ जाइए हमसे। तो सुनते रहिए कभी भी कहीं भी आकाशवाणी ग्वालियर के कार्यक्रम।
2: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
3: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
2: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
3: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
2: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001424 पर।
3: 8700001424।

बधाई हो दद्दा, बहुत बहुत बधाई हो। बिटिया जन्मी है, घर में लक्ष्मी आई है, बहुत बहुत बधाई हो।

0: बताया कि भारत ने नेपाल में बचाव और राहत अभियानों में सहायता के लिए 47 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी है।
1: दो जहाज पे हम लोगों ने सहायता नेपाल को पहुंचाया है। पहला जहाज यहाँ से 10 टन करीबन रिलीफ मटेरियल लेके काठमांडू पहुंचा था, जिसमें कि कंबल, सोलर लैंप, दवाइयां, हाइजीन किट्स और टेंट वगैरह इस प्रकार की चीजें हैं। दूसरा जहाज इसमें 37.5 टन की सप्लाई, जिसमें कि 28.5 टन रिलीफ आइटम्स और 8 टन दवाइयां और 1 टन खाने पीने की सामग्री और जो भी मानवीय सहायता हो सकता है वो भी हम प्रदान करेंगे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की यात्रा पर कल उज्बेकिस्तान जाएंगे। श्री मोदी उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोसेफ के निमंत्रण पर ताशकंद का दौरा करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: उज्बेकिस्तान यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव व्यापार और निवेश, रक्षा, डिजिटल कनेक्टिविटी, ऊर्जा, शिक्षा और जन सहयोग संबंधी क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा करेंगे और आगे की कार्य योजना तैयार करेंगे। दोनों नेता विकसित भारत 2047 और उज्बेकिस्तान 2030 के साझा विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने पर भी अपने विचार साझा करेंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद, उज्बेकिस्तान।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से 6 दिन की अमेरिका यात्रा पर हैं। अपनी इस यात्रा के दौरान वे शिकागो, एशविले और न्यूयॉर्क जाएंगी। वे शिकागो में प्रमुख निवेशकों के साथ एक गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगी और निजी क्षेत्र के अग्रणी सीईओ, अध्यक्षों और वरिष्ठ प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगी। इन बैठकों में भारत में निवेश के अवसर, आर्थिक दृष्टिकोण और भारत और अमेरिका के बीच व्यापार और निवेश साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होगी। भारतीय मानक ब्यूरो BIS ने चांदी की गुणवत्ता की जांच के लिए 102 जिलों में 341 सिल्वर एसेइंग और हॉलमार्किंग सेंटर्स के साथ हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन आधारित चांदी के हॉलमार्किंग तंत्र का विस्तार किया है। मानक ब्यूरो त्योहारों के मौसम से पहले 25,000 से अधिक चांदी के कारोबारियों को पंजीकृत कर चुका है। पिछले साल सितंबर से ये व्यवस्था शुरू की गई थी और इसके बाद से 77 लाख से ज्यादा चांदी के आभूषणों पर हॉल मार्किंग की जा चुकी है। रक्षाबंधन का त्योहार आज पूरे देश में मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष ने रक्षाबंधन पर देशवासियों को बधाई दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि रक्षाबंधन का त्यौहार प्राचीन काल से ही देश की संस्कृति और परंपरा का अहम हिस्सा रहा है। श्री अमरनाथ यात्रा आज रक्षाबंधन के त्यौहार के साथ संपन्न होगी। 57 दिन तक चलने वाली ये यात्रा इस साल 3 जुलाई को शुरू हुई थी। यात्रा का समापन पवित्र गुफा मंदिर में महंत दीपेंद्र गिरी के नेतृत्व में पवित्र छड़ी मुबारक के पहुंचने के साथ होगा। इस वर्ष पहलगाम और बालटल दोनों रास्तों से 4,80,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने पवित्र गुफा के दर्शन किए। इसके अतिरिक्त जम्मू कश्मीर में सालाना बुद्ध अमरनाथ यात्रा भी आज संपन्न होगी। श्रावण मास में आयोजित होने वाली 12 दिन की इस यात्रा में श्रद्धालु पुंछ जिले में स्थित बाबा बुद्ध अमरनाथ मंदिर जाते हैं। भारत के वेलवन सेंथिल कुमार कलराज स्क्वैश सेमीफाइनल में भारत के ही वीर चोट्रानी को हराकर PSA बुडापेस्ट स्क्वैश ओपन के फाइनल में पहुंच गए हैं। इससे पहले दोनों भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सेमीफाइनल में जगह बनाई थी। फाइनल में आज रात वेलवन का मुकाबला हंगरी के खिलाड़ी बालाज फारकर से होगा। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ग्रैंड शतरंज टूर जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। उन्होंने कल रात अमेरिका के सेंट लुइस में फाइनल में मौजूदा चैंपियन फेबियानो कारुआनो को 15-13 से हराकर शानदार जीत दर्ज की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय हमारी स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 7:05 हुए हैं। तो नीचे प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। कार्यक्रम विवरण में सबसे पहले जानकारी हमारी प्रथम सभा के कार्यक्रमों के बारे में, यानी कि अब से कुछ ही देर में 7:20 पर आप सुनेंगे गांधी चर्चा, जिसकी प्रस्तुति होगी तूलिका शर्मा की। 7:30 पर आप आनंद ले पाएंगे फिल्म संगीत का। इसके अतिरिक्त आप आनंद ले पाएंगे फिल्म संगीत का 10:05 पर वर्षा फरमाइश पर आधारित फिल्म संगीत के कार्यक्रम में। दोपहर 2:30 पर भी फिल्म संगीत का आप आनंद ले पाएंगे। 8:30 पर होगा सुगम संगीत का कार्यक्रम, जिसके अंतर्गत आज आप सुन पाएंगे मोहम्मद।

रफ़ी के द्वारा गाए हुए भजन। 9 बजे होगा सूचना और समाचारों पर आधारित कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर। 9:30 पर आप सुन सकेंगे शास्त्रीय संगीत, जिसके अंतर्गत आज आप सुन पाएंगे पंडित जगदीश प्रसाद पंडित के द्वारा राग गुर्जरी तोड़ी। जिले की चिट्ठी आज आप सुन पाएंगे सुबह 10 बजे, जो हमारे भोपाल केंद्र द्वारा आपको सुनवाई जाएगी। 10:05 पर होगा फिल्म संगीत का कार्यक्रम, जो कि आप व्हाट्सएप फरमाइश के अंतर्गत आप सुन पाएंगे इसमें बहुत ही प्यारे से गीत। फोन करें, गीत सुने कार्यक्रम होगा 11 बजे, यह आप हमारे मध्य प्रदेश केंद्र के द्वारा सुन सकेंगे। दोपहर 1 बजे होगा महिला सभा कार्यक्रम, 1:30 पर आप सुनेंगे लोक संगीत, 1:45 पर आप सुनेंगे सुगम संगीत। यह तीनों ही कार्यक्रम छतरपुर केंद्र की प्रस्तुति होंगे और इन्हें आप सुन सकेंगे मध्य प्रदेश केंद्र के द्वारा। तो श्रोताओं, ये थी जानकारी हमारी प्रथम सभा के कार्यक्रमों के बारे में। आइए अब संक्षिप्त जानकारी ले लेते हैं हमारी द्वितीय सभा के कार्यक्रमों के बारे में। श्रोताओं, शाम 5:02 पर होगा युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युववाणी, जिसे आप सुन सकेंगे छतरपुर केंद्र की प्रस्तुति को मध्य प्रदेश केंद्र के द्वारा। साथ ही आपको बताना चाहेंगे कि फिल्म संगीत का आप आनंद ले पाएंगे 5:33 पर, 6:30 पर चित्रपट संगीत के अंतर्गत और रात्रि 8:15 पर। इसके अतिरिक्त रात्रि 10 बजे आपकी फरमाइश कार्यक्रम के अंतर्गत NCERT का शैक्षणिक कार्यक्रम उमंग आप सुन सकेंगे शाम 6 बजे। 7:10 पर होगा ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम चौपाल, जिसमें आज आप सुन सकेंगे चर्चा के विषय आँखों की सुरक्षा क्यों और कैसे। इसके अतिरिक्त भाई बहन के प्रेम के पर्व पर चर्चा होगी रक्षाबंधन पर, और इस कार्यक्रम के अंतर्गत एक भेंट वार्ता फसलों में पोषक तत्वों की कमी के लक्षण व प्रभाव आप सुन सकेंगे डॉक्टर YP सिंह से सोहन सिंह की बातचीत के अंतर्गत। रात्रि 9:30 पर आप सुन सकेंगे खेल जगत में खेलों की खबरें। 9:45 पर होगा आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रम, रात्रि 10 बजे आपकी फरमाइश, और 10:30 पर होगा कार्यक्रम राग रजनी। यह सभी कार्यक्रम आप हमारे मध्य प्रदेश केंद्र के द्वारा सुन सकेंगे। तो श्रोताओं, ये थी जानकारी हमारी द्वितीय सभा के कार्यक्रमों के बारे में।

श्रोताओं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगी सुबह दस बजकर पाँच मिनट पर वर्षा फरमाइश पर आधारित फिल्म संगीत के कार्यक्रमों की ओर जिसमें आज आप सुन सकेंगे स्पेशल रक्षाबंधन विशेष पर कार्यक्रम। श्रोताओं ये थी जानकारी हमारी प्रथम सभा और द्वितीय सभा के कार्यक्रमों के बारे में। इसी के साथ ही कार्यक्रम विवरण संपन्न हुआ। यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। सुबह के 7:10 होने को है। कुछ ही देर में प्रादेशिक समाचार हमारे भोपाल केंद्र द्वारा आप सुन सकेंगे। कृपया समाचारों के लिए प्रतीक्षा कीजिए।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से उज्बेकिस्तान और किर्गिज गणराज्य के दौरे पर। देशभर में रक्षाबंधन का पर्व, राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री ने दी शुभकामनाएं। प्रदेश में मूंग खरीदी के लिए 84,492 मीट्रिक टन अतिरिक्त मात्रा मंजूर और प्रधानमंत्री जनधन योजना के 12 वर्ष पूरे हुए, 59 करोड़ से अधिक खाते खुले। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 अगस्त से 1 सितंबर तक उज्बेकिस्तान और किर्गिज गणराज्य की यात्रा पर रहेंगे। श्री मोदी उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेता व्यापार, निवेश, रक्षा, ऊर्जा, डिजिटल कनेक्टिविटी और शिक्षा समेत कई मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री किर्गिज गणराज्य की राजधानी बिश्केक जाएंगे और 26वें शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन में सुरक्षा, कनेक्टिविटी और अवसर को लेकर भारत की प्राथमिकताएं रखेंगे। देशभर में आज रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रक्षाबंधन की पूर्व संध्या पर देशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह त्यौहार भाई बहन के साथ साथ परिवार, मित्रों और समाज में स्नेह, सम्मान और पारस्परिक जिम्मेदारी का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि रक्षाबंधन भारतीय संस्कृति और परम्परा का प्राचीन और अभिन्न हिस्सा रहा है। वहीं मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रदेशवासियों को रक्षाबंधन पर्व की शुभकामनाएं देते हुए इसे भाई बहन के स्नेह और अटूट विश्वास का प्रतीक है। उन्होंने प्रदेशवासियों से रक्षाबंधन पर भारतीय संस्कृति के प्रति सम्मान और महिला सशक्तिकरण का संकल्प लेने का आह्वान किया। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में रक्षाबंधन का पर्व विशेष धार्मिक अनुष्ठानों के साथ मनाया जा रहा है। श्रावण पूर्णिमा पर आज तड़के भस्म आरती के दौरान भगवान महाकाल को करीब 2 फीट की विशेष राखी अर्पित की गई। इसे पुजारी परिवार की महिलाओं ने तैयार किया है। रेशमी कपड़े और धागों से बनी इस राखी में रुद्राक्ष, मोरपंख, ओम, त्रिनेत्र और त्रिपुंड को शामिल किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए खेलो इंडिया संवाद को संबोधित करते हुए कहा कि 21वीं सदी के भारत के लिए आधुनिक खेल व्यवस्था तैयार करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि खेल विश्वविद्यालयों से लेकर आधुनिक प्रशिक्षण केंद्र तक ऐसा तंत्र विकसित किया जा रहा है जिसमें खिलाड़ियों की प्रतिभा को हर स्तर पर सहयोग मिले। प्रधानमंत्री ने 5 से 15 वर्ष की आयु के बच्चों में खेल प्रतिभा खोजने के लिए बड़े अभियान की जरूरत बताई और कहा यह भी पहचानना जरूरी है कि बच्चा किस खेल के लिए सबसे उपयुक्त है। वहीं प्रदेश के 110 से ज्यादा महाविद्यालयों में खेलो इंडिया संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल नई दिल्ली में प्रदेश के कृषि और बागवानी मंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक में मूंग खरीदी फसल बीमा व्यवस्था की समीक्षा की। केंद्र सरकार ने प्रदेश में ग्रीष्मकालीन 2026 सीजन के लिए पहले से स्वीकृत मात्रा के अलावा 84,492 मीट्रिक टन अतिरिक्त मूंग खरीदने की अनुमति दी है। इससे राज्य में मूंग की कुल स्वीकृत खरीदी 5,39,072 मीट्रिक टन हो गई है। अब तक 5,33,000 मीट्रिक टन से अधिक मूंग खरीदी की जा चुकी है।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। जबलपुर में T-72 और T-90 टैंकों के ओवरहॉल की नई सुविधा का कल भूमि पूजन किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर में करीब 472 करोड़ रुपए की इस परियोजना की शुरुआत की। यहां हर साल 80 टैंकों की जांच, बड़ी मरम्मत और तकनीकी अपग्रेड किया जा सकेगा। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत से देश के रक्षा उत्पादन में बड़ी बढ़ोतरी हुई है। वर्ष 2014 में करीब 46,000 करोड़ रुपये का रक्षा उत्पादन अब बढ़कर 1,80,000 करोड़ रुपए और रक्षा निर्यात 1,000 करोड़ से बढ़कर करीब 39,000 करोड़ रुपए हो गया है। उन्होंने कहा कि यह बढ़ोतरी भारत की बढ़ती तकनीकी और औद्योगिक क्षमता को दिखाती है।
2: का यह प्रोजेक्ट आत्मनिर्भरता की एक मजबूत कड़ी है और हमारा लक्ष्य है कि आने वाले वर्षों में भारत दुनिया की लीडिंग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट्स हब में अपनी मजबूत पहचान बनाए और इस नेशनल मिशन में जबलपुर जैसी फैसिलिटी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगी और मुझे पूरा विश्वास है कि इस प्रोजेक्ट से जुड़े सभी स्टेक होल्डर्स इस रेस्पॉन्सिबिलिटी को पूरी एफिशिएंसी के साथ और सिंसियरिटी के साथ निर्वाह करेंगे।
0: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव कल रात समत्व भवन में स्कूल शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक की। बैठक में डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश के स्कूलों में विद्यार्थियों के लिए जरूरी सुविधाओं का लगातार विस्तार किया जा रहा है। उन्होंने अधिकारियों को स्कूलों में अधोसंरचना, साफ सफाई, पेयजल और शौचालय जैसी व्यवस्थाएं बेहतर बनाने के निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि ई अटेंडेंस व्यवस्था लागू होने से शिक्षकों की उपस्थिति 95% तक पहुंची है। पिछले 2 वर्षों में समेकित छात्रवृत्ति योजना के तहत करीब 1.25 करोड़ विद्यार्थियों को 696 करोड़ रुपये ऑनलाइन दिए गए हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव कल बालाघाट में मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान में शामिल होंगे। रक्षाबंधन के अवकाश के कारण इस बार शनिवार को पूरे प्रदेश में जन विश्वास अभियान आयोजित किया जाएगा। बालाघाट में मुख्यमंत्री जिला स्तरीय समाधान ऑनलाइन में चिन्हित शिकायतकर्ताओं से सीधे उनकी समस्याएं सुनेंगे। इसके साथ ही बैठक और समीक्षा के अलावा मीडिया संवाद और उद्योग संवाद भी होगा। अभियान के दौरान सभी जिलों में सरकारी आवासीय स्कूल, आश्रम और छात्रावासों का निरीक्षण किया जाएगा। प्रदेश के वन विभाग ने विदिशा जिले के काकपुर क्षेत्र को काकपुर पक्षी कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किया है। राज्य सरकार ने वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत इसकी अधिसूचना जारी की है। करीब 53 हेक्टेयर क्षेत्र में फैले इस रिजर्व में वन्य पक्षियों और उनके प्राकृतिक आवास का संरक्षण किया जाएगा। काकपुर क्षेत्र बेतवा और बाही नदियों के बीच स्थित है और यहाँ मौजूद प्राचीन तालाब बड़ी संख्या में पक्षियों को आकर्षित करता है। FIH महिला हॉकी विश्व कप में भारतीय टीम ने जर्मनी को 3-1 से हराकर 5वां स्थान हासिल किया है। नीदरलैंड्स के एम्स्टेल वीन में खेले गए 5वें-6वें स्थान के मुकाबले में भारत की ओर से इशिका ने 1 और नवनीत कौर ने 2 गोल किए। इस जीत के साथ भारत ने 1974 के बाद विश्व कप में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है और टीम को 5वां स्थान मिला है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के आज 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 अगस्त 2014 को इस योजना की शुरुआत देश के हर बैंक रहित वयस्क को बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ने के उद्देश्य से की थी। वित्त मंत्रालय के अनुसार 19 अगस्त 2026 तक देश में 59.9 करोड़ से अधिक जनधन खाते खोले जा चुके हैं। इनमें 3,16,514 करोड़ रुपये से अधिक जमा है। इनमें करीब 78% खाते ग्रामीण और अर्धशहरी क्षेत्रों में है, जबकि 56% से अधिक खाताधारक महिलाएं हैं। जनधन खातों में औसत जमा राशि बढ़कर 5,356 रुपए हो गई है। और अब मौसम। प्रदेश में आज मौसम विभाग ने सभी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। भोपाल मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। सीधी, कटनी, अनूपपुर, बालाघाट, सिवनी, छतरपुर और टीकमगढ़ में भारी बारिश का अनुमान है। कुछ स्थानों पर बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने की भी आशंका है। मौसम विभाग ने लोगों से भारी बारिश के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचने और वाहन चलाते समय सावधानी बरतने की अपील की है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। केंद्रीय राज्य मंत्री दुर्गादास उइके ने टिमरनी प्रधानमंत्री युवा संवाद कार्यक्रम में शामिल होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन सुना। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने राष्ट्रीय खेल दिवस पर बड़वानी के शहीद भीमा नायक शासकीय महाविद्यालय में खेलो इंडिया संवाद कार्यक्रम में भाग लिया। शिवपुरी सर्किल जेल में आज रक्षाबंधन पर बंदियों से खुली मुलाकात होगी। खंडवा में 30 अगस्त को मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के तहत जिला स्तरीय शिविर लगाया जाएगा। मंदसौर में कल प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सलेंस में खेलो इंडिया संवाद कार्यक्रम आयोजित हुआ। झाबुआ में मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के तहत कलेक्टर डॉ. योगेश तुकाराम भरसट की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक हुई। मंडला के बीजा डांडी में मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के तहत कल शिविर आयोजित किया गया। शिविर में अधिकारियों ने ग्रामीणों को विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी दी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से उज्बेकिस्तान और किर्गिज गणराज्य के दौरे पर। देश भर में रक्षाबंधन का पर्व। राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री ने दी शुभकामनाएं। प्रदेश में मूंग खरीदी के लिए 84,492 मीट्रिक टन अतिरिक्त मात्रा मंजूर। और प्रधानमंत्री जनधन योजना के 12 वर्ष पूरे, 59 करोड़ से अधिक खाते खुले। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।

मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 7:20 हुए हैं। तो लीजिए प्रस्तुत है गांधी चर्चा, प्रस्तुति है तुलिका शर्मा की।

गांधी चर्चा में आज सुनते हैं 28 सितंबर 1931 को डेली हेरल्ड में प्रकाशित बापू के आलेख के संपादित और अनुवादित अंश। मैं यहाँ क्यों आया हूँ? मेरा विश्वास किस चीज में है? मैं कैसा भारत बनाऊंगा? मेरा उत्तर ये है कि सबसे बढ़कर मैं यहाँ सत्य की, उसे मैं जिस रूप में जानता हूँ उस रूप में रक्षा करने के लिए आया हूँ, क्योंकि मैं मानता हूँ कि ये जीवन का आधार स्तंभ है। बाकी सब कुछ इसी पर निर्भर है। सबसे पहले और सबसे बाद में, बल्कि सदा सर्वोपरि महत्व उसी का है। और सभी बातों में सत्य को सबसे पहला स्थान देना संभव है। जहाँ तक मेरा संबंध है, मैंने सदा ऐसा करने की कोशिश की है। मेरी राजनीतिक आकांक्षाओं में असत्य और धोखाधड़ी को कोई स्थान नहीं है। मैंने अपने बारे में तरह तरह के वर्णन पढ़े हैं। कुछ में मुझे संत कहा गया है, कुछ में धूर्त। मैं न संत हूँ और न धूर्त। मैं जो कुछ बनना चाहता हूँ और आशा है कि जो कुछ बनने में किसी हद तक मैं सफल हो पाया हूँ, वो है एक सच्चा और ईश्वर से डरने वाला आदमी। लेकिन मैं अपने बारे में जो कुछ पढ़ता हूँ, उससे मुझे कोई नाराज़गी नहीं होती। क्यों होनी चाहिए? मेरा एक अपना जीवन दर्शन है और अपना काम है। प्रतिदिन मैं कुछ देर चरखा चलाता हूँ। चरखा चलाते हुए मैं सोचता भी हूँ। मैं बहुत सी बातों के संबंध में सोचता हूँ, लेकिन उन विचारों से मैं कटुता को बराबर दूर ही रखने की कोशिश करता हूँ। आप ज़रा मेरे इस चरखे को परख कर देखिए। आपको जितना मैं सिखा सकता हूँ, उससे बहुत अधिक ये सिखा सकता है। ये आपको धैर्य सिखाएगा, उद्योग करना सिखाएगा और सादगी की सीख देगा। ये चरखा भारत के करोड़ों क्षुधार्त मानवों के लिए मुक्ति का प्रतीक है। गांधी चर्चा में अभी आप सुन रहे थे 28 सितंबर 1931 को डेली हेरल्ड में प्रकाशित बापू के आलेख के संपादित और अनुवादित अंश। गांधी चर्चा का समापन करते हैं बापू के इस प्रिय भजन से।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे गांधी चर्चा, प्रस्तुति थी तुलिका शर्मा की। यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। सुबह के 7:30 और 42 सेकंड हुए हैं। तो लीजिए, प्रस्तुत है फिल्म संगीत। फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में आज विशेष है रक्षाबंधन। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि रक्षाबंधन केवल एक त्यौहार नहीं है, बल्कि एक वचन है, एक वादा है अपनी बहन के लिए, उस भाई का, जो कि हमेशा एक रक्षा सूत्र से बंधे होते हैं। ये धागा नहीं है, ये प्रेम है एक दूसरे के लिए। ये वो कमिटमेंट है कि वो हर बार, हर हमेशा, जब भी उसे ज़रूरत होगी, उसका भाई उसके साथ होगा। और ये शुरुआत कब से होती है? ये शुरुआत होती है उस दिन से जब एक प्यारे से भाई को एक प्यारी सी छोटी सी बहन मिल जाती है। उसकी तुलना वो फूलों से करता है। उसके सामने उसकी हर मुस्कान पर न्यौछावर हो जाती है भाई की जान। तो बिल्कुल इस रक्षाबंधन के त्यौहार में आइए हम तो मिलकर इस त्यौहार को मनाते हैं और कुछ यूं फूलों की तरह अपनी बहन को उस प्यारे से बंधन के साथ जोड़ जाते हैं।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: अल्पविराम के बाद स्वागत करते हैं श्रोताओं आपका फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में, जिसमें आप सुन रहे हैं आज फिल्म संगीत पर रक्षाबंधन विशेष। तो श्रोताओं, जैसे कि हमने आपको बताया कि रक्षाबंधन में ये भाई बहन का जो प्यार है वो वहीं से शुरू हो जाता है, जब एक भाई का एक बहन के लिए प्यार समझना शुरू हो जाता है। वो अपनी बहन की तुलना जो है फूलों से, तारों से और सितारों से करने लगता है। उसे लगता है कि इस दुनिया की सबसे प्यारी बहन, सबसे हसीन तोहफा जो है भगवान ने उसे दिया है। वैसे ही बहन की भी जो है अंदर से वो आकांक्षाएँ हैं, भैया के प्रति जो प्रेम है वो किसी भी अतुल्य संबंध से कम नहीं होता। वो भी अपने भाई की तुलना चांद, तारे और सितारों से करती है, चांद के बराबर उसे समझती है। उसकी उपमा जब चांद से की जाती है तो वह अतुलनीय हो जाती है। अपने भाई को प्रेम जताने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती, जितना रूठती मनाती है उसे उतना ही उसे प्यार भी करती है। और अगर बहन बड़ी हो तो ये प्यार जो है ना केवल बहन का प्यार बल्कि माँ के प्यार के बराबर बदल जाता है। और अपने प्यार को इस तरह से कुछ इस गीत की तरह हम भी इजहार करते हैं

0: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
1: जी,
0: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
1: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
0: पर ये होगा कैसे?
1: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
0: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
1: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
0: बस
1: बस
0: समझ गया।
1: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: RBI कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
5: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी EMI गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान EMI के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
4: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
6: अल्पविराम के बाद स्वागत है श्रोताओं फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में, जिसमें आज आप सुन रहे हैं रक्षाबंधन विशेष, ये फिल्म संगीत का कार्यक्रम। तो हम बात कर रहे थे प्यारे से भाई बहनों की, जो कि आज के दिन इस दिन को इतना विशेष मानते हैं, जैसे भाई के लिए एक बहन की तुलना फूलों से है, वैसे ही एक बहन अपने भाई को हर नज़र से, हर बुरे किसी भी ऐसी बुरी चीज़ से बचाना चाहती है, जहाँ पर उसे कुछ भी कष्ट हो या कोई भी परेशानी हो उससे वो दूर रहे। लाखों बार नज़रें उतारती है, लाखों बार अपने प्यार को उस पर जताती है, खूब सारा लाड़ दुलार करती है। और ये बंधन केवल एक धागे की वजह से नहीं है दोस्तों, ये बंधन है प्यार का। ये धागे ये कहते हैं कि हमेशा ये बंधन यूं ही जुड़ा रहे, कभी भी राखी की वो गांठ ढीली ना पड़े, कभी भी रिश्तों में दरार ना आए, कभी भी प्रेम का ये धागा फीका ना पड़े। जब ये दिन विशेष आता है तो इजहार का मौका हर बहन को अपने भाई से प्यार लाड़ दुलार करने का मौका मिलता है, लेकिन जब भी उसे ज़रूरत हो तो ये राखी का ये बंधन हमेशा ध्यान दिलाता रहे कि उसकी बहन को कभी कोई आँच ना आए, कभी कोई परेशानी ना हो। और ऐसे ही प्यारे बंधन से ये यूं ही जुड़े रहें, और राखी के ये बंधन, ये धागे हमें क्या बताते हैं, आइए इस गीत के द्वारा हम जानते

बिल्कुल दोस्तों, कहते हैं ये राखी के धागे, ये प्यार का बंधन यूं ही जुड़ा रहे, यूं ही एक दूसरे के प्रति प्रेम जगता रहे, यूं ही लगे कि बस आज का दिन नहीं बल्कि हर दिन इस वचन को, इस वादे को निभाने के लिए मन करे। और इसी तरह से भाइयों की कलाई हमेशा सजी रहे, उनके हर काम में तरक्की हो और आगे बढ़ते रहें। क्योंकि ये भाई की कलाई अगर सुनी रह गई तो आज के दिन के जो वादे हैं वो अधूरे रह जाएंगे। इसलिए किसी भी भाई की कलाई सुनी ना रहे, ये प्रयत्न हर बहन करती है कि आज के दिन पहुँच कर उसे आज ढेर सारी खुशी, लाड़ प्यार और उसकी हर बलाओं से नज़र उतारे।

0: दिल दे दिया है जान तुम्हें देंगे।
1: इतनी वफादारी, आजकल कौन सोचता है ये सब। जीने के हैं चार दिन तो जियो जी भर के।
2: तुम्हें पता नहीं है शायद, संक्रमित व्यक्ति के साथ असुरक्षित यौन संबंधों से HIV एड्स और यौन संक्रमण का खतरा सबसे अधिक होता है। इसीलिए वफादारी बहुत जरूरी है और कंडोम का उपयोग भी स्वस्थ यौन व्यवहार के लिए जरूरी है। उससे HIV एड्स के साथ ही यौन संक्रमणों और अनचाहे गर्भ से भी सुरक्षा मिलती है, समझे?
1: हाँ भाई समझा।
2: तो संयम, वफादारी और कंडोम अपनाओ, सुरक्षित यौन व्यवहार बनाए। और हाँ, अधिक जानकारी के लिए अपने मोबाइल से 1097 डायल करें।
3: मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
4: 5 महीने हो गए ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हुए, नए स्किल सीखने हैं पर पैसे भी कमाने हैं, समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूं।
5: तो फिर सोच कि तेरी सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो गई।
4: क्या, कैसे?
5: अरे मध्य प्रदेश सरकार लाई है मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना, 12th ITI डिप्लोमा और ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए, जहां तुम स्किल्स भी सीख सकते हो और 10,000 तक का स्टाइपेंड भी कमा सकते हो।
4: वाह, अच्छा रजिस्टर कैसे करें?
5: mmsky.mp.gov.in पर। MMSky, सीखो भी कमाओ भी।
6: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
7: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी EMI गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान EMI के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
6: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
8: अल्पविराम के बाद स्वागत है श्रोताओं फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में, और अभी आप सुन रहे हैं रक्षाबंधन विशेष ये कार्यक्रम। तो जैसा कि भाई ने रक्षा का वचन देता है इस दिन, और बहन भी ढेर सारा प्यार उस रेशम के धागे के साथ लेकर आती है, और साल भर में वो कभी आ पाए घर पर मायके या ना आ पाए, लेकिन ये बंधन जो है उसे खींच लाता है इस प्यार की डोरी से कि उसे कहना पड़ता है कि ये रेशम का केवल तार नहीं है, ये मेरा बहुत सारा प्यार है जो मैं इस बंधन के साथ, इस धागे के साथ बांध कर लाई हूँ।

दोस्तों, ऐसे ही प्यार भरा सफ़र, रक्षाबंधन और ये प्यारा सा वादा कभी ख़त्म ना हो और यूं ही चलता रहे, और इसी सिलसिले के साथ हम आपको बताना चाहेंगे कि अगला फिल्म संगीत का कार्यक्रम 10:05 पर आप सुन सकेंगे। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है।

0: UPI ने बनाया है गांव और कस्बों में पेमेंट को आसान। करीब 60% UPI पेमेंट हो रहे हैं 500 रुपए से नीचे और हर दो में से एक ग्लोबल डिजिटल पेमेंट हो रहा भारत में।
1: स्ट्रीट वेंडर से लेकर आपकी गाड़ी के शोरूम तक आपकी सारी पेमेंट सिर्फ एक QR कोड स्कैन करके हो जाती है।
0: UPI के 10 साल डिजिटल, आत्मनिर्भर, बेफिक्र।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज़।

0: वाले पहले भारतीय बने। और अब समाचार विस्तार से। नेपाल तिब्बत में आई विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 392 हो गई है। नेपाल में 389 और तिब्बत में 3 व्यक्तियों की मौत हुई। सीमा के दोनों तरफ 1468 व्यक्ति लापता हैं।
1: नेपाल के अधिकारियों ने 910 व्यक्तियों के लापता होने की जानकारी दी है। तिब्बत के अधिकारियों ने बताया कि 558 व्यक्तियों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। बचाव कर्मी लोगों की तलाश कर रहे हैं। अभी क्षेत्र में संकट टला नहीं है। भोटो कोशी नदी स्रोत के पास कई झील बन गई हैं। डर यह है कि इनके टूटने से पानी का एक तेज बहाव आ सकता है, इससे आपदा और गंभीर हो सकती है। नेपाल के सुरक्षा कर्मियों ने बाढ़ प्रभावित जिलों से 800 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। इधर भारत ने बड़े पैमाने पर बचाव अभियान शुरू कर दिया है। विदेश मंत्रालय का कहना है कि नेपाल में 290 भारतीयों से संपर्क नहीं हो पा रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि बाढ़ प्रभावित इलाकों में फंसे भारतीयों की स्थिति का पता लगाने के लिए तत्काल प्रयास किए जा रहे हैं। अब तक भारत ने 84 नागरिकों को सुरक्षित निकाल लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री वालेंद्र शाह के साथ बातचीत की और उन्हें भारत की ओर से पूरी मानवीय सहायता का आश्वासन दिया। समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा।
0: वहीं नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि भारत ने नेपाल में बचाव और राहत अभियानों में सहायता के लिए 47 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी है।
2: दो जहाज पे हम लोगों ने सहायता नेपाल को पहुंचाया है। पहला जहाज यहाँ से 10 टन करीबन रिलीफ मटेरियल लेके काठमांडू पहुंचा था, जिसमें कि कंबल, सोलर लैंप, दवाइयाँ, हाइजीन किट्स और टेंट वगैरह इस प्रकार की चीजें हैं। दूसरा जहाज इसमें 37.5 टन की सप्लाई, जिसमें कि 28.5 टन रिलीफ आइटम्स और 8 टन दवाइयाँ और 1 टन खाने पीने की सामग्री और जो भी मानवीय सहायता हो सकता है वो भी हम प्रदान करेंगे।
0: चीन के जल संसाधन मंत्रालय के अनुसार नेपाल में छोचेन खोला और पुरेपू सांगपो नदियों के संगम के पास बनी झील के टूटने का खतरा बढ़ गया है। झील में अगले कुछ दिनों में 30 लाख घन मीटर अतिरिक्त पानी पहुंच सकता है। विदेश मंत्रालय ने बाढ़ के मद्देनजर लोगों की सहायता के लिए नई दिल्ली में 24 घंटे कार्यरत नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है। नियंत्रण कक्ष है 9111-2308-8718 और 9111-2308-8719 पर आप संपर्क कर सकते हैं। वहीं काठमांडू में भारतीय दूतावास ने सहायता के लिए नंबर जारी किए हैं। नंबर है 9779851316807 और 9779810326117। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज़ हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
3: अपडेट रहे, आगे रहे, एक्स पर @AIR न्यूज़ हिंदी और इंस्टाग्राम पर AIR न्यूज़ अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। ये देश में वित्तीय समावेशन के परिदृश्य को बदलने की दिशा में एक प्रमुख पड़ाव है। इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में आज ही के दिन की थी। एक रिपोर्ट।
4: प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत अब तक 59 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं, जिनमें कुल 3,17,000 करोड़ रुपए की जमा राशि है। दुनिया की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन पहल के रूप में यह योजना सभी भारतीयों के लिए बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच को लगातार नए आयाम दे रही है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खोले गए 78% खाते ग्रामीण या अर्ध शहरी क्षेत्रों में है, जबकि लगभग 56% खाताधारक महिलाएं हैं। जनधन खाताधारकों को 41 करोड़ से अधिक रुपए कार्ड जारी किए जा चुके हैं। प्रति खाते औसत जमा राशि 5,356 रुपए है। इस योजना ने लाखों लोगों, विशेष रूप से वंचित वर्गों को बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं तक पहुंच प्रदान करके उनके सामाजिक आर्थिक हालात को बेहतर बनाया है। प्रधानमंत्री जनधन योजना जैसी पहलों के कारण भारत का वित्तीय समावेशन सूचकांक इस साल 67 हो गया है, जो 2018 में 53.9 था। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से 6 दिन की अमेरिका यात्रा पर हैं। अपनी इस यात्रा के दौरान वे शिकागो, एशविले और न्यूयॉर्क जाएंगी। वे शिकागो में प्रमुख निवेशकों के साथ एक गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगी और निजी क्षेत्र के अग्रणी सीईओ, अध्यक्षों और

0: वरिष्ठ प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे। इन बैठकों में भारत में निवेश के अवसर, आर्थिक दृष्टिकोण और भारत और अमेरिका के बीच व्यापार और निवेश साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होगी। श्रीलंका के नौसेना कमांडर वाइस एडमिरल डेमियन फर्नांडो भारत के आधिकारिक दौरे पर हैं। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस दौरे का उद्देश्य द्विपक्षीय समुद्री सहयोग को और मजबूत करने के साथ साथ भारत और श्रीलंका के बीच नौसेना संबंधों को आगे बढ़ाना है। वाइस एडमिरल फर्नांडो ने नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन के साथ संयुक्त अभियानों, क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण और समुद्री सुरक्षा सहित द्विपक्षीय समुद्री सहयोग को बढ़ावा देने के उपायों पर चर्चा की। रक्षाबंधन का त्यौहार आज पूरे देश भर में मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष ने इस अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि रक्षाबंधन का त्यौहार प्राचीन काल से ही देश की संस्कृति और परंपरा का अहम हिस्सा रहा है। श्री अमरनाथ यात्रा आज रक्षाबंधन के त्यौहार के साथ सम्पन्न होगी।
1: महादेव महान भोले सदा शिव शिव शंकरा।
2: 57 दिनों तक चलने वाली अमरनाथ यात्रा आज औपचारिक रूप से समाप्त हो जाएगी। इस साल जुलाई 3 को शुरू हुई इस यात्रा के दौरान तकरीबन 4,80,000 यात्रियों ने पवित्र गुफा में शिवलिंगम के दर्शन किए। अगरचे 9 अगस्त को इस यात्रा को मौसम की खराबी की वजह से रोका गया, लेकिन छड़ी मुबारक का सफर परंपरा के अनुसार जारी रहा। इधर आज महंत दीपेंद्र गिरी के नेतृत्व में छड़ी मुबारक पंचतरणी से निकलकर पवित्र गुफा पहुंचाई जाएगी, जहां विशेष पूजा और पारंपरिक रस्मों के बाद इस साल की यात्रा संपन्न हो जाएगी। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं श्रीनगर से इश्फाक शाह।
1: महादेव महान भोले सदा शिव शिव शंकरा।
0: इसके अतिरिक्त जम्मू कश्मीर में सालाना बुद्ध अमरनाथ यात्रा भी आज संपन्न होगी। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में रक्षाबंधन का पर्व आज विशेष धार्मिक परंपराओं के साथ मनाया जा रहा है।
3: श्रावण पूर्णिमा के अवसर पर आज तड़के भस्म आरती के दौरान भगवान महाकाल को करीब 2 फीट की विशेष राखी चढ़ाई गई। ये राखी पुजारी परिवार की महिलाओं ने कई दिनों की मेहनत से तैयार की थी। रेशमी कपड़े और धागों से बनी इस राखी में रुद्राक्ष, मोर पंख, ओम, त्रिनेत्र और त्रिपुंड को शामिल किया गया है। राखी तैयार करते समय महिलाओं ने जय महाकाल और ओम नमः शिवाय का जाप किया। धार्मिक परंपरा के अनुसार भगवान महाकाल को राखी अर्पित करने के बाद ही पुजारी परिवार की महिलाएं अपने भाइयों को राखी बांधती हैं। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
0: केरलम में सबरीमला मंदिर ओणम पूजा के बाद आज रात 10 बजे बंद हो जाएगा। इस वर्ष त्रावणकोर देवस्वम बोर्ड ने तिरुओणम के दिन मंदिर में ओणम भोज का आयोजन किया। मंदिर 16 तारीख सितंबर को पुनः खुलेगा। आज समाज सुधारक श्री नारायण गुरु की 172वीं जयंती मनाई जा रही है। केरलम में सुबह से ही विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। श्री नारायण गुरु की जन्मभूमि चेम्पा छंती में भव्य कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की यात्रा पर कल उज्बेकिस्तान जाएंगे। एक रिपोर्ट।
4: ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उज्बेकिस्तान की 4थी यात्रा होगी। इससे पहले प्रधानमंत्री 2015, 2016 और 2022 में इस मध्य एशियाई देश का दौरा कर चुके हैं। उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव भी 2018 और 2019 में भारत आ चुके हैं। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन केंद्र में मध्य एशियाई अध्ययन के प्रोफेसर राजन कुमार ने आकाशवाणी से खास बातचीत में कहा कि बार बार की गई ये यात्राएं ही दर्शाती है कि उज्बेकिस्तान भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है।
5: भारत को अगर यूरेशिया में कोऑपरेशन बढ़ाना है तो वैसे में मुझे लगता है कि सेंट्रल एशिया के देश काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, और सेंट्रल एशिया के देश जो हैं उसमें उज्बेकिस्तान बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि उसकी मिलिट्री सबसे ज्यादा पावरफुल है।
4: इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव व्यापार और निवेश, रक्षा, डिजिटल कनेक्टिविटी, ऊर्जा, शिक्षा और जन सहयोग संबंधी क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा करेंगे और आगे की कार्य योजना तैयार करेंगे। दोनों नेता विकसित भारत 2047 और उज्बेकिस्तान 2030 के साझा विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने पर भी अपने विचार साझा करेंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद, उज्बेकिस्तान।
6: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
0: और अब खेल खबरों का रुख कर लेते हैं। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ग्रैंड शतरंज टूर जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। उन्होंने कल रात अमेरिका के सेंट लुइस में फाइनल में मौजूदा चैंपियन फेबियानो कारुआनो को 15-13 से हराकर शानदार जीत दर्ज की। प्रज्ञानंदा ने $2,00,000 का पहला पुरस्कार जीतकर अगले साल के ग्रैंड शतरंज टूर में अपनी जगह भी पक्की कर ली है। भारत के वेलवन सेंथिल कुमार कल रात स्क्वैश सेमीफाइनल में भारत के ही वीर चोटरानी को हराकर पीएसए बुडापेस्ट स्क्वैश ओपन के फाइनल में पहुंच गए हैं। फाइनल में आज रात वेलवन का मुकाबला हंगरी के खिलाड़ी बाला अजफारकत से होगा। भारतीय महिला हॉकी टीम ने कल जर्मनी को 3-1 से हराकर एफआईएच विश्व कप में 5वां स्थान हासिल किया। पिछले 52 वर्षों में ये भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। इससे पहले 1994 में हुए पहले माफ कीजिएगा इससे पहले 1994 में हुए पहले विश्व कप में टीम चौथे स्थान पर रही थी। इस प्रदर्शन से अगले महीने जापान में होने वाले एशियाई खेलों से पहले टीम का आत्मविश्वास चरम पर है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है मुकेश कुमार बल।
7: धन्यवाद फरहत। नेपाल में आए भीषण सैलाब की तस्वीरें सभी समाचार पत्रों ने सचित्र दी हैं। अमर उजाला लिखता है नई झील से फिर सैलाब का खतरा, बिहार और उत्तर प्रदेश में अलर्ट। दैनिक भास्कर के शब्द हैं 290 भारतीयों का अब तक सुराग नहीं, समय के साथ उम्मीदें भी घटती जा रहीं। हिंदुस्तान की सुर्खी है तिब्बत से फिर आ सकती है तबाही, नियंत्रण कक्ष स्थापित। नहीं थम रहा स्वाइन फ्लू, 24 घंटे में 166 नए मामले, नवभारत टाइम्स की खबर है। पत्र लिखता है बिना डॉक्टर की सलाह ना लें कोई दवा। खेलो इंडिया संवाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिया गया संदेश जनसत्ता ने सचित्र दिया है। पत्र लिखता है प्रधानमंत्री ने जताई चिंता, कहा 2036 ओलंपिक खेलों के लिए आज से ही तैयारी करें खिलाड़ी। आईपीओ में लौटी तेजी, नए शेयरों का एक साल में 18% रिटर्न पर निफ्टी 7% टूटा। दैनिक भास्कर के बिजनेस पन्ने की खबर है गिरते नजर आने लगे चीनी के दाम, खुदरा बाजार में भाव करीब 63 रुपए प्रति किलो, लोकसत्ते की सुर्खी है। ब्रेन सर्जरी में पहला एआई सफल उपयोग, ट्यूमर निकालकर बचा ली आंखों की रोशनी, राजस्थान पत्रिका की खबर है।
0: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नेपाल में विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 392 हुई, 1468 लोग अब भी लापता। भारत ने नेपाल में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए प्रयास तेज किए। विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशी पहल प्रधानमंत्री जनधन योजना के आज 12 वर्ष पूरे। रक्षाबंधन का पर्व देश भर में मनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में वार्षिक अमरनाथ यात्रा आज संपन्न होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से अमेरिका की 6 दिन की यात्रा पर। और भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने इतिहास रचा, ग्रैंड मास्टर शतरंज टूर जीतने वाले पहले भारतीय बने। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे हैं सुगम संगीत, जिसमें आज हम आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफ़ी के द्वारा गाए हुए भजन। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम में इनके द्वारा गाया हुआ ये अगला भजन।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: और प्रोग्राम के बाद स्वागत करते हैं श्रोताओं सुगम संगीत के इस कार्यक्रम में, जिसमें आप सुन रहे हैं आज मोहम्मद रफ़ी के द्वारा गाए हुए कुछ भजन। तो आइए कार्यक्रम में सुनते हैं इनके द्वारा गाया हुआ ये अगला भजन।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे हैं सुगम संगीत का ये कार्यक्रम, जिसमें आप सुन पा रहे हैं मोहम्मद रफ़ी के द्वारा गाए हुए भजन।

श्रोताओं, कार्यक्रम के अंत में एक बार फिर से लीजिए, सुनिए मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में कार्यक्रम का ये अंतिम गीत, अंतिम भजन।

श्रोताओं, इसी अंतिम भजन के साथ ही सुगम संगीत का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न हुआ। यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। सुबह के 8:58 होने को है। कुछ ही देर में आप सुनेंगे इस घंटे की खास खबरें।

0: पेश है इस घंटे की खास खबरें। रक्षाबंधन की पूर्व संध्या पर कल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि रक्षाबंधन भारतीय संस्कृति और परंपरा का प्राचीन और अभिन्न हिस्सा है। ये त्यौहार भाई बहन के साथ साथ परिवार, मित्रों और समाज में स्नेह, सम्मान और पारस्परिक जिम्मेदारी का प्रतीक है। श्रावण पूर्णिमा रक्षाबंधन पर्व के अवसर पर उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में आज तड़के भस्म आरती के दौरान भगवान महाकाल को करीब 2 फीट की विशेष राखी अर्पित की गई। रेशमी कपड़े धागों से बनी इस राखी में रुद्राक्ष, मोरपंख, ओम, त्रिनेत्र और त्रिपुण को शामिल किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल खेलो इंडिया संवाद में कहा कि सरकार 21वीं सदी के भारत के लिए आधुनिक खेल व्यवस्था तैयार करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने 5 से 15 वर्ष की आयु के बच्चों में खेल प्रतिभा खोजने के लिए बड़े अभियान की जरूरत बताई। वहीं प्रदेश के 110 से ज्यादा महाविद्यालयों में खेलो इंडिया संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल स्कूल शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को स्कूलों में बेहतर व्यवस्थाएं बनाने के निर्देश दिए। साथ ही समय की छात्रवृत्ति योजना के 696 करोड़ रुपए के ऑनलाइन ट्रांसफर किए। प्रधानमंत्री जनधन योजना के आज 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। इसकी शुरुआत देश के हर बैंक रहित वयस्क को बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ने के उद्देश्य से की थी। अब तक देश में 59.9 करोड़ से अधिक जनधन खाते खोले जा चुके हैं और मौसम विभाग ने आज प्रदेश की सभी जिलों के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय हमारी स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 9 बजे हैं। तो लीजिए प्रस्तुत है सूचना और समाचारों पर आधारित कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर।

सूचना और समाचारों पर आधारित कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर में एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका श्रोताओं। मैं आपकी रेडियो मित्र रश्मि राहुल बिल्कुल उम्मीद करती हूँ कि हर बार की तरह आप कर रहे होंगे इस कार्यक्रम का इंतज़ार, जैसे कि हम करते हैं हर दिन आपसे इस कार्यक्रम के माध्यम से मुलाकात। तो श्रोताओं, चलिए बात करते हैं आज के मौसम की, क्योंकि मौसम है बहुत खुश मिजाज। और सबसे पहले हम देना चाहेंगे हमारे सभी श्रोताओं को रक्षाबंधन की ढेर सारी बधाइयाँ, बहुत सारा प्यार। और ये प्यार, ये बंधन, ये रिश्ता यूं ही बना रहे इस प्यारे से कार्यक्रम के साथ भी और हर एक मुलाकात के साथ भी। तो अगर बात करें न्यूनतम तापमान की, तो वो है 25.2 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान है 28.4 डिग्री सेल्सियस। लगातार वर्षा हो रही है, कभी रुक कर, कभी धीमी, कभी तेज। तो इस तरह से हम बता सकते हैं हमारे

छोटा है या बड़ा है, ज़रूरत पड़ने पर उसका साथ दे सकती है। ये बंधन नहीं है, ये प्यारा सा पवित्र रिश्ता है जो एक दूसरे को निभाना होता है, न केवल एक तरफ से बल्कि दोनों ही तरफ से। दिल से बहनें उसे दुआएं देती हैं, भाई उसे रक्षा का वचन देते हैं और बहुत सारा प्यार लेकर वो अपने घर से जाती हैं। रक्षाबंधन का अर्थ केवल शाब्दिक है कि सुरक्षा या गांठ या बंधन। इस दिन बहनें अपने भाइयों की दाहिनी कलाई पर राखी बांधती हैं, उनकी उम्र के लिए बहुत दुआएं करती हैं, उनकी सुख समृद्धि की कामना करती हैं। इसके बदले भाई अपनी बहनों की रक्षा का संकल्प लेते हैं और उन्हें ढेर सारा प्यार और उपहार देते हैं। ये केवल आज की बात नहीं है दोस्तों, ये अगर पौराणिक तरीके से देखी जाए तो हमारे इतिहास में इसके कई सारे वर्णन मिलते हैं। जैसे राजा बलि और माता लक्ष्मी, जब भगवान विष्णु ने बलि का को वचन दिया था कि जिसे पूरा करने के लिए माता लक्ष्मी ने राजा बलि की राखी बांधकर अपना भाई बनाया, इसी वजह से इस त्यौहार को बलेवा भी कहा जाता है। एक बार जब महाभारत के काल में भगवान कृष्ण की उंगली कट गई थी तो द्रौपदी ने अपनी बिना सोचे साड़ी फाड़कर उनके हाथ की उंगली को बांध दिया था। तब से ये त्यौहार और भी पवित्र माना जाता है। जब कृष्ण ने द्रौपदी को वचन दिया था कि हर स्थिति में मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा, और उन्होंने महाभारत काल में उस वचन को निभाया भी। इसी तरह अगर इतिहास की बात करें तो चित्तौड़ की रानी जब कर्णावती पर संकट आया था तो उस समय उसने मुगल साम्राज्य के राजा हुमायूं को राखी भेजकर उसकी रक्षा का वचन मांगा था, जिसे हुमायूं ने एक भाई के रूप में निभाया और उसकी रक्षा की थी। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान नोबल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर ने बंगाल के विभाजन के समय हिंदू और मुसलमानों के बीच एकता और भाईचारा बढ़ाने के लिए भी इस पवित्र त्यौहार का सहारा लिया था। जब हम एक साथ रहते हैं, एक प्यार के बंधन में रहते हैं, चाहे वो कोई भी धर्म हो, कोई भी जाति हो, कोई भी रिश्ता हो, जब तक वो पवित्र है, जब तक उसमें प्यार है, जब तक उसमें एक आशा है, एक जोड़ है, तब तक वो हर रिश्ता उन सभी चीज़ों से ऊपर होता है जो हम किसी बनाए हुए रिश्ते से, किसी प्रेम को जब बढ़ाना होता है तो ये रिश्ते हमेशा ऐसे ही बंधन से जुड़े रहें और ऐसे ही आप और हम इस प्यारे से पवित्र त्यौहार को मनाते रहें, तभी तो इसी तरह से खुशहाली न केवल घर में बल्कि फिजाओं में भी फैलेगी और इस प्यारे से बंधन के लिए ये प्यारा

0: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
1: अप टू 85% LTV के साथ अब मणप्पुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान,
0: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
1: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुंचिए, मणप्पुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
0: मणप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800-420-2233।
2: बिल्कुल दोस्तों, हम तो आपसे बात कर ही रहे थे कि इस प्यारे से बंधन के बारे में। आज रक्षाबंधन है, तो हम तो कह ही रहे हैं कि इसी तरह से आपका प्यार बना रहे, इसी तरह से आपका दुलार बना रहे, ये बंधन कभी ख़त्म ना हो और ये रिश्ते यूं ही जुड़े रहें। ये प्यारा सा बंधन जो प्यार और विश्वास का बंधन है, जो अटूट विश्वास के साथ यूं ही चलता रहे। जब ये विश्वास यूं ही चलता रहेगा तो कभी भी किसी परिस्थिति में जब आपकी बहन को या आपको अपनी बहन की ज़रूरत होगी तो कभी भी रिश्तों में खटास नहीं होगी। ज़रूरत के समय हमेशा एक दूसरे के लिए हम खड़े रहेंगे और संबंध यूं ही मधुर बने रहेंगे। ना केवल ये त्यौहार बल्कि आत्मीय भाव भी हमें सिखाता है कि हमें ऐसे ही मिलजुल कर रहना है, ऐसे ही आगे बढ़ते जाना है। क्योंकि कभी भाई प्यार से अपनी बहन को फूलों से तुलना करके उसे फूलों और तारों का कहना, मेरे सबसे हजारों में मेरी बहना होती है, वैसे ही बहन भी अपने भाई की तुलना जब चांद से करती है तो उसकी सारी बलाएं, सारी अलाएं उतार देती है, सारी नज़रों से बचा कर रखती है। और यही प्यार का संबंध एक दूसरे को वचन देता है, कसम देता है कि ऐसे ही जीवन भर कोई साथ हो, रहे या ना रहे, लेकिन वो साथ निभाने का वादा देते हैं। और ऐसा ही वादा किया है हमारी सरकार ने हमारी उन बहनों के लिए जो कि किसी ना किसी परेशानी से अक्सर करके जूझती हैं। महिलाओं के खिलाफ अपराध अक्सर करके आपने सुने होंगे, तो ऐसे में कुछ नए कदमों की वजह से इन अपराधों में कमी हुई है। महिलाओं के खिलाफ अपराधों के मामले पिछले 5 वर्षों में लगातार इनके आंकड़े नीचे उतरे हैं, यानी कि पुलिस के आधिकारिक तुलनात्मक आंकड़ों के अनुसार 2021 में महिलाओं से जुड़े हुए कुल 3,186 मामले दर्ज हुए थे। वर्ष 2025 में यह संख्या घटकर 2,011 और 5 साल में यह घटकर 1,175 मामले कम हुए हैं। इस तरह से देखा जाए तो कुल अपराधों में 36.87% की कमी दर्ज हुई है। खास बात यह है कि गिरावट केवल किसी एक तरह के अपराध में सीमित नहीं रही, बल्कि सभी प्रकार के अपराध जो कि महिलाओं के ऊपर किए जाते हैं, जैसे शारीरिक या सांपत्तिक या विविध अपराधों की 3 श्रेणियों में कमी हुई है। पुलिस के रिकॉर्ड के अनुसार 2021 में शारीरिक संबंध अपराधों में 1,733 मामले दर्ज हुए थे, जो कि घटकर 2025 में 1,139 रह गए। तो इस तरह से यदि आप किसी भी समस्या से जूझ रहे हैं तो सरकार भी हमारी बहनों को ये गिफ्ट दे रही है। ये एक तरीके से हमारी बहनों के लिए एक बहुत बड़ा उपहार है, जिसमें कि ये मामलों में सरकार बहुत संजीदा होके ऐसे न्याय कानून व्यवस्थाएँ बना रही है जिससे कि अपराध में कमी आए और हमारी बहनें एक बार फिर से स्वतंत्र और खुशहाल रह सकें, इसी तरह आगे बढ़ सकें। और हर त्यौहार तीज में न केवल सुरक्षा की लिए मांग करें बल्कि उन्हें सुरक्षित महसूस भी हो। तो ऐसी सरकार की पहल के लिए हम बिल्कुल दिल से सलाम करते हैं कि ऐसी पहलें हमेशा होती रहें और इसी तरह से हमारी बहनें अपने आप को सुरक्षित समझें। और कार्यक्रम में भी हम थोड़ा सा आगे बढ़ें, इस अल्प विराम के बाद एक बार फिर से हम हाजिर होते हैं कार्यक्रम में कुछ अगली चर्चा लेकर।
3: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, KYC अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत KYC अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या ATM या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी BC के पास जाएं या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना KYC अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
4: RBI कहता है,
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
1: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
0: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
1: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुंचिए। मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
0: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420223।
2: अल्पविराम के बाद एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके पसंदीदा कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर में, जिसमें हम करते हैं ढेर सारी जानकारियां आपसे आदान प्रदान, और इस साथ ही इससे हम जोड़ते हैं आपके गीत मनोरंजन के साथ भी। तो आइए अगली जानकारी के साथ हम हाजिर हैं एक बार फिर से आपके पसंदीदा कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर में। तो श्रोताओं, जैसे कि हम बात कर रहे थे आज के प्यारे पवित्र त्यौहार की, और हमने बात की हमारी महिलाओं की सुरक्षा की भी, तो आइए अब बात करते हैं हमारे बच्चों की सुरक्षा की भी। जैसा कि हम अक्सर करके देखते हैं कि आजकल एक अलग सा ही हवा में सुरूर है, यानी कि हम आसपास हर जगह इंटरनेट की दुनिया से घिरे हुए हैं। चाहे हम फेसबुक चलाते हों, चाहे हम मोबाइल में इंस्टाग्राम चलाते हों, चाहे हम यूट्यूब चलाते हों, या फिर हमारे ज़रूरत की ऑफिस के काम भी हम मोबाइल, इंटरनेट और लैपटॉप पर करते हों, लेकिन हर जगह कुछ ऐसा ही खुमार है, यानी कि हर जगह इंटरनेट का जाल बिछा हुआ है और इस जाल से निकल पाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। क्योंकि हालांकि हमें ज़रूरत भी आधुनिक समय पर इसकी है, लेकिन आधुनिकता के समय में हम अपने स्वास्थ्य को दरकिनार नहीं कर सकते। स्वास्थ्य दरकिनार हो जाएगा तो जब हम ही स्वस्थ नहीं होंगे तो फिर हमारे आसपास की सारी चीज़ें हमारे लिए बेकार है, और अगर स्वास्थ्य ही हम ठीक नहीं कर पाए तो फिर कैसे हम आगे बढ़ेंगे? कैसे हम कहेंगे कि बढ़ेगा इंडिया, तभी तो कुछ हो पाएगा संभव। तो ऐसे में एक नया डिसीज़न यानी कि एक नई पहल की गई है, जिसके बारे में हम आपको बताना चाहते हैं कि बच्चों को, किशोरों को और सोशल मीडिया से नुकसान से बचाने के लिए मेटा अमेरिका में फेसबुक और इंस्टाग्राम के इस्तेमाल पर बड़ी पाबंदियां लगाने पर सहमति जताई है। यानी कि आप देखते हैं कि जब ज़रूरत का काम है और आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, या पढ़ाई के लिए इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, या किसी नई टेक्नोलॉजी को सीखने के लिए इंटरनेट का यूज़ कर रहे हैं, तब तो ठीक है, बात समझ भी आती है। लेकिन अगर आप उस चीज़ का इस्तेमाल यानी कि प्रयोग करते हैं गलत तरीके से ज़्यादा समय तक, तो उसका उल्टा प्रभाव आपके शरीर पर पड़ता है, और ऐसे में यदि आपको नुकसान होने लगे तो फिर ऐसी चीज़ों को करने का क्या ही फ़ायदा। लेकिन एक बात और है दोस्तों, जब हम किसी चीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं, किसी चीज़ में बहुत तरीके से उस चीज़ को सीखते या करते हैं, तो अत्यधिक टाइम उस पर देते हैं,

0: जिससे कि ना केवल आजकल होने वाली अलग अलग बीमारियां और परेशानियां हमारे सामने आ रही हैं, बल्कि इनको हम लिमिट भी कर पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। और ये अगर कोई एक ज़रूरतमंद व्यक्ति सीख रहा है या कर रहा है तो ठीक ही है, लेकिन आजकल छोटे बच्चों को भी इस चीज़ की एक लत सी लगी हुई है। अब उसको बचाने के लिए हमें कुछ तो पहल करनी थी। तो ऐसे में अमेरिका में फेसबुक इंस्टाग्राम को इस्तेमाल करने पर जो पाबंदियाँ लगाई गई हैं उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी। समझौते के तहत 18 साल से कम उम्र के यूजर्स जो कि रात 12 बजे से सुबह 6 बजे तक दोनों प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करते हैं, यानी कि फेसबुक इंस्टाग्राम, तो ऐसे में उन्हें एक लिमिट तक ही फेसबुक या इंस्टाग्राम चलाने के लिए अनुमति दी जाएगी, यानी कि वो ज़्यादा समय तक इसे नहीं चला पाएंगे। भारत में अभी यह व्यवस्था नहीं है, लेकिन समझौते के बाद यह व्यवस्था लागू कर दी जाएगी। यह व्यवस्था भारत में जो है केंद्र सरकार द्वारा बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल को लेकर उम्र की सीमा, स्क्रीन टाइम, पेरेंटल कंसेंट जैसे विकल्पों पर विचार कर रही है। भारतीय नीति निर्माता अमेरिका के इसे संभावी मॉडल के तौर पर देख रहे हैं, यानी कि संभवतः आगे जाके बच्चों में जो इससे होने वाली बीमारियां जो हैं, जैसे एंजाइटी होना, जैसे सिर में दर्द होना, कई बार माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो जाना, एक ही हाथ की पोजीशन में मोबाइल को लगातार चलाते रहने से हाथ में स्थिरता आ जाना, नसों में परेशानियां होना, आजकल ये बहुत आम बात हो गई है। और हमें इतना ज़्यादा इंटरेस्ट भी आता है उसे चलाने में कि कई बार हम ये चीज़ों को सोचते ही नहीं है, देखते ही नहीं है, अक्सर करके इन परेशानियों में जगड़ते जा रहे हैं। तो ऐसी समस्याओं के लिए हमें कुछ तो स्टंट लेना पड़ेगा, यानी कि कुछ तो इनसे निजात पाने के लिए कुछ तो ऐसी पाबंदियाँ ज़रूरी हैं कि इन्हें कितने देर तक इस्तेमाल करना है, कब तक करना है, किसकी निगरानी में करना है, और हम क्या उसमें प्रयोगात्मक या क्या उसमें नई चीज़ देख रहे हैं जो हमारे एज या उम्र के हिसाब से सही है। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है इन चीज़ों का एक लिमिट में होना, और यदि पेरेंट्स नहीं भी इनको देख पा रहे हैं तो कैसे उस चीज़ को लिमिटेड किया जाए, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चा काम के लिए आपसे मोबाइल मांगता है या काम कुछ सीखने के लिए मोबाइल मांगता है और आप उस पर निगरानी नहीं रखते हैं तो वो कई सारी ऐसी भी चीज़ें जो उसकी उम्र के हिसाब से ठीक नहीं है वो भी सीखता है। तो ऐसे में अगर एक नया जो नियम है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ऐसे में अगर पेरेंटल कंसेंट भी मांगा जाता है तो बच्चों को और भी लिमिट किया जाता है, पेरेंट्स को पता भी होगा कि वह क्या और कैसे कब सीख रहा है। तो ये तो बहुत अच्छी जानकारी हुई आपके लिए कि हम इस तरह की पाबंदियां भी ला सकते हैं जिससे कि हम अपने स्वास्थ्य को ठीक रख सकें और इसी तरह कार्यक्रम में भी आगे बढ़ सकें। तो आइए कार्यक्रम में एक लेते हैं छोटा सा विराम और फिर से हाजिर होते हैं कार्यक्रम के कुछ अगली जानकारी लेकर।
1: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
2: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम आइडियल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान,
1: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
2: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए, मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
1: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420223।
0: बिल्कुल, हम आगे बढ़ने के लिए भी तैयार हैं और बिल्कुल हम ग्रोथ करने के लिए भी तैयार हैं, क्योंकि हम लेकर आए हैं ऐसी जानकारी जिसमें आपको लगेगा कि सच में हमने कुछ तो ग्रोथ की है। अगर हम किसी तरह से अपनी परेशानियों को अगर कम कर सकें, इजीली उनके सोल्यूशन निकाल सकें, तो इससे अच्छा क्या ही होगा। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी उम्र का पता या तो हम अपने जन्म प्रमाण पत्र से लगाते हैं, या फिर हमारे शरीर के भीतर बहने वाले खून से, या फिर दूसरी और भी चीज़ें पूछ कर बता कर या एक अंदाज़ा लगा के बताते हैं। संभवतः यह सारी चीज़ें हमने देखी होंगी। और अक्सर करके क्या होता है कि 30 साल की उम्र तक आते आते हमारे शरीर की कई सारी चीज़ों में एक परेशानियां आने लगती हैं, क्योंकि उम्र का जो पड़ाव होता है वो 30 के बाद हम युवा से थोड़े आगे उसमें जाने लगते हैं और शरीर में कई सारी कमियाँ, कई सारी परेशानियाँ आने लगती हैं। हम संभवतः उन चीज़ों को एक्सेप्ट भी करते हैं और कभी कभार उन्हें ज़्यादा बड़ा स्वरूप दे देते हैं। तो ऐसे में अचानक हमारे शरीर में जो परिवर्तन होते हैं, हमारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, उन धमनियों में कितना प्रभाव है, कितना क्या वो है, उसे अक्सर करके हम टेस्ट से पता करते हैं कि मेडिकल टेस्ट होते हैं, उनमें पता चल जाता है कि हमें क्या क्या परेशानी हो रही है। लेकिन IIT मद्रास के वैज्ञानिकों द्वारा एक आर्ट सेंस नामक स्वदेशी उपकरण विकसित किया गया है, जो करीब 5 मिनट की जाँच से यह तकनीकी धमनियों की कठोरता, रक्त तरंग की गति और संकेतों का आकलन कर लेता है, जिससे कि जांच के लिए ना खून निकलना पड़ता है ना ही इंजेक्शन लगाना पड़ता है। अब भाई जिन्हें इंजेक्शन से डर लगता है उनके लिए तो ये भाई रामबाण इलाज हो।

गया और जिन्हें खून निकालते देखते हुए या अपना खून निकलते देखते हुए बेहोशी आती है, वो तो भाई इस इलाज के लिए संभवतः इंतज़ार ही कर रहे होंगे। तो दोस्तों बिल्कुल, मद्रास आईआईटी के मद्रास वैज्ञानिकों द्वारा जो आर्ट सेंस नाम का स्वदेशी उपकरण बनाया गया है, यह उन्हीं लोगों के लिए है कि यदि आप अपनी कोई जांच या परेशानी से किसी चीज़ से जूझ रहे हों, जांच कराने में डरते हैं, तो ऐसे में ना तो आपको सुई से इंजेक्शन से ब्लड निकालने की ज़रूरत है, ना ही जो है आपको किसी उपकरण को जबरदस्ती अपने शरीर में इंसर्ट करा के या फिर किसी तरह से परेशान होने की आवश्यकता है, बल्कि आप आसानी से इसके द्वारा टेस्ट कर सकते हैं। अब टेस्ट किस प्रकार के किए जाते हैं वो भी हम आपको बताते हैं। इसके द्वारा जो है आईआईटी मद्रास के वेस्पा स्क्रीनिंग फॉर पब्लिक हेल्थ अडॉप्शन मिक्स मिशन के द्वारा शुरू किया गया है। इसे भविष्य में हृदय रोग के खतरे के लक्षण आने से पहले ही पहचानने की कोशिश की जा सकती है। स्वस्थ धमनी रबड़ की नली की तरह लचीली होती हैं, दिल की हर धड़कन के साथ यह फैलती सिकुड़ती रहती है और रक्त प्रवाह के दबाव को संभालती भी है। उम्र और ख़राब जीवन शैली के साथ साथ ये लचीलापन कम होने लगता है। तो ऐसे में धमनियों की ऐसी बढ़ती कठोरता को यानी कि सरली वैक्यूलेशन एंजिंग यानी समय से जो पहले रक्त नलिकाएँ वर्क करना कम कर देती हैं या फिर बूढ़ी हो जाती हैं, कहने का एक मतलब है। तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं, उनकी कठोरता कितनी ज़्यादा है, पल्स वेव उतनी तेज होगी यानी रक्त तरंग की गति धमनियों के व्यवहार से ज़्यादा अजैविक सेहत के साथ अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हार्ट अटैक के आने की संभावना या भविष्य में क्या जोखिम हो सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में पता किया जा सकता है। और ये एक बहुत आसान टेस्ट होगा। अब तक धमनियों की कठोरता के आकलन में विदेशी आबादी पर बने संदर्भ मानकों का सहारा लिया जाता था, यानी कि अब तक जो है आप ब्लड टेस्ट कराते थे या किसी प्रकार की कोई अल्ट्रासाउंड वगैरह चीज़ें इस तरह की होती थी, तो ऐसे में न्यूरोलॉजिस्ट पर जाना, नसों की जानकारी लेना अब बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो ऐसे में संभावनाएं भी कम हो जाएंगी कि आप अपनी परेशानी को जल्दी निजात पा सकेंगे और समय से पहले पता लगा सकेंगे कि आपके हार्ट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और बिल्कुल हम चाहते हैं कि ऐसे ही स्वस्थ रहिए आप, बिल्कुल हम चाहते हैं कि ऐसे ही आप अपने जीवन शैली को एकदम सुचारू रूप से चला सकें, आने वाले खतरे से पहले से सजग होंगे तो आने वाली परेशानियाँ आपको तंग ही नहीं करेंगी। और बिल्कुल हम भी आपको तंग नहीं करेंगे, इस प्यारे से गीत के साथ कराएंगे आपको मनोरंजन और कार्यक्रम में यूं ही बढ़ते रहेंगे इस प्यारे से गीत के साथ।

बिल्कुल, ये मन की डोर तो आपसे इस तरह बंद गई है कि बिल्कुल खुलने का यानी कि जाने का हमारा मन ही नहीं है। लेकिन क्या करें, इस प्यारे से त्यौहार को आप और हम मिलकर जो मना रहे हैं और ये मन की डोर ऐसे ही बनी रहे, उसके लिए आज तो हमें जाना पड़ेगा, क्योंकि कल फिर से जो आना है आपसे इस मन की डोर की गांठ टाइट करने, यानी कि एक बार फिर से मिलने आएंगे हम आपका आपसे कल नए गीत नए प्यारे से चर्चाओं के साथ और फिर से मिलेंगे। लेकिन आज दीजिए हमें अनुमति, क्योंकि घड़ी की सुइयों ने हमें कर दिया है इशारा। तो आज दे दीजिए अनुमति अपने रेडियो मित्र रश्मि राहुल को, सभी श्रोताओं को एक बार फिर से रश्मि राहुल का प्यार भरा नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे सूचना और समाचारों पर आधारित कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर। यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। सुबह के 9:30 हुए हैं तो डीजे प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम, जिसके अंतर्गत आज आप सुन पाएंगे पंडित जगदीश प्रसाद पंडित के द्वारा गायन पर राग गुर्जरी तोड़ी।

इस युग में सारंगी तो खत्म ही हो चुकी है, लेकिन इन बच्चों को अभी भी आशा है। इस बात का हमें बहुत बहुत खुशी है। इस बात की ऐसा साज जो गले से मिलता है, और गले से कोई साज इतना नहीं मिलता, और वो इतना सुर में, इतना ढंग से, इतना कायदे से, ये खानदानी तालीम है।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत, जिसके अंतर्गत आज आपने सुना पंडित जगदीश प्रसाद पंडित के द्वारा गाया हुआ राग गुर्जरी तोड़ी। यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। सुबह के

10 बजने को है। कुछ ही देर में जिले की चिट्ठी हमारे भोपाल केंद्र द्वारा हम आप तक लेकर आएंगे। कृपया अगले कार्यक्रम के लिए प्रतीक्षा कीजिए।

0: जीएसटी काउंसिल ने कमर्शियल बिजनेस में टैक्स को और भी सरल बना दिया है। अभी तक होटल के कमरों पर जीएसटी की चार दरें लगती हैं। ₹1,000 से कम कीमत वाले होटल रूम पर 0% GST है, जबकि 1,000 से 2,499 रुपए तक के होटल के कमरे पर 12% GST लगता था। 2,500 से लेकर 7,499 रुपए तक के होटल कमरे पर 18% टैक्स लगता है। इससे ज्यादा कीमत का होटल रूम है तो उस पर 28% GST लगता है। लेकिन अब होटल के कमरों पर सिर्फ दो ही रेट लगाए जाएंगे। 7,500 से कम कीमत वाला कमरा है तो 5% और ज्यादा है तो 12% GST देना होगा।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी। हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी।

समाचार एकांश आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है गुना जिले की चिट्ठी। आलेख रोहित गोस्वामी, वाचन स्वर शेख महजबी अलमास। गुना जिले की चिट्ठी में सबसे पहले बाल श्रमिकों और रोजगार की। गुना जिले में श्रमिकों और नियोक्ताओं को एक दूसरे से जोड़ने के लिए डिजिटल लेबर चौक ऐप शुरू किया गया है। इस ऐप के जरिए श्रमिकों को स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर मिलेंगे और नियोक्ता अपनी जरूरत के अनुसार योग्य श्रमिक तलाश सकेंगे। निर्माण, कृषि और घरेलू काम सहित असंगठित क्षेत्र के श्रमिक इस पर पंजीयन करा सकेंगे। श्रमिक कल्याण के क्षेत्र में गुना जिले के 60 श्रमिक परिवारों को मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना के तहत 1,33,00,000 रूपये की सहायता दी गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सिंगल क्लिक के जरिए यह राशि हितग्राहियों के खाते में पहुंचाई है। यह सहायता असंगठित क्षेत्र के श्रमिक परिवारों के लिए आर्थिक संबल का माध्यम बनी है। अब बात किसानों की। गुना जिले में ई विकास प्रणाली 2.0 के जरिए ई टोकन से खाद वितरण की व्यवस्था जारी है। किसानों को उनकी बोई गई फसल के अनुसार यूरिया, TSP, NPK और SSP उपलब्ध कराया जा रहा है। किसान स्वयं एवं CAC सेंटर और खाद वितरण केंद्र के जरिए ई टोकन बुक कर सकते हैं। कृषक कल्याण की इस कड़ी में गुना के नानाखेड़ी मंडी परिसर में बलराम कृषि महोत्सव आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने वर्चुअल रूप से किसानों को संबोधित किया। उन्होंने कृषि के साथ पशुपालन, उद्यानिकी को बढ़ावा देने पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुंभराज की धनिया को जल्द GI टैग मिलने की उम्मीद है। अब बात महिला सशक्तिकरण की। लाडली बहना योजना के तहत गुना जिले की 2,27,114 बहनों के खातों में 39,13,00,000 रुपए से अधिक की राशि भेजी गई है। इसमें नियमित किस्त के साथ रक्षाबंधन के शगुन के रूप में 250 रुपए की अतिरिक्त राशि भी शामिल है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राशि का अंतरण किया। युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए आरोन में जिला स्तरीय रोजगार एवं स्वरोजगार मेला लगाया गया। मेले में 7 निजी कंपनियों ने हिस्सा लिया और 311 युवाओं ने पंजीयन कराया। इनमें से 192 युवाओं का प्रारंभिक चयन हुआ जबकि 164 से अधिक युवाओं को ऑफर लेटर दिए गए। सामाजिक समरसता की दिशा में गुना जिले में गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती के उपलक्ष्य में समरसता संकल्प अभियान और यात्रा शुरू हुई है। 21 अगस्त

0: संयुक्त दल बनाया गया है। यह दल जांच, निगरानी और जरूरी कार्रवाई करेगा। अब बात गुना की बारिश की। 1 जून से 27 अगस्त तक जिले में औसतन 788.1 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जो सामान्य बारिश का करीब 75% है। गुना जिले में आज रक्षाबंधन का पर्व उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधकर उनके सुख और लंबी उम्र की कामना कर रही हैं। भाई भी बहनों को उपहार देकर उनकी रक्षा का संकल्प ले रहे हैं। रक्षाबंधन के अगले दिन कल भुजरिया पर्व भी उत्साह और धार्मिक आस्था के साथ मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के तहत गुना जिले के मकसूदनगढ़ में कल 29 अगस्त को जन समस्या निवारण शिविर लगाया जाएगा। शिविर में जिला प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहेंगे और लोगों की समस्याएं सुनेंगे। नागरिक अपने आवेदन और जरूरी दस्तावेजों के साथ शिविर में पहुंचकर समस्याओं के निराकरण का लाभ ले सकते हैं। और अंत में स्वतंत्रता दिवस की बात। गुना में 15 अगस्त को 80वां स्वतंत्रता दिवस हर्ष और गरिमा के साथ मनाया गया। लाल परेड ग्राउंड पर कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। समारोह में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और शहीदों के परिजनों का सम्मान किया गया। इस मौके पर जिले के विकास कार्यों, उपलब्धियों पर आधारित विकास पुस्तक का भी वितरण किया गया। गुना जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: अभी आप सुन रहे थे गुना जिले की चिट्ठी। आलेख था रोहित गोस्वामी का, वाचन स्वर शेख महजबी अलमाज का था। ये प्रसारण आपकी सेवा में आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से किया जा रहा था। कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।
2: मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 10:05 हुए हैं। तो लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम, व्हाट्सएप फरमाइश पर आधारित फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम। कार्यक्रम में आइए सुनवाते हैं आपको कार्यक्रम का ये पहला गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में। इस गीत को हमने लिया है फिल्म छोटी बहन से, और साथ ही बताएंगे कि इस गीत को सुनने की फरमाइश की थी यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से संतोष खड़से, विनोद खड़से ने। इसी गीत के लिए हमें लिख भेजा है। ग्राम ममना, जिला हमीरपुर, बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश से रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू, रंजना, वंदना, प्रियल, दिव्यांशी और विश्वकर्मा ने। श्री गणेश अविका आर्ट, श्रीरामपुर से डॉक्टर अशोक कुम्भार, अंबिका, जीविका, सोनू, अर्चना, अजय, करिश्मा, अविका, साइसा, इन सभी कुम्हार परिवार ने। इसी गीत के लिए हमें अगला व्हाट्सएप फरमाइश मिला है। शीतल रेडियो श्रोता संघ, ग्राम बहरामपुर, टेमा, जिला खरगोन, मध्य प्रदेश से डॉक्टर त्रिलोक चंद्र वर्मा, भागवत वर्मा, अभिषेक वर्मा, सीमा वर्मा, अमित वर्मा, सचिन मास्टर, समर राज, आर्यन, बेबी आरोही, इसिका, अंजलि, श्वेता वर्मा, इन सभी वर्मा परिवार ने। इसी गीत के लिए अगले फरमाइश करता है मित्रनगर बीड़ शहर से विकास बंसोड़े, रेखा बंसोड़े, आदिति बंसोड़े और वैभव सिंधे, हिल स्टेशन खंडाला से आकाश सरोदे और प्रिया सरोदे। तो इनकी फरमाइश को हम पूरा करते हैं और इनकी फरमाइश पर आपको सुनवाते हैं फिल्म छोटी बहन का ये गीत इस रक्षाबंधन विशेष कार्यक्रम पर।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे हैं व्हाट्सएप फरमाइश पर आधारित फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम, और साथ ही हम आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद के किए गए रक्षाबंधन विशेष पर ये प्यारे से गीत। तो आइए, अगला गीत हम लेकर हाजिर हैं फिल्म बेईमान से। गीत में आवाज़ें हैं लता मंगेशकर और मुकेश की। तो साथ ही आपको बताना चाहेंगे कि इस गीत के लिए हमें फरमाइश लिख भेजी है हयात कॉलोनी अररिया बिहार से फैशाल इमाम, मोहम्मद अफजल, मोहम्मद अकरम, मोहम्मद नसीफा प्रवीण, और इसी गीत के लिए हमें लिख भेजा है कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला से रवि कुमार, राहुल, रणजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, मन्नत, गुरकीत, गुरशब्द और सभी राहुल परिवार ने। आरजी रेडियो श्रोता संघ जैन मंदिर वाली गली कुरावली से हमें लिख भेजा है राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन अंसारी, नैरीन अंसारी, आसना अंसारी और मोहम्मद कैफ अंसारी ने। गांव कैरो जिला तरन तारण पंजाब से गुरदर्शन, लाल चत्रोला, सुनीता, सम्मी, रजनी, आकाशदीप, अनहद और पोतरा गुरशब्द, इन सभी ने लिख भेजा है हमें गुरदर्शन से पंजाब से। गुरप्रीत सिंह तांगोरी, जसवीर कौर, महप्रीत कौर, महकप्रीत क्रौत कौर और सहजीत कौर, इन सभी ने तांगोरी मोहाड़ी पंजाब से हमें लिख भेजा है इसी गीत के लिए। मोहम्मद कलीम अंसारी, जहीर बेगम अंसारी, मोहम्मद अयान अंसारी, मोहम्मद उस्मान अंसारी, मोहम्मद यासीन हाजिम और शमसुल कमर राही, इन सभी ने गंज डुडवारा से हमें इस गीत के लिए लिख भेजा है। तो आइए, इन सभी की फरमाइश पर हम आपको सुनवाते हैं।

0: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
1: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम आइडियल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
0: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
1: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुंचिए। मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
0: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800-420-2233।
2: अल्पविराम के बाद स्वागत है श्रोताओं आपके पसंदीदा कार्यक्रम वर्ड्स ऑफ फरमाइश पर आधारित फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में, और हम आपको सुनवा रहे हैं ये रक्षाबंधन विशेष पर ये प्यारे से गीत जो आपके द्वारा फरमाइश हमें की गए हैं। तो आइए कार्यक्रम में सुनते हैं ये अगला गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म चंबल की कसम से। माफ़ कीजिएगा, इस गीत को हमने लिया है फिल्म त्रिशूल से, किशोर कुमार और यशोदास की आवाज़ों में। और साथ ही बताना चाहेंगे कि इसे हमें फरमाइशकर्ता जो है हमारे इस गीत के हैं किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहनदास, आशा देवी, राघव कुमार, भानु प्रिया, मेघा राशि, अनुराग मोहन, धनौरी तेलीवाला से निशार सलमानी, नौसाद सलमानी, बेबी आलिया, अयान बाबू ने। इसी गीत के लिए जाकिर, सुमैया, सुवान, सुलमा, सलमा मुमताज, दिलसाद, नासिर बानू और बादशाह मुलानी परिवार ने। जिगीत के लिए अगले फरमाइश करता है सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से यशमीत, यसु, निरंजन सिंह, सौम्या सिंह और अविरल सिंह, सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़, टीडी मल्होत्रा, रितिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप, कालका से सुचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्ठल बजाज ने। इसी गीत के लिए अगले फरमाइश करता है पूना जंक्शन मस्तानपुरा से अनंता भगत, अरुणा भगत, चितना भगत, सुलोचना भगत। तो इसी गीत के लिए हमें लिख भेजा है सुदर्शन साहा, पल्लवी साहा, प्रखर साहा, कुशल साहा, नीति साहा, सुरभि साहा, अश्विनी साहा, मंगला बैन और राजेंद्र सिंह ने, पद्मा टॉकीज नेपाल नगर से। इन सभी की फरमाइश को पूरा करते हैं और साथ ही बताते हैं कि इसी गीत के लिए हमें लिख भेजा है ग्राम पंचायत बैठाना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, अंजनी, ज्योति, उमेश, धनेश्वरी, प्रहलाद वर्मा और चित्रेखा वर्मा ने। इन सभी की फरमाइश पर आपको सुनवाते हैं।

श्रोताओं, बहुत ही प्यारा सा गीत अभी आपने सुना यशुदास और मुकेश की आवाज़ में। तो आइए, कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवाते हैं ये अगला गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म चंबल की कसम से, लता मंगेशकर की मधुर आवाज़ में। और साथ ही बताएंगे कि इस गीत के लिए हमें फरमाइश की थी फुल चिचौंडली तालुका पंढरपुर से जाकिर मुनानी, सुमैया मुनानी, सुमान मुनानी, समीर मुनानी, सलमा मुनानी, मुमताज़ मुनानी, नाशिर मुनानी, उनके चाचा चाची ने। तो इसी गीत के लिए हमें लिख भेजा है छिंदर सिंह छिंदा, सतनाम कौर, दुलप्रीत कौर, गगनीत कौर और उनकी लाडली पोती रौनक दीप कौर ने, अजीत नगर मलोटा पंजाब से। इसी गीत के लिए अगले फरमाइश करता है बहरामपुर टेमा खरगोन मध्य प्रदेश से भागवत वर्मा, अभिषेक वर्मा, अमित वर्मा, समर वर्मा, रोहिणी वर्मा, अंजलि वर्मा, इन सभी ने। इसी गीत के लिए हमें लिख भेजते हैं हमारे अगले फरमाइश करता हैं नांदेड़ से प्रकाश जैन, लातूर से संगीता जैन, सूरज जैन, पीआर जैन, इन सभी ने। नारगोड़ा छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी, ट्विंकल, डिम्पल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी ने। इसी गीत के लिए अगले फरमाइश करता है पश्चिम सिंह भूम चाईबासा झारखंड से शिव गोप, प्रेम गोप, कपिल गोप, शिवांशी गोप, संगीता गोप, लिपि गोप और दीपाली गोप ने। छत्तीसगढ़ नागर कोहरा जिला राजनंद गाँव से बबलू साहू, जमुना देवी साहू, प्रेम पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा बेवी, आराध्या साहू ने इसी गीत के लिए हमें लिख भेजा है। तो क्यों ना इनकी फरमाइश पर आपको सुनाएं फिल्म चंबल की कसम से लिया हुआ ये।

0: भाई एक शेर के चेहरे का टैटू बना दो यहाँ शोल्डर पे।
1: अरे रुको रुको, पहले चेक तो कर लो कि निडल नई और डिस्पोजेबल है या नहीं।
0: मतलब
1: ये कि संक्रमित सुई से टैटू बनवाने या किसी और तरह की निडल शेयरिंग से HIV एड्स और अन्य संक्रामक बीमारियों के संक्रमण का खतरा होता है, तो ये इंश्योर करें कि सिर्फ नई और डिस्पोजेबल निडल सिरिंजेस का ही यूज कर रहे हो।
0: ये तो बड़ी अच्छी बात बताई है भाई तुमने। अभी भी और आगे भी मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि डिस्पोजेबल नीडल सिरिंजेस ही यूज हों।
2: आप भी सतर्कता अपनाएं और HIV के संक्रमण से खुद को बचाएं। अधिक जानकारी के लिए 1097 पर कॉल करें। मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
3: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
4: अप टू 85% LTV के साथ अब मणप्पुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
3: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
4: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए। मणप्पुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
3: मणप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420-2233।
5: अल्प विराम के बाद एक बार फिर से स्वागत करते हैं वर्षा फरमाइश पर आधारित फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में, जिसमें आप सुन रहे हैं आज रक्षाबंधन विशेष पर आपके पसंद किए हुए गीत। तो आइए अगली फरमाइश पर हम सुनवाते हैं आपको फिल्म हम बच्चे हिंदुस्तान के इस फिल्म से लिया हुआ ये गीत प्रीति सगर की आवाज़ में। इस गीत को पसंद किया है गाँव टोरेवाल जिला नवांशहर पंजाब से गगनदीप थांदी, तृप्ति कुमारी थांदी, डॉक्टर प्रियंका थांदी, डॉक्टर प्रशांत थांदी, डॉक्टर प्रियतम थांदी और बेबी वामिका वाणी थांदी, इन सभी ने। साथ ही इसके लिए हमें अगली फरमाइश मिली है सदर बाजार कुरावली से अनिल कुमार वर्मा, माया वर्मा, राहुल कुमार वर्मा, विनीत कुमार वर्मा और सोनम वर्मा की। कबीर रेडियो श्रोता संघ डोंडी लोहारा बलोदा छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय कुमार तामुरिया, तुषार देव तामुरिया, डॉली बेबी पूजा तामुरिया, राधिका प्रभा देवी तामुरिया और पोता मास्टर अल कबीर तामुरिया, इन सभी ने इसी गीत के लिए हमें लिख भेजा है। गांधी चौक रूपर पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर मीका, जितेंद्र मीका और मीका विराक, इन सभी ने इसी गीत के लिए हमें फरमाइश की है। अनारकली बाज़ार जगराओं पंजाब से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका पाठक, गायवा पाठक, सुच्चा सिंह पाठक, विनोद कुमारी, विनोद पुरी, इन सभी ने हमें लिख भेजा है फिल्म हम बच्चे हिंदुस्तान के इस प्यारे से गीत के लिए। बीड शहर महाराष्ट्र से हमें लिख भेजा है नंदकिशोर घटे, संगीता घटे, साक्षी घटे, जयश्री महेत्रे, अंजलि करवा, बाला साहेब करवा, रामनिवास अग्रवाल, धनंजय और PV कुलेथ ने। मीरा सिंह, ज्योति सिंह रोहतास बिहार से हमें लिख भेजती हैं इसी गीत के लिए। कोल सिटी बरका काना से अफजलताज, शाहिनी सुल्ताना, सोनम, सोनू, तहनजीब, निप्पी, साहिनी, मोहम्मद अफजल मलिक, इन सभी ने हमें लिख भेजा है इस प्यारे से गीत के लिए। तो आइए आपकी फरमाइश पर हम आपको सुनवाते हैं आपके पसंद किए हुए गीत।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे हैं व्हाट्सएप फरमाइश पर आधारित फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम, जिसमें हम आपको सुनवा रहे हैं रक्षाबंधन विशेष पर आज आपकी फरमाइश के किए हुए गीत। तो आइए कार्यक्रम में अब आपको सुनवाते हैं फिल्म राखी से लिया हुआ ये गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। और साथ ही आपको बताना चाहेंगे कि इस गीत के लिए हमें फरमाइश की है नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से PS नाहकर, निर्मला नावकर, विशाल नावकर ने, मलकापुर से नारायण इंगले, सोपान तायड़े, आशीष मोहरकर, इन सभी ने इस गीत के लिए फरमाइश की है। विदर्भ श्रोता क्लब जलगांव जंक्शन से दिनेश काले, वंदना काले, आदेश कुमार काले, प्रोफेसर वसुधा ब्रजसेन ने इस गीत के लिए हमें लिख भेजा है। साथ ही हमें लिख भेजा है हिंदुस्तान रेडियो मित्र बन्ने बुजुर्ग पलेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी विश्वकर्मा, सोनाली विश्वकर्मा, सोनम विश्वकर्मा, आशीष विश्वकर्मा ने इसी गीत के लिए, गांव डाकघर निमनाबाद जिला जिंद हरियाणा से जसवीर सिंह अरोड़ा, जितेंद्र कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत कौर, करमजीत कौर, इन सभी ने। उत्तम नगर दिल्ली से हमें लिख भेजा है बोधराज खोरवाल, कमला रानी, भानु प्रकाश, गीतिका खोरवाल ने। किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहन दास वर्मा, सुमन, भानुप्रिया, मेघा राशि, माधुरी और किरण, इन सभी ने। इसी के साथ हमें लिख भेजा है दमदम एयरपोर्ट कोलकाता से बसंत कुमार सिन्हा, रेखा देवी साहब, अजय कुमार, अभय कुमार सनातनी, पीहरा बाजार झुमरी तलैया गिरहिड़ी से डुगू कुमार गुप्ता, रिम्मी तनुश्री गुप्ता, शिवानी कुमारी, प्रियंका कुमारी साहू, हीरा मोती पन्ना, सीत बसंत, डीके सिन्हा, बांके बिहारी बाबू और मोसाई कलतलिया बाबू, इन सभी ने। उत्तम नगर भगत, श्वेता भगत, किसु तासु, अर्पण आनंद, सत्यम आनंद, इन सभी ने हमें लिख भेजा है पाकुड़ झारखंड से। और इसी के साथ मुन्ना भगत और गुड्डी भगत, इन्होंने लिख भेजा है हमें बोहड़ा गाछी पश्चिम बंगाल से। तो आइए इनकी फरमाइश पर हम आपको सुनवाते हैं इनकी पसंद का।

0: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
1: अप टू 85% एलटीवी के साथ अब मनापुरम आईजीएल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
0: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
1: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुंचिए। मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
0: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800-420-2233।
2: अल्पविराम के बाद स्वागत करते हैं व्हाट्सएप फरमाइश पर आधारित फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में। और कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए हेमलता और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में ये गीत फिल्म आतिश से। इस गीत को पसंद किया है न्यू बजरंग कॉलोनी राजा गैस गोदाम गोल पहाड़िया लश्कर ग्वालियर से नेत्राम गोड़िया, सरोज गोड़िया, शशि कुमार गोड़िया, भावना गोड़िया, नीरज गोड़िया, अर्चना गोड़िया, आयाध्या, आराध्या, आध्या, श्रेया, दिवांशु, इन सभी ने। मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा बेरड़ी से नाना जी लाम से, मीना लाम से, तेजस लाम से, अजय लाम से, हर्षिता लाम से ने इसी गीत के लिए लिखा है। प्रतिष्ठान रेडियो श्रोता संघ नेहरू चौक, डॉक्टर सुरेश, अनीता जाधव, आरती, पूजा, प्रसाद जाधव, सोनम जाधव, बेबी सिया जाधव ने। जरना शहर से सोमनाथ जाधव, गीता जाधव, ओम जाधव, सुभाष जाधव, चंदन जाधव, एकनाथ जाधव और संगीता जाधव ने इसी गीत के लिए। ग्राम पंचायत बैठना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, अंजलि वर्मा, ज्योति वर्मा, उमेश वर्मा, धनेश्वरी वर्मा, प्रहलाद वर्मा, चित्रेश वर्मा और चित्रेखा वर्मा। सनावत से शेखा मूसा, मोहसिन, अशोक वर्मा और राजकुमार बड़ोना, इन सभी ने इसी गीत के लिए हमें लिख भेजा है। साथ ही हमारे अगले फरमाइशकर्ता हैं गम्हरिया जमशेदपुर से रोहन जायसवाल, आर्य जायसवाल, बउरी बाजार चंदौली से विजय जायसवाल, सरोज जायसवाल, रामनगर कदमा जमशेदपुर से मुराहू जायसवाल, देवयंती जायसवाल, चकिया बाजार चंदौली से सुंदर जायसवाल, सुमन जायसवाल ने। अगले फरमाइश करता है हमारे, जिन्होंने हमें लिख भेजा है, अडार नंदघाट छत्तीसगढ़ से माखन वर्मा, चांदनी वर्मा, राहुल वर्मा, गोपी वर्मा ने। तेलंगाना निज़ामाबाद से शेख उल्लाह वक्स, बेगम राबिया, शेख रहीम, दानिश, आशिफ शेख, इन सभी ने। तो आइए इनकी फरमाइश पर आपको सुनवाते हैं फिल्म आतिश का ये गीत।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे हैं वर्षा फरमाइश पर आधारित फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम, जिसमें आज आप सुन पा रहे हैं रक्षाबंधन विशेष पर ये प्यारे से गीत। तो आइए कार्यक्रम के अंत में जोड़ते हैं हम इस प्यारे से गीत को, जिसे हमने लिया है फिल्म अनजाना के इस फिल्म से, और इसमें आप

आवाज़ है लता मंगेशकर की। तो आइए साथ ही बता देते हैं कि इस गीत के लिए हमें फरमाइश की है तेलंगाना निज़ामाबाद से बबलू साहू, जमुना देवी साहू, प्रेम पूजा दुष्यंत प्रांजल समीक्षा देवी आराध्या साहू ने इसी गीत के लिए हमें लिख भेजा है। रश्मि झरना भरत कुमार राजकोट गुजरात से, बिहारी कॉलोनी महासमुंद से मोहम्मद याकूब, आसमा कुरैसी मोहम्मद यासुब, आसमा कुरैसी जेल रोड मथुरा से सरफुद्दीन बेलदार, अल्ताफ बेलदार, कल्लू मल्लू कलिया बेलदार ने, ग्राम बठेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से परमेश्वर साहू, राजभत्ती काजल पूर्वी हैजल रेशमा राजेश साहू ने, खमरिया छत्तीसगढ़ से साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति, सावित्री देवी और प्रतीक कुमार ने, कुंडलवाड़ी महाराष्ट्र से गंगाधर सावनकर, विजय लक्ष्मी सावनकर, राजेश और राकेश। इसके साथ ही इसी गीत के लिए हमें फरमाइश करता है हमारे जबलपुर मध्य प्रदेश से अशोक सिंह, सुनीता सिंह, अंकिता सिंह, मोहाली पंजाब से बब्बल मल्होत्रा और ओम प्रकाश मल्होत्रा। अगले फरमाइशकर्ता जिन्होंने हमें लिख भेजा है गुराया जालंधर से संदीप मक्कड़, ज्योति मक्कड़, मन्नत मक्कड़, भरत मक्कड़, कमल साहिनी, पिंगावाला चौक गुराया जालंधर, रोहिदास चौक पंढरपुर शहर से कृष्णा घोड़के, ऋषि सिंधे, प्रशांत सिंधे, यशराज सिंधे, सुनीता सिंधे, इन सभी की फरमाइश को हम पूरा करते हैं इस प्यारे से गीत के साथ।

श्रोताओं, इसी प्यारे गीत को एक और हमारे पसंदीदा करता है ग्राम संदलपुर आदरी से, कालीचरण यादव, दीपक कुमार यादव, चांदनी यादव, अखिलेश यादव ने, और इसी गीत को पसंद किया है मुरार से गुड़ी मिश्रा और तोसा मिश्रा ने। तो आप इसी गीत के साथ ही पार्सा फरमाइश पर आधारित फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। सुबह के 10:58 होने को हैं। कुछ ही देर में इस घंटे की खास खबरें आप सुनेंगे।

0: नमस्कार दोस्तों, कार्यक्रम फोन करे गीत सुने में स्वागत है आज आपका आपकी रेडियो मित्र श्वेता की ओर से। और साथ ही आपसे प्यार भरा अनुरोध कि आपके फोन का हमें हमेशा से इंतजार रहता है, मगर एक निश्चित अंतराल यानी 10 दिन को ध्यान में रखकर आप फोन करें, यानी एक 10 दिन का अंतराल जरूर रखें ताकि सभी रेडियो सुनने वाले मित्रों श्रोता साथियों से हमारे बात हो सके। तो आज इसी सिलसिले को जारी रखते हैं। हमारा फोन नंबर है कार्यक्रम फोन करें गीत सुनने के लिए 2660902। बाहर के श्रोता साथी भोपाल का एसटीडी कोड लगाएं 0755 और हमसे बातें करें। तो इंतजार है हमें आपके फोन कॉल का।
1: हेलो, परम माननीय दीदी सारा सप्रेम प्यार है, नमस्कार।
0: हाँ जी नमस्ते, कार्यक्रम फोन करें गीत सुने में स्वागत है आपका।
1: जी हृदय से धन्यवाद।
0: आपका नाम बताएं।
1: दीदी मैं आपका वही पुराना जाना पहचाना ब्रज रेडियो श्रोता मित्र शारदा प्रसाद प्रजापति गोवर्धन रोड मथुरा से वार्तालाप कर रहा हूँ। दीदी आप कैसी हैं?
0: मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हैं?
1: आपका आशीर्वाद बांके बिहारी कृपा है, घर परिवार में सब लोग आनंद से हैं और आकाशवाणी से जुड़े रहते हैं, आप लोगों का प्रसारित कार्यक्रम सुनते रहते हैं, आप लोगों से वार्तालाप होती है, बहुत ही अच्छा लगता है, सुखद अनुभूति होती है और हृदय प्रफुल्लित और गदगद हो जाता है।
0: जी तो बताएं कौन सी फिल्म का गीत सुनना चाहेंगे?
1: दीदी सर्वप्रथम मैं आपको आकाशवाणी मध्य प्रदेश भोपाल को और सभी श्रोताओं को रक्षाबंधन की बहुत बहुत हार्दिक बधाई शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं।
0: जी आपको भी हमारी ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं रक्षाबंधन पर्व की। जी
1: जी हृदय धन्यवाद। दीदी आज आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, फिल्म का नाम है बेईमान।
0: जी
1: और इसमें रक्षाबंधन का बहुत ही प्यारा और सुंदर सुरीला गीत है।
0: जी
1: जैस धरती और गगन का, जैस चंदा और किरण का, जैस भाई और बहन का, ये राखी बंधन है ऐसा, ये राखी बंधन है ऐसा। बहुत ही सुंदर,
0: बहुत अच्छा आप गा भी रहे हैं और हमें आपकी आवाज में ये गाना सुनकर भी बड़ा अच्छा लग रहा है ना?
1: धन्यवाद
0: जी, और आपने फोन किया इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।

0: जी नमस्ते।
1: हाँ नमस्ते मैडम।
0: नमस्ते, कार्यक्रम फोन करें गीत सुने में स्वागत है आपका।
1: हाँ मैं ग्राम बालोदा लखा जिला उज्जैन से कन्हैयालाल प्रजापति बोल रहा हूँ।
0: जी तो कार्यक्रम में आपका स्वागत है ना।
1: हाँ जी।
0: और आपकी जगह का नाम एक बार और बताएंगे हमें।
1: मैं ग्राम बालोदा लखा
0: जी
1: तहसील बड़नगर जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ मैं।
0: जी तो कार्यक्रम फोन करे गीत सुने में बताए आपका फोन लगा है।
1: वो बरसे झोलिया मेरी मोहम्मद तेरे दर पे खाली नहीं जाऊंगा वो है ना।
0: बताए कौन सी फिल्म का गाना।
1: वो फिल्म शायद वो याद नहीं आ रहा पर
0: भर दे झोली मेरी वो वाला गाना ना।
1: हाँ हाँ वही वाला।
0: जी जी जी ये हाँ। फिल्म बजरंगी भाईजान का गाना है।
1: भाईजान।
0: जी जी जी बड़ा ही प्यारा गाना है। और बताएं कैसे हैं आप।
1: बस क्या करें मौसम अच्छा क्या के कल पानी अच्छा गिरा परसों तो बस फसलों का मैं आनंद ही आनंद हो रहा है।
0: अच्छा अच्छा मौसम अच्छा हो गया है और बारिश भी अब है ना अच्छी खासी हो रही है।
1: नहीं बहुत बढ़िया बारिश मैडम अच्छी हो रही है।
0: हाँ।
1: और फसल में जान आ गई कि नहीं तो वो क्या हो गया अगर बारिश नहीं होती तो वो डिफिकल्टी हो जाती कठिनाई हो
0: बिल्कुल,
1: जाती
0: बिल्कुल।
1: तो सरसठ लोग भी इंतजार कर रहे थे पानी का।
0: चलिए ये तो बहुत अच्छी बात है और आपने बहुत अच्छा गीत पसंद किया है और साथ ही साथ आपने फोन किया इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।

0: हेलो,
1: हेलो
0: नमस्कार। कार्यक्रम फोन करें गीत सुने में स्वागत है आपका।
1: जी, नमस्ते दीदी। जी
0: हाँ, आपका नाम बताएं।
1: जी जी गांधी पार्क मनपुरा जिला शिवपुरी मध्य प्रदेश से दीदी मनोज नामदेव बोल रहे।
0: मनोज नामदेव जी।
1: हाँ दीदी,
0: तो स्वागत है आपका कार्यक्रम फोन करें गीत सुने में।
1: बहुत बहुत धन्यवाद दीदी आपको।
0: हाँ, अपनी जगह का नाम एक बार फिर से बताएंगे।
1: मनपुरा जिला शिवपुरी।
0: अच्छा जी, तो बताएं कौन सी फिल्म का गीत सुनना चाहेंगे।
1: दीदी आज सुनवा दो, फिल्म का नाम रहेगा तिरंगा,
0: तिरंगा फिल्म का जी।
1: और उसमें गाना है, उसमें एक रक्षाबंधन पर गाना है, तो
0: जी
1: आप वो सुनवा दो आप।
0: जी एक और बता दीजिए हमें मूवी।
1: चलो चलो ठीक है। तो दूसरी
0: एक
1: मूवी
0: और
1: है
0: मूवी
1: फिल्म
0: का
1: का
0: नाम
1: नाम
0: बता दीजिए हमें।
1: चम्मल की कसम, दूसरी फिल्म है,
0: हाँ
1: गाना फिल्म का नाम रहेगा चम्मल की कसम।
0: जी जी जी बिल्कुल।
1: उसमें गाना है, मेरे भैया से कहना बहना याद करी।
0: बिल्कुल, कल ही
1: क्योंकि आज,
0: रक्षाबंधन है।
1: जी बिल्कुल दीदी, क्योंकि आज रक्षाबंधन है, तो रक्षाबंधन पर आप एक गीत सुनवा दो, और बहनें हमारे पास आज आई हैं।
0: जी
1: जी,
0: जी बिल्कुल। तो
1: और
0: आपने
1: बताना चाहते हैं कि
0: हाँ
1: कार्यक्रम हेलो फरमाइश हो,
0: हाँ
1: या आपके किन से अलग अलग विभिन्न कार्यक्रम हो, बहुत अच्छे से आपके कार्यक्रम प्रसारित हो रहे हैं, और आप मेहनत भी बहुत जोर शोर से करते हो कार्यक्रम बनाने के लिए, तो मेरी ओर से सभी टीम को व आपको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी शुक्रिया। तो देखिए, आपने फोन किया और हमसे अच्छी बातें करी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: कार्यक्रम फोन करें गीत सुने में स्वागत है आपका।
1: मैडम जो है हम जिला महुआ
0: जी
1: और ग्राम पोस्ट आजनर तहसील कुलपाहा से बोल रहा हूँ मैं। क्षमाधर नाम दे
0: क्षमाधर जी। तो बताएं कौन से फिल्म का गीत सुनना चाहेंगे आप?
1: हम ये रक्षाबंधन का सुनवा दीजिए कोई।
0: जी कोई गीत याद है आपको राखी के पर्व का
1: जी?
0: कोई गीत हम सुनवा दें या आप बताएंगे रक्षाबंधन के पर्व पर कौन सा गाना सुनना चाहेंगे?
1: रक्षाबंधन पे कोई भी गीत सुनवा दो।
0: जी जी बताइए वहाँ का
1: आवाज में।
0: जी जी बिल्कुल बताइए वहाँ का मौसम कैसा है?
1: मौसम तो मैडम पानी बरस रहा है।
0: अच्छा
1: हाँ।
0: और क्या करते हैं आप?
1: मैं सिलाई का काम करता हूँ मैडम।
0: जी जी जी बिल्कुल तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और साथ ही साथ आप रेडियो भी सुन रहे हैं, मौसम भी अच्छा हो गया है।
1: तो मैडम जो है बहुत सहारा है ये हमारा।
0: हाँ हाँ
1: बैठे रहते हैं अपने काम करते रहते हैं और हाँ। रेडियो लगा लेते हैं तो अपने गाने सुनते रहते हैं।
0: हाँ।
1: आप लोगों के जो है
0: जी
1: बहुत अच्छा लगता है।
0: बिल्कुल तो आप ऐसे ही हमारे कार्यक्रमों को सुनते रहें। आपने फोन किया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: आपका जो प्रोग्राम 11 बजे रात तक सुनता हूँ बराबर।
0: हमें बड़ा अच्छा लगा ये जानकर, है ना। आपने फोन किया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।

0: जी नमस्कार।
1: नमस्ते मैम।
0: हाँ जी, आपका नाम बताएं।
1: मैं ग्राम उल्लास मोलिया गेंद्रलाल परिहार।
0: जी आपने देखिए फोन किया, इसके लिए हमें आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बस हम आपसे एक बात कहना चाहेंगे कि आप जैसे फोन करते हैं, है ना, हमें बड़ा अच्छा लगता है। बस आप 10 दिन का एक अंतराल रखिए सभी श्रोता साथी।
1: नहीं नहीं मैम,
0: हाँ जी
1: 15 रोज से ज्यादा हो गए मेरा फोन।
0: बिल्कुल बिल्कुल, हाँ हमें बड़ा अच्छा लगा ये जानकर। बाकी सारे श्रोता साथी भी इस बात को ध्यान रखें कि 10 दिन के अंतराल में आप हमें फोन करिए ताकि सभी श्रोता साथियों को अधिक से अधिक मौका मिल सके।
1: जी सभी को रक्षाबंधन की
0: जी जी हाँ, और आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं। बताइए कौन से फिल्म का गीत सुनना चाहेंगे?
1: मैम गाना है हरे राम हरे कृष्ण फिल्म का गाना है।
0: जी
1: गाना फूल में तारों में गाना है ना बहनों।
0: जी जी हाँ, बड़ा प्यारा गाना है।
1: जी जी
0: हाँ, तो आपने फोन किया, हमसे बातें करी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।

0: कार्यक्रम फोन करें गीत सुने में स्वागत है आपका।
1: नमस्कार मैडम।
0: नमस्कार, आपका नाम बताएं।
1: मैं ओम प्रकाश नेमा, विद्यानगर केंद्रछड़ा, जिला दमोह, मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ।
0: जी, तो कार्यक्रम में स्वागत है आपका। और कैसे हैं आप बताएं?
1: बहुत अच्छे हैं।
0: अच्छा, और कौन से फिल्म का गीत सुनना चाहेंगे?
1: हम चाहेंगे तिरंगा फिल्म का।
0: तिरंगा फिल्म का, अच्छा जी। और एक मूवी बता दीजिए जिसका आप सुनना चाहते हैं।
1: इसे समझो ना, रेशम का तार भैया।
0: बिल्कुल, हम जरूर सुनवाएंगे आपको। एक और मूवी का नाम बता दीजिए।
1: हरे रामा हरे कृष्णा।
0: हाँ, हमारे बहुत सारे श्रोता साथी जो है ना कॉल कर रहे हैं, वो लगभग यही फिल्म के गाने बता रहे हैं रक्षाबंधन के पर्व पर।
1: क्योंकि रक्षाबंधन है मैडम कल।
0: हाँ हाँ हाँ हाँ, बहुत सारे श्रोता साथियों की लगभग यही पसंद हो रही है। हाँ हाँ जी, एक और बता दीजिए।
1: रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
0: बिल्कुल, एक और मूवी का नाम बता दीजिए।
1: बंधन, फिल्म का नाम बंधन।
0: जी बिल्कुल, है ना, क्योंकि हमारे बहुत सारे श्रोता साथी बात कर रहे हैं हमसे और वो यही फिल्मों के नाम बता रहे हैं, तो कुछ अलग। हाँ बिल्कुल, तो ये भी आपकी पसंद।
1: उद्घोष का हमारी जितनी बहनें हैं सब सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
0: जी आपको भी,
1: और हमारे सारे मित्र हैं जितने भी होता उनको भी रक्षाबंधन की शुभकामनाएं।
0: जी
1: सारे देशवासियों को शुभकामनाएं।
0: जी
1: और जो सुन रहे हैं उनको भी शुभकामनाएं।
0: जी, आपने फोन किया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

0: कार्यक्रम फोन करें गीत सुने में स्वागत है आपका।
1: जी मैं इंदौर से बोल रही हूँ। नमस्ते मैम।
0: इंदौर से आप बोल रही हैं, आपका नाम? हाँ जी,
1: जीनत परवीन।
0: जीनत परवीन जी, तो स्वागत है आपका कार्यक्रम फोन करेगी सुने में।
1: कल राखी है, आपको राखी की बहुत शुभकामनाएं।
0: आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं। और बताइए कौन से फिल्म का गीत सुनना चाहेंगी?
1: जी फिल्म का नाम है लावारिस
0: जी,
1: और गाना है काहे पे से पे इतना भ्रमण करे वाला।
0: जी तो कैसा मौसम है वहाँ का, इंदौर का?
1: इंदौर का मौसम तो अच्छा, हवा चल रही है, कल बारिश हुई थी, परसों रात में भी हुई थी।
0: अच्छा अच्छा, चलिए।
1: और ये बहन सुनना चाहेंगी, मंसूर में ही अंजुम परवीन नाम है।
0: अच्छा अच्छा।
1: और मम्मी का नाम नूर भी है और बहन रोशन।
0: बिल्कुल, तो आपने फोन किया,
1: सुना रही
0: हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, हम जरूर सुनवाएंगे। और आपने फोन किया, हमसे बातें की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: शुक्रिया मैम।
0: नमस्कार।
1: नमस्कार।

0: नमस्ते
1: हेलो
0: जी, नमस्कार
1: जी। नमस्कार बहन जी,
0: आपका नाम बताएं। मैं आपके रेडियो मित्र श्वेता बोल रही हूँ।
1: अच्छा जी, मैं सुरेश कुमार सैनी, ग्राम पोस्ट अजमेर, जिला महोबा, उत्तर प्रदेश से बात कर रहा हूँ बहन जी।
0: जी, तो कार्यक्रम में आपका स्वागत है और फोन करें गीत सुने में। बताइए कौन सा गीत आप सुनना चाहेंगे
1: जी। आज आप सुनवा देना, फिल्म का नाम है करण अर्जुन और गीत के बोल हैं बंधन दिलों के बंधन, नाते दिलों के नाते।
0: जी, और बताएं क्या करते हैं आप।
1: जी बस मैं, हम फूल माला का काम करते हैं और सजावट वाला, डेकोरेशन वाला, और साथ में खेती किसानी भी करते हैं। और
0: अच्छा,
1: इस समय हमारे यहाँ मौसम बहुत गड़बड़ चल रहा है, बारिश 3-4 दिन से लगातार जमाझम बारिश हो रही है, धूप देखने को नहीं मिली है।
0: अच्छा,
1: तो इस समय
0: और इस मौसम में फूल अच्छे हो रहे हैं आपके पास में, मतलब आपकी दुकान
1: फूल
0: है।
1: तो हो रहे हैं लेकिन क्या है, बारिश हो रही है ना, तो इससे नुकसान हो रहा है
0: फूलों का।
1: अच्छा, क्योंकि थोड़ी बहुत धूप भी मिलना चाहिए।
0: हाँ, फूलों को धूप की भी जरूरत रहती है ना,
1: जी।
0: और बारिश भी अच्छी होनी चाहिए ताकि हमारी
1: बारिश भी अच्छी होनी चाहिए
0: फसल,
1: मतलब कम से कम, ज्यादा नहीं तो 2-4

0: घंटे के लिए खुल जाए मौसम
1: हाँ जी जी
0: तो अच्छा रहता है, लेकिन बिल्कुल 3-4 दिन से झमाझम बारिश हो रही है इस समय, हमारे तालाब चारों तरफ पानी पानी दिखाई दे रहा है।
1: हाँ जी जी जी जी बिल्कुल, तो हम चाहेंगे कि अच्छा मौसम खुशनुमा जैसा आप चाह रहे हैं वैसा हो जाए,
0: जी जी
1: और आपने फोन किया इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार
0: जी।

0: इत्सुनी में स्वागत है आपका। बताएं, आपका नाम बताएं।
1: मेरा नाम है पूरन वर्मा और मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट जयपुर राजस्थान, गांव का नाम अंशमेल बुगला।
0: तो बताएं, फोन करेगी

0: सुने में आपका फोन लगा है, कौन से फिल्म का गीत सुनना चाहेंगे?
1: मैडम गीत भी सुनेंगे, अभी चाहे आप बात करना हो।
0: बिल्कुल, हम बात करेंगे आपसे। आपको भी रक्षाबंधन पर्व की बहुत सारी शुभकामनाएं।
1: जी जी
0: मैडम जी, कैसे हैं आप?
1: ट्राई कर रहा था फोन, अब जाके फोन लगा।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, जी जी जी।
1: तो उधर मौसम कैसा हो रहा है मैडम?
0: यहाँ पर भी अच्छी बारिश हो रही है ना, बढ़िया मौसम है यहाँ पर तो।
1: अच्छा, अभी तो धूप है, ठंडी हवा चलती
0: है। पता है कौन सी फिल्म का गीत सुनना चाहेंगे?
1: जी मैडम, आज फिल्म का नाम रहेगा धर्म युद्ध।
0: अच्छा, इसका गीत सुनना चाहेंगे?
1: इसका एक गीत है बाबुल।
0: और एक मूवी का नाम बता दीजिए।
1: अगर फिर ये नहीं मिले तो फिल्म का नाम रहेगा रक्षाबंधन। इसी पर ये रक्षाबंधन वाला गाना है, सिया घोषाल की आवाज है, वो सुना दीजिए दोनों में से एक।
0: जी जी, आपने फोन किया, हमें अच्छा लगा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 11:58 होने को हैं।

0: लीजिए प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।
1: पेश है इस घंटे की खास खबरें। आज विश्व संस्कृत दिवस है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संस्कृत दिवस के अवसर पर देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। श्री राधाकृष्णन ने कहा कि संस्कृत भारत के ज्ञान, दर्शन और सभ्यता की शाश्वत भाषा है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि संस्कृत भाषा भारत के ज्ञान, विचार और रचनात्मकता के निरंतर वाहक रही है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने संस्कृत दिवस के अवसर पर कहा कि वेद, उपनिषद, दर्शन, साहित्य की समृद्ध विरासत को संजे हुए शाश्वत भाषा हमारी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज हम सभी संस्कृत के संरक्षण, संवर्धन और प्रसार का संकल्प लें। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव कल बालाघाट में मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री जिला स्तरीय समाधान ऑनलाइन में चिन्हित शिकायतकर्ताओं से सीधे उनकी समस्याएं सुनेंगे। साथ ही बैठक, समीक्षा के अलावा मीडिया संवाद और उद्योग संवाद भी होगा। केंद्र सरकार ने प्रदेश में ग्रीष्मकालीन 2026 सीजन के लिए पहले से स्वीकृत मात्रा के अलावा

0: 82,492 मीट्रिक टन अतिरिक्त मूंग खरीदने की अनुमति दी है। इससे राज्य में मूंग की कुल स्वीकृत खरीदी 5,39,072 मीट्रिक टन हो गई है। अब तक 5,33,000 मीट्रिक टन से अधिक मूंग खरीदी की जा चुकी है और भारतीय ग्रैंड मास्टर आज प्रज्ञानंद ग्रैंड शतरंज टूर जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। उन्होंने कल रात अमरीका के सेंट लुइस में खेले गए फाइनल में मौजूदा चैंपियन फैबियानो कारुआनो को 15-13 से हराकर शानदार जीत दर्ज की। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारी स्टूडियो की घड़ी में 12 बजे हैं। लीजिए प्रस्तुत है आपकी फरमाइश और आपकी फरमाइश में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं डबवाली हरियाणा से जेके भकोलिया, सुनीता भकोलिया और संजय अनिल मीना और उनका पूरा परिवार इस गाने को पसंद करता है। ये गाना है किशोर कुमार की आवाज में, जिसको लिया है हमने फिल्म त्रिशूल से। किशोर कुमार के साथ में दूसरी आवाज है लता मंगेशकर की। साहिर लुधियानवी ने इस गाने को लिखा है। खयाम का संगीत है, सुनते हैं ये गीत।

अगला गाना लिया है हमने फिल्म जीने की राह से, आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की है, आनंद बख्शी ने इस गाने को लिखा है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है। और इस गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है धामणी मनोरा से, लिखने वाले हैं तुलसीराम डेरे, मायावती डेरे, संदेश डेरे, आदेश डेरे, किरण डेरे, उज्ज्वल डेरे और अनुत डेरे ने।

हम सब चोर हैं, ये फिल्म का नाम है। आवाज़ हैं कविता कृष्णमूर्ति, माफ़ कीजिए, अलका याग्निक, कुमार सानू और उनके बहुत सारे साथी, और नवाब अर्जुन ने इस गाने को लिखा है। बपी लहरी का संगीत है और इस गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है महाराष्ट्र बीड़ शहर से प्रकाश पगारिया, पराग पगारिया, प्रदीप पगारिया, केशव पटेल, संतोष पगारिया और उनके परिवार के दूसरे सदस्य, गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभिनंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज, प्रमोद, रोहित और मोहित ने इसी गाने को पसंद किया है। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा और उनके परिवार के दूसरे सदस्यों ने, सुनते ही।

अगला गाना लिया है हमने फिल्म स्वामी से, आवाज़ है यशुदास की। अमित खन्ना ने इस गाने को लिखा है और राजेश रोशन का संगीत है। उस गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आए है जयराज प्लॉट राजकोट से, मधुसूदन भट्ट, आरती, पूजा, यास्मीन और प्रयागराज भट्ट। इसी गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश है, मेहर नगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से आशा रेड्डी श्रोता संघ के श्रोता हैं, अभिजीत गवाड़कर राही, सरिता गवाड़कर, प्रिंस एकांश गवाड़कर, सिद्धांत गवाड़कर, प्रणीता गवाड़कर, अर्जुन गवाड़कर, टुक टुक बदलापुर मुंबई से, आकार हाइट बहादुर बहादुरा से नागपुर से, वैशाली शैलेश गायकवाड़, सुमित गायकवाड़, ध्वनि गायकवाड़ परी और उनके परिवार के दूसरे सदस्य। सुनते हैं ये गीत।

अगले गाना लिया है हमने फिल्म झुक गया आसमान से, आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की है। हसरत जयपुरी ने इस गाने को लिखा है, शंकर जय किशन का संगीत है। और इस गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है बागपत उत्तर प्रदेश से, संजय ढिंगिया, नमन ढिंगिया, अपार ढिंगिया और उनके परिवार के दूसरे सदस्य इसी गाने को पसंद किया है। छबड़ा राजस्थान से लिखने वाले हैं आसिफ अली सिद्दीकी, वाहिद अली सिद्दीकी और शमीम बानो। और इसी गाने के लिए फरमाइश आई है आदर्श नगर मलोट से, राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मेंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, शाइना शर्मा और निवान शर्मा की फरमाइश है। सुनते हैं ये गीत।

आखिर में अब हम आपको सुनवा रहे हैं प्यार मोहब्बत फिल्म में कविता कृष्णमूर्ति और शब्बीर कुमार को। आनंद बख्श ने इस गाने को लिखा है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है और इस गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से। लिखने वाले हैं ओम प्रकाश राय, ऊषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय और उनके परिवार के सदस्य। दुबिया नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी राय, प्रांजल राय गाजीपुर से, अवधेश राय, प्रीति राय और नवनीत राय ने। और थाना रोड बक्सर से ज्युत गुप्ता, आशीष गुप्ता, सतीश गुप्ता, आयुषी और उनके परिवार के दूसरे सदस्य इसी गाने को पसंद किया है। बोरखेड़ा जिला उज्जैन से विनोद मूणत, नेहा जैन, दीपक महंत मूणत, चेतना नाहटा, दीक्षा कुश मूणत और उनके परिवार के दूसरे सदस्य ने। सुनते हैं ये गीत।

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। थोड़ी देर में होगा हमारा अगला कार्यक्रम।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। थोड़ी देर में होगा हमारा अगला कार्यक्रम।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 12:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत कार्यक्रम संग्रहालय से। इसके अंतर्गत आज हम आपको सुनवा रहे हैं धारावाहिक यमुनिया की 10वीं कड़ी।

0: अरे भैया वही राह तुम भी चुनो मेरे भैया, वही राह तुम भी चुनो मेरे भैया, जमुनियों की कहनी सुनो मेरे भैया, जमुनियों की करनी गुनो मेरे भैया।
1: अभी तक आपने सुना है जमुनिया और उसका पति रतन गांव में सरकार के पट्टे की जमीन पाकर बहुत खुश थे। रतन के भाई करण ने गांव के जमींदार दीवान से मिलकर उसे 10,000 रुपए का कर्ज दिलाया और दीवान ने छल कपट से उसे 25,000 का बना दिया। रतन को पता चला तो वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाया, उसने आत्महत्या कर ली। जमुनिया को उसकी दुदमुही बेटी के साथ करण ने घर से निकाल दिया और उसका बेटा गोलू हथिया लिया। पास के गांव के झुलन ने माँ बेटी को सहारा दिया। बांस के डलिए पंखे बनाकर गुजर बसर करने लगी जमुनिया। यहाँ पर गांव के गुरुजी से शिक्षा ग्रहण करती जमुनिया ने न केवल अक्षर शब्द वाक्यों की रचना सीखी, वरन अंकों का ज्ञान जोड़ना घटाना भी सीखा। जो भी खाली समय मिलता वो अध्ययन करती। गुरुजी ने संक्षिप्त में उसे भारत के अतीत और वर्तमान के बारे में भी बताया। उधर करण ने नशे की लत के कारण भाई रतन द्वारा बनाया गया खेत बर्बाद कर दिया और दीवान ने उसकी पत्नी और गोलू को बंधुआ मजदूर बना दिया। स्वाधीनता दिवस के अवसर पर दीवान ने गांव को संबोधित किया जिसमें गुरुजी, जमुनिया और झुल्लन भी शामिल हुए। दीवान ने बड़ी चालाकी से अपनी बात को मनवा लिया लेकिन जमुनिया सब समझ गई। अब आगे

0: अरे आइए आइए पटवारी जी, आइए आइए। कहिए साहब, क्या हाल है आपके?
1: बस देवान जी ठीक ही हैं। आप कहिए, कुशल मंगल तो है ना?
0: अरे आपकी कृपा है और आप लोगों का साथ रहेगा तो कुशल मंगल तो रहेगा ही। क्यों पटवारी जी?
1: अरे हम आपसे अलग कहाँ जा सकते हैं दीवान जी, आप बस हमारा ऐसे ही ख्याल रखिएगा।
0: जी बिल्कुल साहब, अरे आपका ख्याल नहीं रखेंगे तो जाएंगे कहाँ। जी बताइए, बिलायती चलेगी अभी?
1: अरे राम राम, इतनी जल्दी? थोड़ी रात तो ठहरने दो दीवान जी।
0: अरे पटवारी जी, यहाँ तो अपनी हुकूमत चलती है, अपना ही राज है भैया।
1: बिल्कुल,
0: इसलिए रात दिन की फिक्र तो हम करते नहीं हैं। बस आप कह रहे हैं तो ठीक है, रात को ही सही। लेकिन पटवारी जी, आज यहीं आराम कीजिए हमारे साथ। हाँ,
1: अरे वो तो अपना ही घर है। उसमें कोई बात नहीं।
0: तो बताइए फिर, अभी क्या लेंगे, ठंडा या गरम?
1: अभी तो दीवान जी एक गिलास ठंडी लस्सी हो जाए।
0: अरे बहुत खूब, क्या बात कहिए, ठंडी लस्सी। अरे भाई सुनो, हमारे पटवारी साहब के लिए एक गिलास ठंडी लस्सी लेकर आ भाई।
1: अच्छी ला रहा भैया।
0: अरे तबीयत मस्त हो जाएगी आपकी पटवारी जी। आप तो ये बताइए, ये सरपंची के चुनाव कब आ रहे हैं?
1: अरे यार भाई,
0: अरे तो हमारा ख्याल रखिएगा। हाँ
1: वो तो है।
0: अरे भैया हमें ही जीतना है, हम ही इस गांव का विकास करेंगे। हाँ
1: मगर सरकार, इस बार आप चुनाव नहीं लड़ सकते।
0: क्या? किसके बाप में दम है जो हमें रोकते चुनाव में खड़ा होने से और जीतने से?
1: अरे ये बात नहीं है दीवान जी।
0: फिर?
1: अरे असल में यहाँ की सीट महिला सीट घोषित हो गई है।
0: महिला सीट?
1: हाँ, तो अब आप तो चुनाव लड़ ही नहीं सकते ना। कल ही कलेक्ट्रेट गए थे हम, वही पता लगा।
0: अरे रे रे रे, ये तो बहुत ही बड़ी गड़बड़ हो गई पटवारी जी।
1: हाँ।
0: ओहो, अच्छा ये लीजिए, लस्सी पीजिए तब तक।
1: हाँ,
0: आप
1: हाँ, हाँ, हाँ।
0: लस्सी पीजिए, फिर बात करते हैं आपसे।
1: ला भाई लस्सी दे। आप बात करते रहे दीवान जी।
0: हाँ?
1: लस्सी पीते हुए भी बात हो सकती है।
0: हाँ।
1: वाह, बड़ी स्वादिष्ट लस्सी है भाई।
0: अरे पटवारी जी, ये बताइए आप, ये ससुर कलेक्टर कौन होता है सीट घोषित करने वाला कि हमारी सीट महिला सीट होगी?
1: अरे भाई दीवान जी, ये केंद्र सरकार के आदेश से होता है। हाँ, पर सूचना कलेक्टर के माध्यम से ही आती है।
0: चलो, ये ससुरी सरकार भी अब लुगाइयों से सरपंची करवाएगी। अरे क्या हो गया है लोगों को?
1: अरे पर मालिक, आप चिंता क्यों करते हैं, एक आसान सा रास्ता है।
0: आसान सा?
1: हाँ।
0: क्या रास्ता है पटवारी जी?
1: अरे अपनी मालकिन तो है।
0: हाँ,
1: जीत तो वो ही जाएंगी, जहाँ आप वहाँ जीत। अरे सरपंची तो घर में ही रहेगी ना।
0: तो चलो पटवारी जी,
1: हाँ,
0: यानी मालकिन के लिए वोट मांगे चलकर।
1: आओ।
0: तो चलो तैयारियां करो। अरे अपने आदमियों को भी तो काम पर लगाना है।
1: आओ।
0: यही ठीक रहेगा ना?
1: ठीक रहेगा।
0: ए गोलू, ये ले गिलास उठा।
1: अरे ये तो रतन का बेटा है ना दीवान जी?
0: हाँ पटवारी जी, खूब पहचाना आपने।
1: हाँ वही थे मैं कहूं।
0: अरे पटवारी जी, इसे करण ने हत्या लिया था और उससे हमने हत्या लिया।

0: स्वाधीनता दिवस पर दीवान की बातों से ये तो साफ हो गया कि सरकार ने हमारे गांव के लिए पैसा दिया है, उसको खर्च करने का अधिकार गांव को है, पर गांव है कहाँ? दीवान तो खुद ही गांव बना बैठा है।
1: यही तो जमुनिया, ये सरपंच नहीं परपंच है।
0: परपंच? आप भी गुरुजी। परपंच। अच्छा गुरुजी, हम आज क्या पढ़ेंगे?
1: आज हम कुछ प्रश्न पूछते हैं तुमसे। हैं
0: गुरुजी, तैयारी तो की नहीं, फिर भी पूछिए, कोशिश करूंगी।
1: अच्छा अच्छा, हाँ तो बताओ जमुनिया, के भारत को तकनीक विज्ञान के रास्ते विकास पर लाने का सपना किसका था, यानी किस प्रधानमंत्री का था?
0: राजीव गांधी जी का।
1: शाबाश शाबाश, अरे भाई बहुत अच्छी समझ है तुम्हारी। अरे मेघा बिटिया, अरे तुम यहाँ कहाँ से आ गई हैं?
2: प्रणाम गुरुजी।
1: अरे प्रणाम प्रणाम।
2: आज ही आए हैं।
1: अच्छा अच्छा,
2: और ये हमारे साथी हैं कॉलेज के।
1: अच्छा,
2: ये शिल्पी है। हाँ। प्रणाम गुरुजी।
1: प्रणाम प्रणाम।
2: और ये है जयंत।
3: प्रणाम गुरुजी।
1: प्रणाम प्रणाम भाई।
2: इन्हें भी मैं साथ ले आई।
1: अच्छा अच्छा अच्छा बेटा, ठीक है, जीते रहो, खुश रहो खुश रहो खुश रहो। अच्छा किया जो तुम लोग गांव आए, इन्हें भी देखना और जानना चाहिए। अरे भाई श्रीमती जी, श्रीमती जी, अरे शहर से कुछ मेहमान आए हैं, अरे कुछ चाय पान का इंतजाम करो भाई।
4: करते हैं करते हैं, जरा मेघा बिटिया को देखने तो दो, बड़ा चश्माशमा लगा कर आइए।
2: हाँ चाची, तुम तो मजाक मत उड़ाओ ना।
4: अरे मैं तो बस ऐसे ही, इन्हें यहाँ कहाँ ले आई नरक की सैर कराने?
5: हमें गांव अच्छा लगता है।
4: दो दिन में उल्टे पांव भाग जाओगी बोरिया बिस्तर समेट कर।
2: गुरुजी, ये कौन है?
1: बताओ भाई जमुनिया, तुम खुद ही बताओ।
0: मैं जमुनिया हूँ मेघा दीदी, गुरुजी से पढ़ती हूँ।
2: अच्छा
1: भाई, गजब की लगन और प्रतिभा है इस लड़की में मेघा। अब तुम खुद अपने आप को देख लो, हैं? अपने ही गांव सेवक से लड़कर तुम्हें भेजा था कंप्यूटर पढ़ने के लिए, हैं? सब हंसते थे तुम पर, और अब देखो इतना स्मार्ट हो गई हो कि सारी दुनिया की नब्स पर हाथ रखे हो।
5: अच्छा, बड़ा इंप्रेशन जमा रखा है तुमने।
1: अच्छा भाई, तो अब आप लोगों ने क्या सोचा है अपने भविष्य के बारे में?
5: हम तीनों यही सोचकर आए हैं गुरुजी, एनजीओ खोलेंगे, गांव के लोगों को जागरूक बनाएंगे।
1: अच्छा।
5: उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास करेंगे।
1: मतलब समाज सेवा, तब तो तुम्हारी सबसे अधिक जरूरत तो गांव देहात में ही है, पर इतना पढ़ लिख कर यहां कैसे आओगे तुम लोग?
2: मैं और शिल्पी तो गांव में रहकर ही काम करना चाहते हैं, पर ये जयंत है ना, शहर की रट लगाए रहते हैं।
3: अरे शहर ना हो, पर कम से कम ब्लॉक या तहसील प्लेस तो हो, जहां रहने खाने पीने और आने जाने की सुविधा तो हो। अरे जिंदगी में दो पैसे भी तो कमाना है, सिर्फ कुरी समाज सेवा से तो काम नहीं चलेगा ना।
1: अरे मेघा बिटिया
2: जी,
1: इन्हें कुछ दिन गांव घुमाओ
2: जी,
1: हो सकता है यहाँ की समस्याएं और चुनौतियां इन्हें यही रोक ले।
4: लो भाई, सब लोग चाय पियो और गांव की समस्याओं और चुनौतियों से लड़ने की तैयारी करो। लो चाय, लो चाय।
2: हाँ।
6: हमने कुछ सुना है, क्या तुमने भी सुना है?
7: ऐसा क्या सुन लिया भाई, बड़ी खुसर फुसर हो रही है।
8: अरे यार साफ साफ बोलो ना यार, क्या सुना है बताओ।
6: भैया वो आपके सरपंच जी के चुनाव में दीवान चुनाव नहीं लड़ पाएंगे।
3: क्यों क्यों भाई, क्या हो गया? कोई मामला मुकदमा हो गया क्या?
6: अरे नहीं भैया, वो सीट महिला सीट हो गई है, महिला सीट।
3: अच्छा,
6: तो अब की बार उनकी मालकिन चुनाव लड़ेंगी।
8: अरे लगता है वो जीत भी जाएगी क्या भैया?
3: पर दूसरा क्यों नहीं जीत सकता?
8: दीवान ने सबको फंसा के रखा है कि नहीं? अरे सबको पटा के रखा है यहाँ से माता।
6: भैया इसीलिए तो सब उससे छुटकारा चाहते हैं, भीतर ही भीतर।
3: पर और कौन लड़ेगा मालकिन के सामने?
6: अरे क्यों, अपनी जमुनिया तो है। हाँ हाँ, उसे सब मिलकर खड़ा करो।
8: अरे हाँ हाँ, हाँ। ये बेसरई के काम आती है।
6: हाँ हाँ, और का।
8: पर अब तो पढ़ लिख भी गई है।
6: हाँ भैया सही बात है, पढ़ लिख गई, अपना तो विचार यही है।
8: अखबार पढ़ने लगी है भाई।
6: हाँ भैया,
8: और वैसे भी एक बात तो है, समझदार तो है।
6: हाँ बिल्कुल,
3: बात तो एकदम ठीक है। चलो जमुनिया से बात करते हैं।
6: हाँ चलो चलो, जमुनिया से बात करते। चलो
9: तुम लोग यहाँ का खोसर फोसर कर रहे हो?
10: कुछ नहीं मालिक, कुछ नहीं। सुना है अब की बार मालकिन सरपंची का चुनाव लड़ने वाली है।
9: अच्छा, बड़ी जल्दी बात गांव में फैल जाती है। ठीक सुना है तुम लोगों ने। और सुना, तुम लोग ही उन्हें वोट दोगे? दोगे ना?
10: जी जी मालिक, जी मालिक। और कौन है जिसे हम वोट देंगे?
9: अरे कोई हो तो भी, वोट मालकिन को ही पढ़ना चाहिए, समझ गए?
10: अच्छा मालिक।
9: अच्छा चले थे भाई।
6: ये लो, शैतान का नाम लो और शैतान हाजिर।
3: सच्ची भाई, इसके कान कितने तेज है।
8: अरे यार, उसके सामने तो सभी की खिड़की बंद गई थी। सबने बोला वोट मालकिन को ही देंगे।
6: अरे भैया, बोलने से क्या होता है, है? ठप्पा लगाना होगा तब ना देखेंगे किसका होता है।
11: अरे इसीलिए मतदान गुप्त होता है।

0: वाह मजा आ गया आप लोगों का गीत संगीत सुनकर। शहर से भी लोग आ गए हैं। सच्ची मजा आ गया, एकदम मजा आ गया।
1: अरे ये कौन है? ग्राम सेवक की बिटिया है का?
2: अरे ये तो बच्चा है। अरे बिटिया नहीं, माफ करना बेटा, उजाला काम है सो बराबर देखो नहीं, हम समझे कि मेघा बिटिया है। हाँ
3: अरे कोई बात नहीं बाबा। बाबा पर आप लोग सचमुच बहुत अच्छा गाते हैं। बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर।
0: बहुत अच्छा। मैं इधर हूँ झुल्लन काका, मेघा। ये मेरे दोस्त है जयंत। अच्छा। शहर से आए हैं घूमने फिरने। और ये है शिल्पी।
2: अच्छा बेटा।
0: ये भी शहर से आई है।
2: वाह।
0: हम सब लोग साथ ही पढ़ते थे।
4: माने हमारे मेहमान ही है ना भाई।
2: हाँ
4: तो आ बैठो बैठो सब लोग बैठो,
2: बैठो।
4: और आज भाई तुम लोग भी सुनो हमारे सुख दुख। हैं क्या नाम से?
0: ठीक है दीनू चाचा, आप लोग गाओ।
4: हाँ यार हाँ, चलो भैया शुरू हो जाओ।
2: हाँ। गाओ भैया गाओ, चलो शुरू तो हो जाओ। हाँ।

0: आप मुकुंदी है ना? मेघा ने बताया था साधन के अभाव में आप अस्पताल नहीं ले जा पाए थे अपनी पत्नी को।
1: वो कहानी छोड़ो बिटिया, याद आता है तो कलेजा फट जाता है। अभी तो हाल ये है कि शाम को 7 बजे ही अंधेरा हो जाता है, हाथ को हाथ भी नहीं सूझता, इतना अंधेरा होता है।
0: क्यों, बिजली नहीं आती क्या?
2: नहीं, शर्म आती है बेचारी बिजली को। और वैसे भी यहाँ तक आते आते थक भी जाती होगी।
0: नहीं, वो बिजली के खंबे लगे देखे तो समझे कि बिजली होगी।
3: अरे खंबा की मत पूछो भैया, बरसों से ऐसी लगे देख रहे हैं। अरे यार पानी मानी तू लेके आया यार?
2: हाँ भैया, हाँ
3: पानी मानी की पूछो।
2: हाँ सही बात।
0: अरे नहीं, अभी प्यास नहीं है।
2: हाँ।
0: लगेगी तो मांग के पी लेंगे।
2: अच्छा किया साहब, प्यास नहीं है, वरना वही है पंप का पीला पानी पीना पड़ता।
4: और आप अकेले अकेले क्या खा रहे हैं?
5: वही अपनी सदाबहार पकवान है साहब, प्याज के साथ नमक रोटी। सवेरे से खेत में जुटे थे सो भूख लगाई थी।
1: आप लोगों के खाने का प्रबंध करें क्या?
6: अरे नहीं, खाना ये लोग मेरे घर खाएंगे।
1: ठीक है।
6: हाँ, गाना जरूर सुनेंगे, इसलिए आए हैं। और हाँ, इतने लोग बैठे हैं यहाँ, कम से कम एक लालटेन का इंतजाम तो कर लो।
7: अरे बेटा ये क्या कह रही हो, हैं? यहाँ लालटेन में डालने का तेल कहाँ मिलेगा?
1: अरे हाँ, राशन की दुकान का तो हाल ही मत पूछो, गेहूं चावल तेल खाद सब कुछ आता है, पर पता ही नहीं चलता कि किसके पेट में चला जाता है।
7: हाँ?
8: अरे कलेक्टर बीडीओ तहसीलदार कोई तो आते होंगे गांव में कभी।
3: अरे भैया गांव तलक कि उसके आसपास तलक भी, सड़क होती तभी तो आते ना बेचारे।
7: अरे हाँ बेटा, सड़क है नहीं, स्कूल है नहीं, अरे बच्चे पढ़ेंगे तो पढ़े कैसे हैं?
0: अरे आपके सरपंच विधायक कुछ करते नहीं, यहाँ आते भी नहीं क्या?
9: आते हैं, चुनाव के समय आते हैं।
7: हाँ।
9: उस समय सब कुछ मिलता है राशन की दुकान पर, बाद में वही डाक के 3 पात। चुनाव आने वाला है, अब देखना असली खेल। यहाँ मुफ्त दारू तक मिलती है, कम्बल मिलता है, धोती मिलती है, बाद में सब गाया।
6: अब बोलो जयंत।
8: लगता है यहीं से शुरू करना पड़ेगा।

0: आज तो होली है ना, आज भी होलिया पंखे बनाओगी?
1: जमुनिया काम नहीं करेगी तो चिड़ैया को खिलाएगी क्या? खाना तो होली को भी पड़ता है ना,
0: है ना?
1: काम नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या?
0: पर एक दिन तो आराम कर लो ना माई, जब मुझे बुखार आया था तब तो दिन भर मेरे पास बैठी रही, कोई काम नहीं किया।
1: उसी की भरपाई तो करनी पड़ेगी ना, ज्यादा काम करके। वैसे भी ये त्योहार गरीबों के लिए नहीं होते। सुना है अब इस गांव में सरपंची औरतें करेंगी, मैं लड़ूंगी चुनाव।
0: का सरपंची? इस सरपंची का होता है माई?
1: तब सरकार जो पैसा गांव को देगी वो सारे काम हमारी मर्जी से होंगे, अपनी मर्जी से गांव की तरक्की कर पाएंगे।
0: अरे वाह, तब तो तू पूरी तरह सही है माई इस काम के लिए। हाँ
1: पर मुझे डर लगता है।
0: क्यों माई, काहे का डर?
1: मैं अकेली क्या कर पाऊंगी?
0: सब कुछ माई, तुम सब कुछ कर सकती हो।
1: सच?
0: माई तब तो हम गोलू भैया को भी ला सकते हैं ना।
1: चिड़ैया ये क्या कह रही है रे, जिस भाई को तूने देखा नहीं उसकी तुझे इतनी फिक्र है?
0: माई गोलू भैया को ले आना।
2: अरे जमुनिया जरा बाहर निकल कर तो देख बिटिया, हैं? लोग अपनी ड्यूटी पर आए रंग अबीर लेकर। अरे मेघा, मेघा से तो तुम मिल ही चुकी हो ना, ये इनके दोस्त हैं। और
1: प्रणाम। इन सबसे मिली हूँ बाबा।
2: हाँ।
1: गुरुजी के घर। ये जयंत जी है और ये शिल्पी, ठीक कह रही हूँ ना?
3: बिल्कुल ठीक कह रही है जमुनिया जी।
2: हम सब बहुत सोच समझ कर तुम्हारे पास आए हैं बिटिया, मना मत करना, सरपंची का पर्चा भर ही देना। पूरा गांव अंदर ही अंदर तुझे सरपंच बनाना चाहता है बिटिया।
1: कहां हम बाबा और कहां सरपंची, ना हमारे बस की बात नहीं। हमें डर लगता है कुछ कुछ नहीं कर पाए तो। हमारा तो ठीक है पर आप सबकी हंसी उड़ाएंगे लोग।
0: का माई, अभी तो खुद ही कह रही थी, अब मौका आया तो पीछे का हट रही हो?
1: हट यहां से, वो तो सपना था, सपना तो सभी देखते हैं ना।
4: डरो मत जमुनिया, हम सब तुम्हारे साथ हैं।
5: बिल्कुल
6: बिल्कुल साथ, और हम सब भी आपके साथ हैं। हम सब मिलकर इस गांव के हित में काम करेंगे।
5: बिल्कुल।
1: जब आप सब लोग साथ हैं तो जैसी आप लोगन की मर्जी।
4: जे हुई ना बात।
6: हमें पूरा विश्वास है कि इस गांव की तस्वीर आपके हाथों से सुधरेगी। बोलो सब लोग।

0: मैं अपना हक लेकर रहूंगी, लेकर रहूंगी, लेकर
1: रहूंगी। अरे ही जमुनिया आखिरकार हमारे खिलाफ खड़ी हो गई। अरे उसकी इतनी हिम्मत,
2: आप कहें तो उसे काट कर फेंकाए, पता भी नहीं चलेगा।
1: हाँ।
3: चुनाव का समय है मालिक, फूंक फूंक कर कदम रखना पड़ेगा। इस तरह ताव में आकर कुछ कर देंगे तो दाव उल्टा भी पड़ सकता है।
1: नाक नहीं कटनी चाहिए, समझ गए तुम लोग? नहीं तो पूरे गांव में आग लगा देंगे हम। अरे सब फसम हो जाएगा, बताए दे रहे हैं तुम लोगों को। हाँ
3: अरे मालिक, आप नाक चिंता ना करो, आधे वोट तो दारू भंग से खींच लाएंगे, बाकी आधे लाठी के जोर से। इस जमुनिया को वोट देगा कौन?
1: बिल्कुल
3: रहे लोग, कमल जट्टा पाली पर आ जाएंगे। आप तो बस अब सबसे मीठा मीठा बोलते रहिए, गुस्सा करने की जरूरत नहीं है।
1: ये ज्यादा समझाओ मत हमें। हाँ अरे अपने काम से काम रखो, समझ गए?

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत जमुनिया धारावाहिक की 10वीं कड़ी। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 12:58 होने को हैं।

0: लीजिए प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 1 सितंबर तक उज्बेकिस्तान और किर्गिज गणराज्य की यात्रा पर रहेंगे। यहां व्यापार, निवेश, रक्षा, ऊर्जा, डिजिटल कनेक्टिविटी और शिक्षा समेत कई मुद्दों पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री किर्गिज गणराज्य की राजधानी बिश्केक में 26वें शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। आज विश्व संस्कृत दिवस है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस अवसर पर कहा कि वेद, उपनिषद, दर्शन और साहित्य की समृद्ध विरासत को संजोए यह शाश्वत भाषा हमारी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ती है। हम सभी संस्कृत के संरक्षण, संवर्धन और प्रसार का संकल्प लें। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कल बालाघाट में मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री जिला स्तरीय समाधान ऑनलाइन में चिन्हित शिकायतकर्ताओं से सीधे उनकी समस्याएं सुनेंगे। साथ ही बैठक और समीक्षा के अलावा मीडिया संवाद और उद्योग संवाद भी होगा। नेपाल तिब्बत में आई विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 392 हो गई है और लगभग 1468 व्यक्ति लापता हैं। इनमें करीब 300 भारतीय नागरिक शामिल हैं। भारतीय दल राहत और बचाव अभियान में सक्रियता से जुटे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल को भारत की ओर से सहायता का आश्वासन दिया है। श्री अमरनाथ यात्रा आज रक्षाबंधन के त्यौहार के साथ संपन्न होगी। 57 दिन तक चलने वाली यह यात्रा के दौरान इस वर्ष पहलगाम और बालटाल दोनों रास्तों से 4,80,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने यात्रा की और भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंद ग्रैंड शतरंज टूर जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। उन्होंने कल रात अमेरिका के सेंट लुइस में खेले गए फाइनल में मौजूदा चैंपियन फैबियानो कारुआना को 15-13 से हराकर शानदार जीत दर्ज की। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारी स्टूडियो की घड़ी में 1 बज चुके हैं और ये समय होता है महिला कार्यक्रम का। आज का महिला कार्यक्रम आकाशवाणी छतरपुर की प्रस्तुति है।

प्यार का धागा, स्नेह का बंधन, खुशियों से महके हर बहन का आंगन। रक्षाबंधन के इस पावन पर्व पर महिला सभा करता है आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। भाई बहन के इस पावन पर्व की शुभ वेला पर आप सभी सुनने वालों को, हमारे प्यारे श्रोताओं को रक्षाबंधन पर्व की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम महिला सभा और आज महिला सभा के साथ मैं हूं आपकी रेडियो साथी गुड़िया तिवारी। तो आप सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार, आपका हृदय से स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। आज महिला सभा के इस विशेष अंक में आप सुनेंगे रक्षाबंधन विशेष कार्यक्रम रिश्तों की डोर रक्षाबंधन। आज का दिन बेहद खास है, आज की बात बहुत खास है क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं उस रिश्ते की जिसमें बचपन की शरारतें भी हैं, रूठना मनाना भी है और सबसे बढ़कर एक दूसरे के लिए बिना कहे हर हाल में खड़े रहने का भरोसा भी है। जी हाँ बहनों, आज हम बात कर रहे हैं भाई

यादें, अपने बचपन की हंसी और भाई के सुखी जीवन, सफल जीवन की कामनाएं भी बांधती है। और जब भाई बहन को उपहार देता है तो वो केवल कोई वस्तु नहीं देता, साथ में मन ही मन में ये भरोसा भी देता है कि तुम्हारे जीवन में चाहे जैसी भी परिस्थितियां आए, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा हर हाल में, हर स्थिति में। रक्षाबंधन पर्व श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है, जिसे आज हम सभी मना रहे हैं। इस दिन बहनें भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं, उसके माथे पर तिलक लगाती हैं, आरती उतारती हैं और उसके सुखी स्वस्थ जीवन की कामना करती हैं। कलाई पर बंधा धागा यादों का संसार है, भाई की मुस्कान में बहन और बहन में भाई का प्यार है।

रक्षाबंधन का पर्व हम सभी मनाते हैं, लेकिन सवाल आज जो बच्चे हैं उनके मन में ये आता क्या रक्षाबंधन इसी रूप में शुरुआत से ही मनाया जा रहा? तो ऐसा नहीं है, इससे जुड़ी अनेक कहानियां भी हैं। पहली कथा इंद्र और देवी सची से जुड़ी है। जिस समय देवताओं और असुरों के बीच युद्ध चल रहा था, तो इंद्राणी ने कठिन तपस्या कर मंत्रों के साथ रक्षा सूत्र इंद्र की कलाई पर बांधा और इससे इंद्र ने असुरों पर विजय प्राप्त की। तभी से संकट के समय रक्षा सूत्र बांधने की परंपरा शुरू हुई। रक्षाबंधन से जुड़ी महाभारत काल की कथा भी काफी प्रसिद्ध है। जब भगवान श्री कृष्ण की उंगली पर चोट लगी और खून बहने लगा, तो द्रौपदी ने बिना समय गवाए अपनी साड़ी का आंचल फाड़कर भगवान कृष्ण की उंगली पर बांध दिया और भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें जीवन भर रक्षा करने का वचन दिया। एक कथा लक्ष्मी जी और राजा बलि से भी जुड़ी है। भगवान विष्णु जी को वापस लाने राजा बलि को लक्ष्मी जी ने भी राखी बांधी थी। ये तो हुई पौराणिक कथाओं की बात। इसके अलावा बात करें इतिहास की, तो चित्तौड़ की रानी कर्मावती से भी एक कहानी जुड़ी है। जब बहादुर शाह ने उनके राज्य पर आक्रमण किया, तो कर्मावती ने अपने राज्य की रक्षा के लिए मुगल सम्राट हुमायूं को राखी भेजी। यद्यपि वे दूसरे धर्म को मानते थे, लेकिन उन्होंने भी राखी के पवित्र धागे का सम्मान रखते हुए अपनी सेना के साथ वे रानी कर्मावती की रक्षा के लिए निकल पड़े। सावन की पूर्णिमा आते ही जैसे बचपन की यादें लौट आती हैं। कभी भाई की कलाई पर राखी बांधने की जल्दी, तो कभी मनपसंद उपहार पाने की फरमाइश। लेकिन यही बचपन की लड़ाइयाँ, यही बचपन

उनका प्यार जब बड़े होकर भाई बहन दूर हो जाते हैं तो बड़ी प्यारी यादें बन जाती हैं। आज यदि हम रक्षाबंधन पर्व मनाने के उद्देश्य को समझें तो इसके पीछे अनेक सुंदर संदेश छुपे हैं। भाई बहन एक दूसरे के प्रति अपने प्रेम स्नेह को व्यक्त करते हैं। राखी याद दिलाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी दूरी आ जाए, भाई बहन का रिश्ता हृदय से जुड़ा है, मन से जुड़ा है, विश्वास से जुड़ा है, जो जुड़ा ही रहेगा। तीसरा है सुरक्षा। सुरक्षा का अर्थ भावनात्मक सहारा देना, कठिन समय में साथ खड़े होना, साथ ही परिवार के साथ जुड़ाव। ये पर्व परिवार के सदस्यों को एक साथ आने का अवसर भी देता है और सबसे महत्वपूर्ण है एक दूसरे के अधिकार, सम्मान की रक्षा, प्यार और विश्वास की डोर को बांधे रखता है रक्षाबंधन। भाई बहन की सफलता पर गर्व करता है, उसके सपनों का सम्मान भी करता है, सपोर्ट भी करता है, क्योंकि उसे भी पता है कि उसकी बहन कितनी सयानी है।

राखी की डोरी यदि भाई की कलाई के साथ सामाजिक सरोकार से भी जुड़ जाए तो त्योहार का अर्थ और भी बड़ा हो जाता है। एक दूसरे से इस रक्षाबंधन पर कहिए, आपकी खुशियों में ही मेरी खुशी है। साथ ही दोनों मिलकर माता पिता के साथ समय बिताने का संकल्प लें, किसी इंसान की मिलकर मदद करें जैसे सच में जरूरत हो। बहनें इस रक्षाबंधन पर्व पर जब कलाई पर राखी बांधें तो सिर्फ रेशम का धागा नहीं उसमें बांधें बचपन की सारी यादें, अपना स्नेह, उत्साह और दुआएं। और भाई, उपहार में सिर्फ वस्तुएं ना दें, उन्हें सम्मान दें, भरोसा दें, उनके सपनों को पूरा करने का हौसला दें, क्योंकि राखी का धागा छोटा जरूर है लेकिन इसमें रिश्तों की मजबूती और हौसलों की उड़ान भरने की क्षमता है। और बहनों, हम देखते हैं जब समय बदलता है तो हमारे तौर तरीके भी बदल जाते हैं त्योहार मनाने के, लेकिन रिश्तों की खूबसूरती और एहसास वो ही रहने चाहिए। दूरी भी हो तो प्यार कम ना हो। आज यदि बहन भाई के पास नहीं है तो राखी डाक से भेजी जाती है, कुरियर से भेजी जाती है, ऑनलाइन उपहार भी भाई पहुंचा देता है, वीडियो कॉल पर भी तिलक हो जाता है। बहन मोबाइल की स्क्रीन पर भाई की कलाई को देखकर राखी बांध देती है, एहसास दिलाती है उसके पास होने का, और भाई भी मुस्कुराकर कहता है, हाँ बांधो राखी, मैं तैयार हूँ। तकनीक से मिलने की दूरी भले ही कम ना हो लेकिन भावनाओं की डोर जरूर आप तक पहुँचती है। कहते हैं मीलों की दूरी रिश्तों को दूर नहीं करती अगर दिलों में अपनापन बाकी हो। यदि हम रक्षाबंधन पर्व पर बात करें भाई के पहलू की तो एक बात जरूर याद रखनी चाहिए, भाई होना एक जिम्मेदारी भी है। राखी बंधवाने के साथ साथ बहन की बात सुनना है, उसके सपनों को समझना है, उसकी पसंद, उसके फैसलों का सम्मान करना है, उसकी सफलता पर गर्व करना है और मुश्किल समय में उसका हौसला बढ़ाना है। क्योंकि आज बहन केवल ये नहीं चाहती कि भाई उसको रक्षा का वचन दे, आज बहन की भावनाएं होती हैं कि भाई उसके साथ तब खड़ा हो जब वो पढ़ना चाहती है, जब वो जॉब करना चाहती है, जब वो व्यवसाय शुरू करना चाहती है और जब वो कोई नया सपना देखती है, उस सपने को साकार करना चाहती है, तो ऐसे में माता पिता के साथ उसका भाई भी उसके साथ खड़ा हो। कभी माँ की तरह चिंता करके, कभी दोस्त की तरह सलाह देकर, कभी उसकी गलतियों पर डांटकर, और कभी बिना कुछ कहे सिर्फ उसके पास बैठकर, और कभी बिना कुछ कहे सिर्फ उसके पास बैठकर साथ होने का एहसास दे। और भाई की जिंदगी में भी बहन वो इंसान होती है जिससे वो बहुत कुछ कह सकता है, कई बार कुछ बिना कहे भी बहुत कुछ समझा जा सकता है। इसलिए रक्षाबंधन पर्व पर यही संदेश है, रिश्ता एक तरफा जिम्मेदारी नहीं, ये दो रिश्तों की सांझी जिम्मेदारी है।

और ये रक्षाबंधन पर्व जैसे हम बात कर रहे हैं, एहसास दिलाने वाला पर्व है। तो यदि किसी के पास उसकी बहन नहीं है या भाई पास नहीं है, तो उठाइए फोन और बताइए उन्हें अपने मन की बात कि इस पर्व पर आपको उनकी याद आती है। साथ ही हम याद करें अपने उन सरहदों पर हमारे देश की रक्षा करने वाले भाइयों को भी, जो भले ही बहन तक ना पहुंच पाए लेकिन हम सबके लिए, वो देश की रक्षा के लिए एक रिश्ता निभा रहे हैं हर हाल में वहां रहकर। कच्चे धागों से बंधी एक डोर अनमोल है, भाई बहन के रिश्ते का जग में न कोई मोल है। किसी भी रिश्ते की मजबूती के लिए जरूरी है समय। तो यदि आज बहनें आपके पास आई हैं, तो हम भाइयों से कहना चाहते हैं, यदि बहनें उनके पास आई हैं, तो वो कुछ पल उनके पास बैठें, उनका हाल जानें, उनको समय दें। और यदि आपसे कोई रूठा हुआ है, तो इस रक्षाबंधन पर्व पर उसे मना लीजिए अपनी भावनाओं का एहसास कराकर, क्योंकि रिश्ते अनमोल हैं। बहनों, भाई की कलाई पर सजी रंग बिरंगी राखियां और मिठाइयों की महक उनके स्नेह और प्रेम का संदेश तो देती ही हैं, लेकिन आपने कभी सोचा है कि राखी की ये छोटी सी डोर कई बहनों के लिए आत्मनिर्भरता की डोर भी बन सकती है। आज हम राखी के इस पहलू पर भी बात करेंगे। आज राखी केवल बाजार से खरीदने की चीज नहीं रह गई। कई महिलाएं और महिलाओं के जो स्व सहायता समूह हैं, अपने हाथों से सुंदर राखियां तैयार करती हैं। रंग बिरंगे धागे, मोती, कपड़े, ऊन और प्राकृतिक सामग्री से बनी राखियां न केवल सुंदर लगती हैं, बल्कि इनके साथ महिलाओं की मेहनत और उनका हुनर भी आगे बढ़ता है। जरा सोचिए, यदि हम इस रक्षाबंधन पर इन स्थानीय महिला स्व सहायता समूह की महिलाओं से घर की बनी राखियां खरीदेंगे, तो ये छोटी सी खरीदारी उनके लिए आत्मविश्वास बढ़ाने और उनकी आमदनी बढ़ाने का माध्यम भी हो सकती है। और महिलाओं की आत्मनिर्भरता केवल राखी बनाने तक नहीं, त्योहारों के अवसरों पर पूजा थाली, सजावटी सामान, उपहार पैकेजिंग, घर की बनी मिठाइयां, नमकीन और हस्तशिल्प जैसी छोटी चीजें भी व्यवसाय के रूप में अपनाई जा सकती हैं, शुरू की जा सकती हैं। और आज डिजिटल माध्यम ने इसे और भी आसान कर दिया है। आप इन राखियों को या बनाए हुए सामान को सोशल मीडिया पर डालकर ऑर्डर ले सकते हैं, डिजिटल भुगतान भी ले सकते हैं। और जो भाई अपनी बहन को उपहार देना चाहते हैं, वे केवल उपहार ही क्यों दें, उनके आत्मनिर्भर बनने में, उनके सपनों को साकार करने में पूरा सहयोग दें, उनके हुनर को आगे बढ़ाने का हौसला दें, साथ ही उनकी मदद भी करें, ताकि बहन भी अपने भीतर ये विश्वास जगा पाए कि वो किसी की बेटी, बहन, पत्नी के अलावा स्वयं में भी कुछ है, मेरी भी अपनी पहचान है। यही आत्मनिर्भरता है, अपने हुनर को पहचानना, मेहनत पर भरोसा करना और आगे बढ़ने का साहस रखना। तो आइए इस रक्षाबंधन रिश्तों की डोर के साथ आत्मनिर्भरता की डोर को भी हम मजबूत करें। किसी महिला के हाथ से बनी राखी खरीदकर उसे प्रोत्साहन दें। राखी की डोर हो प्यार और सम्मान की, हर बहन बने पहचान अपने हुनर और मेहनत की। रूठना भी, मनाना भी, बचपन का अफसाना भी, दूर रहे चाहे दोनों, दिलों में पास आना भी, राखी केवल धागा नहीं, ये विश्वास की पहचान है। भाई बहन के पावन रिश्ते का ये प्रेम भरा सम्मान, ये प्रेम भरा सम्मान है। आज का रक्षाबंधन का ये पर्व आप पूरे उमंग और उत्साह के साथ मनाइए। रिश्तों का सेलिब्रेशन है ये, रिश्तों को मजबूत कीजिए। तीज त्योहार रिश्तों को नजदीक लाते हैं, उनको मजबूत करते हैं। हमारे त्योहारों का संदेश भी यही है कि हम रिश्तों को करीब लाएं, अपनी भावनाओं को उन तक पहुँचाएं। लेकिन त्योहार सिर्फ एक माध्यम है, जो मूल भावना है वो हमारे मन में होनी चाहिए, हमारे विचारों में होनी चाहिए। क्योंकि त्योहार आते जाते रहेंगे, मगर रिश्तों की मिठास बनी रहे, कलाई पर राखी हर साल बंधे और दिलों में प्यार हमेशा बना रहे। इस रक्षाबंधन पर्व पर विशेष कार्यक्रम के अंत में हमारा यही कहना है, प्यार का बंधन, विश्वास का बंधन, एक दूसरे से जुड़ी जीवन भर की आस का बंधन,

आज आपने महिला सभा में सुना रक्षाबंधन पर विशेष कार्यक्रम रिश्तों की डोर रक्षाबंधन। तो आप पूरे उमंग उत्साह के साथ कार्यक्रम मनाते रहिए, फिर मिलेंगे नए अंक के साथ। चलते चलते बस यही कहना चाहते हैं, लाए खुशियों की बहार ये राखी का पावन त्योहार, चलो मिलकर मनाएं आज खुशियों का ये संसार, खुशियों का ये संसार। अनुमति दें गुड़िया तिवारी को, नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे महिला कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी छतरपुर की प्रस्तुति थी। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। थोड़ी देर में होगा हमारा अगला कार्यक्रम।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
3: सुनिए एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
5: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
6: हर शनिवार शाम 7:45 से आकाशवाणी भोपाल पर सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 1:30 होने को हैं। लीजिए प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम। लोक संगीत के कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं प्रमिला सागर और आजाद सिंह यादव के गाए लोकगीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी छतरपुर की प्रस्तुति है।

अभी आप सुन रहे थे लोक संगीत के कार्यक्रम में प्रमिला सागर और आजा सिंह यादव के गाए लोकगीत। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण, और लीजिए आप सुनिए सुगम संगीत के कार्यक्रम में अजुद्दी दास कबीर पंथी के गाए और साथियों के गाए नौबिदत्ता निगम के गाए सुगम संगीत के कार्यक्रम में राखी गीत लीजिए प्रस्तुत हैं। ये कार्यक्रम भी आकाशवाणी छतरपुर की प्रस्तुति है।

0: अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत के कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी छतरपुर की प्रस्तुति थे। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से कार्यक्रम। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 1:57 हुए। थोड़ी देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: नमस्कार, मैं राजीव वर्मा स्वच्छता ही सेवा अभियान से जुड़ा हुआ हूं और आप सभी से गुजारिश करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप भी इससे जुड़ें और अपने कार्यालय, घर, कॉलोनी, मोहल्लों को स्वच्छ रखें। धन्यवाद। जय हिंद।
0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 2 बज रहे हैं और लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में सबसे पहले ये गीत।

ये गाना था फिल्म याराना का, आवाज़ थी किशोर कुमार की, अनजान ने लिखा था और राजेश रोशन का संगीत था। अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, फिल्म का नाम है यकीन। हसरत जयपुरी ने इस गाने को लिखा है, शंकर जयकिशन का संगीत है।

0: इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रसारण 2:10 होने को हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं राणा शाहिद। नेपाल तिब्बत सीमा पर आई विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 469 हो गई है, जबकि सीमा के दोनों ओर 1545 लोग अभी भी लापता हैं। बचाव दल नदी के किनारों और अलग अलग बस्तियों में जीवित बचे लोगों की तलाश कर रहे हैं और बाढ़ के बहाव में बह गए शवों को निकाल रहे हैं। हालांकि भोटेकोशी नदी के उद्यम स्थल के पास बनी एक नई बांध झील को लेकर चिंता बनी हुई है। अधिकारियों को आशंका है कि बांध टूटने से पानी का एक और तेज बहाव आ सकता है, इससे आपदा और भी गंभीर हो सकती है और बचाव कार्यों में बाधा आ सकती है। नेपाली सुरक्षा कर्मियों ने प्रभावित जिलों से 800 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। भारत ने एक बड़ा बचाव और राहत अभियान शुरू किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शिशास से बात की और उन्हें भारत की पूर्ण मानवीय सहायता का आश्वासन दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में जन धन योजना के अभूतपूर्व परिवर्तनकारी

0: परिणामों का प्रभाव बेमिसाल है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि जनधन योजना वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और देश के लोगों को सक्षम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत अब तक 59 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रक्षाबंधन के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि यह पर्व स्नेह, सम्मान, विश्वास और आपसी सहयोग की भावना को मजबूत करता है। उन्होंने समाज और राष्ट्र की रक्षा तथा विकसित भारत के निर्माण का संकल्प लेने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कामना की कि रक्षाबंधन सभी के जीवन में खुशहाली, समृद्धि और सफलता लाए तथा प्रेम और आपसी विश्वास के बंधन हमेशा मजबूत रहें। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल निवास पर ब्रह्मा कुमारी बहनों से राखी बंधवाई और सभी के मंगलमय जीवन की कामना की। प्रदेश में रक्षाबंधन का पर्व आज हर्षोल्लास और पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ मनाया जा रहा है। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में तड़के भस्म आरती के दौरान पुजारी परिवार की महिलाओं ने भगवान महाकाल को 2 फीट लंबी विशेष राखी बांधी और 1.25 लाख लड्डुओं का महाभोग लगाया। आगरमालवा में बहनों ने भाइयों को राखी बांधी, जबकि ब्राह्मण समाज ने श्रावणी उपक्रम के तहत यज्ञोपवीत धारण किया। दतिया में जेल में निरुद्ध भाइयों को बहनों ने राखी बांधी। वहीं खरगोन के सिद्धि विनायक मंदिर में भगवान गणेश को 16 वर्ग फीट की विशाल राखी बांधी गई, जिसमें 12 ज्योतिर्लिंगों के चित्र सजाए गए हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रक्षाबंधन के अवसर पर आज अमृतसर स्थित सचखंड श्री दरबार साहिब में मत्था टेका। उन्होंने कहा कि गुरु घर आने से उनका मन अनंत ऊर्जा, उमंग और उत्साह से भर गया है। उन्होंने गुरु चरणों में नमन करते हुए आपसी स्नेह और सद्भाव की भावना को मजबूत करने का संदेश दिया।
1: मेरे सौभाग्य का उदय हुआ है जो गुरु घर मत्था टेकने का अवसर मिला है। मन अनंत ऊर्जा से भरा है, उमंग और उत्साह से भरा है। यहाँ कोई न छोटा है, ना बड़ा है, ना कोई ऊंचा है, ना कोई नीचा है। एक पिता की सब संतानें हैं, बस एक ओंकार, और यही आपस में स्नेह और सद्भाव पैदा करता है। यहाँ सेवा का जो अद्भुत काम होता है वो हर एक के अहंकार को दूर करता है।
0: राजगढ़ जिले के ब्यौरों में भोपाल बाईपास ब्रिज पर आज सुबह बेंगलुरु पुलिस की गाड़ी और उत्तर प्रदेश की यात्री बस में आमने सामने की जोरदार टक्कर हुई। हादसे में बेंगलुरु पुलिस के इंस्पेक्टर और बस चालक समेत 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 12 लोग घायल हुए हैं। गंभीर रूप से घायल 5 लोगों को भोपाल रेफर किया गया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शिवपुरी जिले में मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान 2026 के तहत कल शिविर विकासखंड कोलारस की ग्राम पंचायत लुकवासा में आयोजित किया जाएगा। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जनधन योजना की वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और लोगों को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका। नेपाल तिब्बत सीमा पर अचानक आई भीषण बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 469 हुई। सीमा के दोनों ओर 1500 से अधिक लोग लापता। विदेश मंत्रालय ने कहा, नेपाल में 290 भारतीय नागरिक अब भी संपर्क से बाहर। बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में बचाव अभियान जारी। चीन के सिचुआन प्रांत में 5.1 तीव्रता के भूकंप के बाद नेपाल में फिर बाढ़ की चेतावनी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से अमेरिका की 6 दिन की यात्रा पर। और भारत के वेल्विन सेंथिल कुमार पीएसए बुडापेस्ट स्क्वाश ओपन में आज रात फाइनल में हंगरी के बालास फारकाश से मुकाबला करेंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री जनधन योजना के आज 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। ये देश में वित्तीय समावेशन के परिदृश्य को बदलने की दिशा में प्रमुख पड़ाव है। एक रिपोर्ट।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में जनधन योजना के अभूतपूर्व परिवर्तनकारी परिणामों का प्रभाव बेमिसाल है। श्री मोदी ने कहा कि जनधन योजना वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और देश के लोगों को सक्षम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इस योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में आज ही के दिन किया था। योजना के तहत अब तक 59 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं। ये योजना सभी भारतीयों के लिए बैंकिंग पहुँच को बना रही है। योजना के तहत महिलाओं के लगभग 56% खातों सहित 78% खाते ग्रामीण या अर्ध शहरी क्षेत्रों में खोले गए हैं। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
2: नेपाल तिब्बत सीमा पर अचानक आई विनाशकारी बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 469 हो गई है और सीमा के दोनों तरफ 1545 लोग लापता है। नेपाल के सुरक्षा कर्मियों ने प्रभावित जिलों में 800 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। एक रिपोर्ट।
4: भोटेकोशी नदी प्रणाली के स्रोत के पास नई झील बन गई है। इसके टूटने से पानी के एक और तेज बहाव की आशंका है, इससे बचाव कार्यों में बाधा आ सकती है। इस बीच आज चीन के सिचुआन प्रांत में 5.1 तीव्रता के भूकंप के बाद नेपाल में बाढ़ की नई चेतावनी जारी की गई है। अधिकारियों ने त्रिशूली क्षेत्र में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने का आदेश दिया है। नेपाल पुलिस ने बताया कि तिब्बत की ओर स्थित एक बांध फिर टूट गया है। वहां के निवासियों और सुरक्षा कर्मियों से सुरक्षित स्थानों पर जाने को कहा गया है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि नेपाल में फंसे 290 भारतीय नागरिक अब भी लापता हैं। उनका पता लगाने और सुरक्षित निकालने के प्रयास जारी हैं। खोज और बचाव कार्यों में सहायता के लिए नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह से बात कर उन्हें सहायता का आश्वासन दिया। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
2: नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने कल अमेरिका की उप विदेश मंत्री एलिसन हुकर से टेलीफोन पर बातचीत की। अमेरिका ने नेपाल में राहत और बचाव कार्यों के लिए 5 लाख अमेरिकी डॉलर की सहायता की घोषणा की है। श्रीलंका ने भी नेपाल को 10 लाख अमेरिकी डॉलर की आर्थिक मदद देने की घोषणा की है। इस बीच नेपाल में बाढ़ के बाद बिहार में बाढ़ का खतरा फिलहाल टल गया है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
5: नेपाल में आए भीषण बाढ़ के बाद बिहार में गंडक नदी से बाढ़ का खतरा फिलहाल टल गया है। बुधवार रात गंडक नदी के जल प्रवाह में बढ़ोतरी के बाद अब इसमें लगातार कमी दर्ज की जा रही है। उप मुख्यमंत्री और जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बताया कि फिलहाल गंडक नदी में जल प्रवाह सामान्य है। उन्होंने कहा कि नेपाल की भोटेकोशी, त्रिशूली और नारायणी नदियों से होते हुए पानी के गंडक तक पहुंचने के दौरान जल प्रवाह की गति कम हुई है, जिससे बिहार में इसका प्रभाव भी कम हो गया है। श्री चौधरी ने बताया कि एहतियात के तौर पर गंडक नदी से प्रभावित सभी 8 जिलों को अलर्ट पर रखा गया है। जल संसाधन विभाग की टीमें तटबंधों की 24 घंटे पेट्रोलिंग और निगरानी कर रही हैं। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
2: सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे एक फर्जी वीडियो का खंडन किया है, जिसमें भाखड़ा नांगल बांध की दीवार 1.77 इंच झुकने का दावा किया गया है। वीडियो में कहा गया है कि बांध में दरार आने से दिल्ली सहित कई शहरों में बाढ़ आ सकती है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि बांध के तनाव, खिंचाव, छिद्र दाब और रिसाव के सभी मापदंड निर्धारित सीमाओं के भीतर हैं और बांध पूरी तरह सुरक्षित है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
6: अपडेट रहे, आगे रहे। @AIRNews हिंदी और इंस्टाग्राम पर AIRNews अलर्ट्स को फॉलो करें।
2: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से 6 दिन की अमेरिका यात्रा पर हैं। यात्रा के दौरान वे शिकागो, एशविल और न्यूयॉर्क जाएंगी। एक रिपोर्ट।
7: वित्त मंत्री शिकागो में प्रमुख निवेशकों के साथ गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगी और निजी क्षेत्र की प्रमुख कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों, अध्यक्षों और वरिष्ठ प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगी। इन बैठकों में भारत में निवेश के अवसर, आर्थिक दृष्टिकोण और भारत अमेरिका व्यापार तथा निवेश साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होगी। श्रीमती सीतारामन शिकागो विश्वविद्यालय के पोल्सकी सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन का दौरा करेंगी। वित्त मंत्री अपनी यात्रा के दौरान शिकागो में भारतीय समुदाय के सदस्यों से भी बातचीत करेंगी। एशविले में सुश्री सीतारामन की अध्यक्षता में आयोजित G20 सदस्य देशों के वित्त मंत्री, केंद्रीय बैंक गवर्नर तथा वरिष्ठ आर्थिक अधिकारी वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। ये बैठक 31 अगस्त और 1 सितंबर को होगी। समाचार कक्ष से मैं वीरेंद्र कौशिक।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिन की यात्रा पर कल उज्बेकिस्तान जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी उज्बेकिस्तान

0: पाकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जोयेव के निमंत्रण पर ताशकंद का दौरा करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति मिर्जोयेव के साथ शिष्टमंडल स्तर की बातचीत करेंगे।
1: अपनी दो दिनों की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ताशकंद में शास्त्री मेमोरियल जाने की उम्मीद है। ताशकंद शहर में शास्त्री स्ट्रीट पर भारत के तीसरे प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री के सम्मान में एक कांसे की प्रतिमा स्थापित की गई थी। 1976 में शुरू हुए इस मेमोरियल को स्थानीय उज्बेक मूर्तिकार याकोव शापिरो ने डिजाइन किया था। ताशकंद आने वाले भारतीय पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि देने के लिए बड़ी संख्या में यहां पहुंचते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ताशकंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ ओरिएंटल स्टडीज में महात्मा गांधी सेंटर जाने की भी उम्मीद है। ये सेंटर भारतीय साहित्य, खासतौर पर हिंदी और दूसरी भारतीय भाषाओं के इतिहास और विकास पर एकेडमिक रिसर्च करता है और उज्बेकिस्तान और भारत के बीच आपसी सहयोग को मजबूत करने पर केंद्रित है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद, उज्बेकिस्तान।
0: दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ की उत्तरी रेंज ने ISI समर्थित पाकिस्तान के एक जासूसी नेटवर्क का पर्दाफाश कर दिल्ली के एक दंपति को गिरफ्तार किया है। दंपति पर 2024 से पाकिस्तानी खुफिया एजेंट्स के लिए काम करने का आरोप है। पुलिस के अनुसार दंपति कथित तौर पर पाकिस्तान के हैंडलर्स को सहायता प्रदान करता था। इसमें भारतीय सिम कार्ड खरीदना और उन्हें पाकिस्तान भेजना शामिल था। भारत में सिम कार्ड खरीदने के लिए दिल्ली के स्थानीय लोगों को भर्ती किया गया था। महाराष्ट्र के नाशिक से 450 टन से अधिक प्याज लेकर पहली कांदा एक्सप्रेस आज सुबह दिल्ली पहुंची। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा है कि सरकार ने प्याज की उपलब्धता सुनिश्चित करने और कीमतों में नियंत्रण के लिए बफर स्टॉक से प्याज की नियंत्रित बिक्री शुरू की है। चेन्नई, कोलकाता, एर्नाकुलम, गुवाहाटी, वाराणसी, लखनऊ, पटना, चंडीगढ़, जम्मू और अमृतसर जैसे अन्य प्रमुख उपभोग केंद्रों तक भी प्याज की आपूर्ति की जा रही है। सरकार के मूल्य नियंत्रण बफर स्टॉक का प्याज 35 रुपए प्रति किलोग्राम की रियायती दर पर बेचा जा रहा है। भारत में 7 स्थानों पर 24 परमाणु ऊर्जा रिएक्टर संचालित हैं, जिनकी कुल स्थापित क्षमता 8.78 गीगावाट है। परमाणु ऊर्जा विभाग के अनुसार 9 अतिरिक्त रिएक्टर निर्माणाधीन हैं। परमाणु ऊर्जा भारत के विकास पथ का एक महत्वपूर्ण घटक बनकर उभरी है, जो न केवल बिजली उत्पादन बल्कि स्वास्थ्य सेवा, कृषि और विभिन्न औद्योगिक अनुप्रयोगों में भी योगदान देती है। भारत के परमाणु ऊर्जा मिशन का लक्ष्य 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता प्राप्त करना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
1: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, एक्स पर @AIRNewsHindi को फॉलो करें और ताज़ा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
0: ये आकाशवाणी है। रक्षाबंधन का त्योहार आज देश भर में मनाया जा रहा है।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में विभिन्न स्कूलों और संगठनों में रक्षाबंधन का पर्व मनाया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि रक्षाबंधन का महत्व भाई बहन के रिश्ते से कहीं आगे है। उन्होंने कहा कि राखी का पवित्र धागा परिवार के सदस्यों, मित्रों और यहाँ तक कि पेड़ों को भी बांधा जा सकता है, जो प्रेम और देखभाल के बंधन का प्रतीक है। राष्ट्रपति ने पर्यावरण संरक्षण के महत्व पर जोर देते हुए बच्चों से पौधों और पेड़ों की देखभाल करने का भी आग्रह किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि रक्षाबंधन प्रेम, विश्वास और सुरक्षा के सुंदर बंधन का प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ये त्योहार सभी के बीच स्नेह और सद्भाव के बंधन को मजबूत करने तथा खुशहाली और समृद्धि का पर्व है। पंजाब में जेल विभाग ने आज कैदियों को भाई बहनों के बीच प्रेम और सम्मान का त्यौहार रक्षाबंधन मनाने की अनुमति दी है। विभाग ने सुरक्षा संबंधी नियमों का ध्यान रखे जाने की पूरी व्यवस्था की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज समाज सुधारक और दूरदर्शी नेता महात्मा अयंकाली की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री सिंह ने कहा कि महात्मा अयंकाली

0: ने अपना जीवन शोषितों के अधिकारों और सम्मान के लिए संघर्ष करने में समर्पित कर दिया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भी महात्मा अयंकाली और श्री नारायण गुरु की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री राधाकृष्णन ने कहा कि महात्मा अयंकाली को एक अग्रणी समाज सुधारक और दूरदर्शी नेता के रूप में याद किया जाता है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि श्री नारायण गुरु की आध्यात्मिक समझ और समानता तथा मानवीय गरिमा के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता ने लोगों को भेदभाव से ऊपर उठाया। मौसम विभाग ने उड़ीसा और बिहार में कल तक तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और पूर्वोत्तर राज्यों में भी आज तेज बारिश की संभावना है। अगले दो दिन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में तेज हवाओं के साथ आंधी की संभावना है। कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में भी कल तक ऐसे ही मौसम का अनुमान है। मौसम विभाग ने मछुआरों को 1 सितंबर तक अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में न जाने की सलाह दी है। भारत के वेल्विन सेंथिल कुमार आज रात पीएसए बुडापेस्ट स्क्वाश ओपन फाइनल में हंगरी के खिलाड़ी बालास फारकाश से मुकाबला करेंगे। कल रात सेमीफाइनल में सेंथिल कुमार ने भारत के ही वीर चोटरानी को हराया। भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने 2026 डायमंड लीग फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। प्रतियोगिता अगले महीने ब्रसल्स में आयोजित होगी। नीरज ने रैंकिंग में 12 अंक हासिल किए। उन्होंने जून में दोहा मीट में 85.69 मीटर भाला फेंक कर चौथा स्थान हासिल किया था। उन्होंने इस महीने की शुरुआत में लुसानी मीट में 88.05 मीटर का सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ दूसरा स्थान प्राप्त किया। भारतीय महिला हॉकी टीम ने कल जर्मनी को 3-1 से हराकर एफआईएच विश्व कप में 5वां स्थान हासिल किया। पिछले 52 वर्षों में यह भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। इससे पहले 1974 में हुए पहले विश्व कप में टीम चौथे स्थान पर रही थी। इस प्रदर्शन से अगले महीने जापान में होने वाले एशियाई खेलों से पहले टीम का आत्मविश्वास चरम पर है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जनधन योजना की वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और लोगों को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका। नेपाल तिब्बत सीमा पर अचानक आई भीषण बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 469 हुई। सीमा के दोनों ओर 1500 से अधिक लोग लापता। विदेश मंत्रालय ने कहा, नेपाल में 290 भारतीय नागरिक अब भी संपर्क से बाहर। बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में बचाव अभियान जारी। चीन के सिचुआन प्रांत में 5.1 तीव्रता के भूकंप के बाद नेपाल में फिर बाढ़ की चेतावनी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से अमेरिका की 6 दिन की यात्रा पर। और भारत के वेल्विन सेंथिल कुमार का पीएसए बुडापेस्ट स्क्वाश ओपन में आज रात फाइनल में हंगरी के बालास फारकाश से मुकाबला। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 2:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है आपकी फरमाइश और आपकी फरमाइश लेकर हाजिर हूं मैं जावेद खान। और सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं जीवन मृत्यु फिल्म का एक गाना, जिसको गाया है मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर ने। आनंद बख्शी ने इस गाने को लिखा है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने संगीत दिया है। और इस गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है आदर्श नगर मलोट से। लिखने वाले हैं राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मेहंदी शर्मा, सौरभ शर्मा, शाइना शर्मा, निवान शर्मा और उनके परिवार के दूसरे सदस्य। और इसी गाने को पसंद किया है गांधी चौक बड़मेर राजस्थान से बबलेश पवार, डेनी पवार, मास्टर मनीष और उनके परिवार के दूसरे सदस्य। इसी गाने को पसंद किया है छत्रपति संभाजी नगर से राजेश सांबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और शीतल राजेश ने।

वक्त की दीवार, इस फिल्म का गाना सुनवा रहे हैं किशोर कुमार और मोहम्मद रफी की आवाज़ है, अनजान ने लिखा है और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है। और इस गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से, कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, हादिया, असमा, सालिहा, शोएब, साइमा खान, मुश्तबा खान, आफिया खान, रऊफ भाई, शाहिद भाई, गांधी बाग अकोला से रमेश कटनकर, वैशाली कटनकर और उनके परिवार के दूसरे सदस्य, छत्तीसगढ़ दतरंगी से भागवत वर्मा, लेवई से गुलाबदास मनिकपुरी, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू, चरडोंगरी पिपरिया से दुर्गाराम साहू और उनके परिवार के दूसरे सदस्य, शिवाजी चौक राजिम छत्तीसगढ़ से अनिल कुमार, मंजुलता, आदित्य कुमार और कृष श्रीवास्तव की पसंद पर सुनते हैं ये गीत।

अब हम आपको सुनवा रहे हैं झुक गया आसमान फिल्म में लता मंगेशकर को हसरत जी पुरी ने इस गाने को लिखा है, शंकर जयकिशन का संगीत है। और इस गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है गोला बाजार बक्सर से, श्रद्धानंद आर्य, अभिनंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज प्रमोद, रोहित और मोहित ने ये गाने की फरमाइश भेजी है। मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गायकवाड़, सरिता गायकवाड़, एकांश गायकवाड़, सिद्धांत गायकवाड़, बदलापुर मुंबई से प्रणेता गायकवाड़ और उनके परिवार के दूसरे सदस्य, वैशाली शैलेश गायकवाड़ आकार हाइट से, बहादुरा नागपुर से, और सुमित गायकवाड़ और ध्वनि गायकवाड़ ने पसंद किया है। इसी गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है जयराज प्लॉट राजकोट से, मधुसूदन भट्ट, आरती पूजा, जैस्मिन और प्रयागराज भट्ट की। सुनते हैं ये गाना।

अगला गाना लिया है हमने महेंद्र कपूर और साथियों की आवाज में, फिल्म का नाम है हमराज, शाहिद लुधियानवी ने इस गाने को लिखा है और रवि का संगीत है। और इस गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है नेपाल पैलेस सागर से, लिखने वाले हैं तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नुपुर, ऋषिका रॉबिन और उनके परिवार के दूसरे सदस्य। इसी गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है ब्रेडी से, लिखने वाले हैं राजेश सोनी, कंचन सोनी, गायत्री डोमने, वैष्णवी डोमने, चंचल डोमने, अर्जुन सिरद सवारे और उनके परिवार के दूसरे सदस्य। इसी गाने को पसंद किया है धामणी मनोरा से, लिखने वाले हैं तुलसीराम डेरे, मायावती डेरे, संदेश डेरे, आकाश डेरे, किरण डेरे और उज्जवल डेरे, साथ में अनुत डेरे ने इस गाने को पसंद किया है। सुनते हैं ये गीत।

आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं गीता दत्त की आवाज में एक गीत जिसको पसंद किया है टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, नवनीत राय, डॉक्टर अमनदीप, अनिल शर्मा कालका से, शुभचंद्र बजाज, बिट्टा बजाज, और इन्होंने फरमाइश भेजी है सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से। तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका, नुपुर, ऋषिका और रॉबिन और नेपाल पैलेस सागर से ये फरमाइश आई है। सुनते हैं ये गीत, फिल्म का नाम है शर्त।

0: किसी गीत के साथ ही आपकी फरमाइश कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में जनधन योजना के अभूतपूर्व परिवर्तनकारी परिणामों का प्रभाव बेमिसाल है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि जनधन योजना वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और देश के लोगों को सक्षम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। नेपाल तिब्बत सीमा पर आई विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 469 हो गई है, जबकि सीमा के दोनों ओर 1,545 लोग अभी भी लापता हैं। बचाव दल नदी के किनारों और अलग थलग बस्तियों में जीवित बचे लोगों की तलाश कर रहे हैं। देश और प्रदेश में रक्षाबंधन का पर्व आज हर्षोल्लास और पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रक्षाबंधन के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भोपाल निवास पर ब्रह्म कुमारी बहनों से राखी बंधवाई और सभी के मंगलमय जीवन की कामना की। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में तड़के भस्म आरती के दौरान पुजारी परिवार की महिलाओं ने भगवान महाकाल को 2 फीट लंबी विशेष राखी बांधी और 1.25 लाख लड्डुओं का महाभोग लगाया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रक्षाबंधन के अवसर पर आज अमृतसर स्थित सच खंड श्री दरबार साहिब में मत्था टेका। उन्होंने कहा कि गुरु घर आने से उनका मन अनंत ऊर्जा, उमंग और उत्साह से भर गया है। और मौसम विभाग ने आज टीकमगढ़, छतरपुर, कटनी, सीधी, अनूपपुर, सिवनी और बालाघाट में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। मीडियम वेव डीटीएच के ऑडियो चैनल साथ ही न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल एप्लीकेशन पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। और लीजिए सुनिए शाम की सभा में प्रसारित होने वाले आकाशवाणी भोपाल और आकाशवाणी मध्य प्रदेश के मुख्य कार्यक्रमों का विवरण। युवा साथियों का नियमित कार्यक्रम युवाणी रोज की तरह 5:02 पर होगा और आज की युवाणी आकाशवाणी छतरपुर की प्रस्तुति है। फिल्म संगीत का आनंद ले सकते हैं आप 5:33 पर। एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम होगा 6:00 और फिल्म संगीत 6:30 पर। सात बजकर 21 पर आप सुनेंगे किसान भाइयों का कार्यक्रम ग्राम सभा। रात 8:00 का समय है कार्यक्रम सुर्खियों में आप सुन सकते हैं और 8:15 पर हम आपको सुनवाएंगे फिल्म संगीत। रात 9:30 पर आप सुन सकते हैं खेल जगत कार्यक्रम, इसमें आप सुनेंगे भेंटवार्ता, अंतर्राष्ट्रीय महिला बॉक्सिंग कोच नेहा कश्यप से बातचीत। 9:45 पर फिल्म संगीत और आपकी फरमाइश लेकर हम हाजिर होंगे रात 10:00। 10:30 पर आप सुन सकते हैं शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी के अंतर्गत देवव्रत चौधरी का सितार पर बजाया राग रागेश्री। ये थे आकाशवाणी मध्य प्रदेश और आकाशवाणी भोपाल से प्रसारित होने वाले आज की शाम की सभा के मुख्य कार्यक्रम। मीडियम वेव डीटीएच के ऑडियो चैनल साथ ही न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल एप्लीकेशन पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। इस समय हमारी स्टूडियो की घड़ी में 3:02 हुए हैं। अब हमारा मीडियम वेव पर प्रसारण कुछ देर के लिए बंद होता है। अब से कुछ ही देर बाद यानी शाम 5:00 से आप मीडियम वेव पर प्रसारण पुनः सुन सकते हैं। इस बीच डीटीएच के ऑडियो चैनल पर प्रसारण जारी रहेगा।

एच के ऑडियो चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जावेद खान और लीजिए सुनिए लोक संगीत का कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी छतरपुर की प्रस्तुति है। कलाकार हैं प्रमिला सागर, आजाद सिंह यादव और साथी, और इसके बाद आप सुनेंगे नवोदिता निगम के गाए भजन और गीत। तो पहले शुरुआत करते हैं लोक संगीत के कार्यक्रम की।

ये थे नबुलता दास, नवोदिता निगम, सुगम संगीत के कार्यक्रम में। इसी के साथ ही सुगम संगीत का कार्यक्रम और लोक संगीत का कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। ये कार्यक्रम आकाशवाणी छतरपुर की प्रस्तुति थे। आप सुन रहे हैं डीटीएच के ऑडियो चैनल पर आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 3:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए चित्रपट संगीत। चित्रपट संगीत में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं किशोर कुमार और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में फिल्म यादों की बारात का एक गीत। मजरू सुल्तानपुरी ने इस गाने को लिखा है, राहुल देव बर्मन का संगीत है। सुनते हैं ये गीत।

अगला गाना लिया है हमने फिल्म नाम से, आवाज़ पंकज उधास और साथियों की हैं। आनंद बख्शी ने इस गाने को लिखा है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है, सुनिए ये गीत।

अगला गाना लिया है हमने फिल्म गुमनाम से, आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की है, हसरत जयपुरी ने इस गाने को लिखा है, शंकर जयकिशन ने संगीत से सजाया है,

ज़मीन के तारे, इस फिल्म में अभी आपने सुना मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ में ये गाना। पंडित इंद्र ने इस गाने को लिखा था और एस महेंद्र का ये संगीत था। अब हम आपको सुनवा रहे हैं मन्ना डे की आवाज़ में एक गाना जिसको हमने लिया है फिल्म जंजीर से। गुलशन बाबरा ने इस गाने को लिखा है, कल्याण जी आनंद जी का संगीत है। सुनिए ये गीत।

नजराना तेरी हंसी है आज सबसे बड़ा नजराना यार के हंसते ही

0: इसी गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। आप सुन रहे हैं डीटीएच के ऑडियो चैनल पर आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण, और लीजिए अब सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज महात्मा अयनकाली और श्री नारायण गुरु की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि महात्मा अयनकाली को सामाजिक न्याय के महान अग्रदूत के रूप में याद किया जाता है। देश और प्रदेश में रक्षाबंधन का पर्व आज हर्षोल्लास और पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ मनाया जा रहा है। बहनें भाइयों की कलाई पर रंग बिरंगी राखी बांधती हैं और उनकी खुशहाली, सेहत और समृद्धि के लिए प्रार्थना करती हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विश्व संस्कृत दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने अपने संदेश में कहा कि संस्कृत भारत की ज्ञान, संस्कृति और गौरवशाली परंपरा की आधारशिला है। वेद, उपनिषद, दर्शन और साहित्य की समृद्धि विरासत को संजोए यह शाश्वत भाषा हमारी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ती है। महाराष्ट्र सरकार ने ऑटो रिक्शा और टैक्सी चालकों के लिए बुनियादी मराठी भाषा का ज्ञान हासिल करने की समय सीमा एक वर्ष बढ़ा दी है। कई दिनों से जारी कार्रवाई और इस आवश्यकता को लेकर हुई चर्चाओं के बाद सरकार ने यह फैसला लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में जनधन योजना के अभूतपूर्व परिवर्तनकारी परिणामों का प्रभाव बेमिसाल है और भारत के लिए भाला फेंक स्पर्धा में ओलंपिक में स्वर्ण और रजत पदक जीतने वाले नीरज चोपड़ा ने 2026 डायमंड लीग फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। प्रतियोगिता अगले महीने ब्रुसेल्स में आयोजित होगी। नीरज ने रैंकिंग में 12 अंक हासिल किए। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

डीटीएच के ऑडियो चैनल पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 4 बजे हैं। लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

अब हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म कर्तव्य का एक गाना, आवाज़ें उषा मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी और साथियों के हैं। वर्मा मलिक ने इस गाने को लिखा है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है। सुनिए ये गीत।

0: जवाब तुम अपने घर जाओ। देखो मुन्नी बच्चे ज्यादा शरारत नहीं करते, जाओ।
1: नहीं जाऊंगी।
0: देखो रात बहुत हो चुकी, मैं कहता हूँ जाओ।
1: नहीं जाऊंगी।
0: नहीं जाएगी, नहीं जाएगी, जाए तो कैसे नहीं जाएगी, कैसे नहीं जाएगी।

चंदा मामा से प्यारा है तेरा मामा, बहुत ही खूबसूरत गाना था फिल्म कर्तव्य का। और अब हम आपको सुनवा रहे हैं दुनिया झुकती है, इस फिल्म का एक गाना, आवाज मोहम्मद रफी की है, राजेंद्र कृष्ण ने लिखा है, हेमंत कुमार का संगीत है।

फूलों से है दोस्ती, कांटों से यारी है, ऐसी खूबसूरत जिंदगी हमारी है। चलिए अब हम आपको सुनवा रहे हैं काली टोपी लाल रुमाल फिल्म का गाना। आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ें हैं। मजरूह सुल्तानपुरी ने इस गाने को लिखा है, चित्रगुप्त का संगीत है। सुनते हैं ये गीत।

अगला गाना लिया है हमने फिल्म कालिया से, आवाज़ें मोहम्मद रफ़ी और साथियों की हैं। मजरूर सुल्तानपुरी ने इस गाने को लिखा है, आर डी बर्मन के संगीत है, सुनिए ये गीत।

इसी गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। आप सुन रहे हैं डीटीएच के ऑडियो चैनल पर आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 4:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुति कार्यक्रम संग्रहालय से। इसके अंतर्गत आज हम आपको सुनवा रहे हैं धारावाहिक जमुनिया की 10वीं कड़ी।

0: भैया।
1: अभी तक आपने सुना है जमुनिया और उसका पति रतन गांव में सरकार के पट्टे की जमीन पाकर बहुत खुश थे। रतन के भाई करण ने गांव के जमींदार दीवान से मिलकर उसे 10,000 रुपए का कर्ज दिलाया और दीवान ने छल कपट से उसे 25,000 का बना दिया। रतन को पता चला तो वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाया, उसने आत्महत्या कर ली। जमुनिया को उसकी दुदमुही बेटी के साथ करण ने घर से निकाल दिया और उसका बेटा गोलू हथिया लिया। पास के एक गांव के झुलन ने माँ बेटी को सहारा दिया। बांस के डलिए पंखे बनाकर गुजर बसर करने लगी जमुनिया। यहाँ पर गांव के गुरुजी से शिक्षा ग्रहण करती जमुनिया ने न केवल अक्षर शब्द वाक्यों की रचना सीखी वरन अंकों का ज्ञान जोड़ना घटाना भी सीखा। जो भी खाली समय मिलता वो अध्ययन करती। गुरुजी ने संक्षिप्त में उसे भारत के अतीत और वर्तमान के बारे में भी बताया। उधर करण ने नशे की लत के कारण भाई रतन द्वारा बनाया गया खेत बर्बाद कर दिया और दीवान ने उसकी पत्नी और गोलू को बंधुआ मजदूर बना दिया। स्वाधीनता दिवस के अवसर पर दीवान ने गांव को संबोधित किया जिसमें गुरुजी, जमुनिया और झुल्लन भी शामिल हुए। दीवान ने बड़ी चालाकी से अपनी बात को मनवा लिया लेकिन जमुनिया सब समझ गई। अब आगे

0: अरे आइए आइए पटवारी जी, आइए आइए। कहिए साहब, क्या हाल है आपके?
1: बस देवान जी ठीक ही हैं। आप कहिए, कुशल मंगल तो है ना?
0: अरे आपकी कृपा है और आप लोगों का साथ रहेगा तो कुशल मंगल तो रहेगा ही। क्यों पटवारी जी?
1: अरे हम आपसे अलग कहाँ जा सकते हैं दीवान जी, आप बस हमारा ऐसे ही ख्याल रखिएगा।
0: जी बिल्कुल साहब, अरे आपका ख्याल नहीं रखेंगे तो जाएंगे कहाँ। जी बताइए, बिलायती चलेगी अभी?
1: अरे राम राम, इतनी जल्दी? थोड़ी रात तो ठहरने दो दीवान जी।
0: अरे पटवारी जी, यहाँ तो अपनी हुकूमत चलती है।
1: हाँ।
0: अपना ही राज है भैया।
1: बिल्कुल,
0: इसलिए रात दिन की फिक्र तो हम करते नहीं है। बस आप कह रहे हैं तो ठीक है, रात को ही सही। लेकिन पटवारी जी, आज यहीं आराम कीजिए हमारे साथ।
1: हाँ। अरे वो तो अपना ही घर है। उसमें कोई बात नहीं।
0: तो बताइए फिर, अभी क्या लेंगे, ठंडा या गरम?
1: अभी तो दीवान जी एक गिलास ठंडी लस्सी हो जाए।
0: अरे बहुत खूब, क्या बात कही, ठंडी लस्सी। अरे भाई सुनो, हमारे पटवारी साहब के लिए एक गिलास ठंडी लस्सी लेकर आ भाई।
1: अच्छी ला रहा भैया।
0: अरे तबीयत मस्त हो जाएगी आपकी पटवारी जी। आप तो ये बताइए, सरपंची के चुनाव कब आ रहे हैं?
1: अरे यार भाई,
0: अरे तो हमारा ख्याल रखिएगा। हाँ
1: वो तो है।
0: अरे भैया हमें ही जीतना है, हम ही इस गांव का विकास करेंगे। हाँ
1: मगर सरकार, इस बार आप चुनाव नहीं लड़ सकते।
0: क्या?
1: हाँ।
0: किसके बाप में दम है जो हमें रोकते चुनाव में खड़ा होने से और जीतने से?
1: अरे ये बात नहीं है दीवान जी।
0: फिर?
1: अरे असल में यहाँ की सीट महिला सीट घोषित हो गई है।
0: हा? हाँ महिला सीट।
1: हाँ तो अब आप तो चुनाव लड़ ही नहीं सकते ना। कल ही कलेक्ट्रेट गए थे हम, वहीं पता लगा।
0: अरे रे रे रे, ये तो बहुत ही बड़ी गड़बड़ हो गई पटवारी जी।
1: हाँ।
0: ओहो, अच्छा ये लीजिए लस्सी पीजिए तब तक।
1: हाँ,
0: आप
1: हाँ, हाँ, हाँ।
0: लस्सी पीजिए, फिर बात करते हैं आपसे।
1: ला भाई लस्सी दे। आप बात करते रहे दीवान जी।
0: हा?
1: लस्सी पीते हुए भी बात हो सकती है। वाह बड़ी स्वादिष्ट लस्सी है भाई।
0: अरे पटवारी जी ये बताइए आप, ये ससुर कलेक्टर कौन होता है सीट घोषित करने वाला कि हमारी सीट महिला सीट होगी?
1: अरे भाई दीवान जी, ये केंद्र सरकार के आदेश से होता है। हाँ, पर सूचना कलेक्टर के माध्यम से ही आती है।
0: चलो ये ससुरी सरकार भी अब लुगाइयों से सरपंची करवाएगी है? अरे क्या हो गया है लोगों को?
1: अरे पर मालिक आप चिंता क्यों करते हैं, एक आसान सा रास्ता है।
0: आसान सा?
1: हाँ।
0: क्या रास्ता है पटवारी जी?
1: अरे अपनी मालकिन तो है।
0: हाँ
1: जीत तो वो ही जाएंगी, जहाँ आप वहाँ जीत। अरे सरपंची तो घर में ही रहेगी ना।
0: तो चलो पटवारी जी, यानी मालकिन के लिए वोट मांगे चलकर।
1: आओ।
0: तो चलो तैयारियां करो। अरे अपने आदमियों को भी तो काम पर लगाना है।
1: आओ।
0: यही ठीक रहेगा ना?
1: ठीक रहेगा।
0: ए गोलू, ये ले गिलास उठा।
1: अरे ये तो रतन का बेटा है ना दीवान जी?
0: हाँ पटवारी जी, खूब पहचाना आपने।
1: हाँ वही तो मैं कहूँ।
0: अरे पटवारी जी, इसे करण ने हत्या लिया था और उससे हमने हत्या लिया।

0: स्वाधीनता दिवस पर दीवान की बातों से ये तो साफ हो गया कि सरकार ने हमारे गांव के लिए पैसा दिया है, उसको खर्च करने का अधिकार गांव को है। पर गांव है कहाँ? दीवान तो खुद ही गांव बना बैठा है।
1: यही तो जमनिया, ये सरपंच नहीं परपंच है।
0: परपंच? आप भी गुरुजी। परपंच। अच्छा गुरुजी, हम आज क्या पढ़ेंगे?
1: आज हम कुछ प्रश्न पूछते हैं तुमसे, हैं?
0: गुरुजी, तैयारी तो की नहीं, फिर भी पूछिए, कोशिश करूंगी।

0: अच्छा, हाँ तो बताओ जमुनिया कि भारत को तकनीक विज्ञान के रास्ते विकास पर लाने का सपना किसका था, यानी किस प्रधानमंत्री का था?
1: राजीव गांधी जी का।
0: शाबाश शाबाश, अरे भाई बहुत अच्छी समझ है तुम्हारी। अरे मेघा बिटिया, अरे तुम यहां कहां से आ गई हैं?
1: प्रणाम गुरु
0: अरे
1: जी,
0: प्रणाम प्रणाम।
1: आज ही आए हैं
0: अच्छा,
1: और ये हमारे साथी हैं कॉलेज के, ये
0: हाँ
1: शिल्पी हैं।
0: प्रणाम
1: प्रणाम गुरु जी।
0: प्रणाम।
1: और ये है जयंत,
2: प्रणाम गुरु जी।
0: प्रणाम प्रणाम भाई।
1: इन्हें भी मैं साथ ले आई।
0: अच्छा, बेटा ठीक है, जीते रहो, खुश रहो खुश रहो खुश रहो। अच्छा किया जो तुम लोग गांव आए, इन्हें भी देखना और जानना चाहिए। अरे भाई श्रीमती जी, अरे शहर से कुछ मेहमान आए हैं, अरे कुछ चाय पान का इंतजाम करो भाई।
3: करते हैं जरा मेगा बिटिया को देखने तो दो, बड़ा चश्माशमा लगा कर
1: आइए। चाची तुम तो मजाक मत उड़ाओ ना।
3: अरे मैं तो बस ऐसे ही, इन्हें यहाँ कहाँ ले आई नरक की सैर कराने।
4: हमें गांव अच्छा लगता है।
3: 2 दिन में उल्टे पांव भाग जाओगी बोरिया बिस्तर समेट कर।
1: गुरु जी ये
0: हाँ
1: कौन है?
0: बताओ भाई जमुनिया, तुम खुद ही बताओ।
5: मैं जमुनिया हूँ मेघा दीदी, गुरु जी से पढ़ती हूँ।
1: अच्छा
0: भाई, गजब की लगन और प्रतिभा है इस लड़की में मेघा। अब तुम खुद अपने आप को देख लो हैं, अपने ही गांव सेवक से लड़कर तुम्हें भेजा था कंप्यूटर पढ़ने के लिए है, सब हंसते थे तुम पर, और अब देखो इतना स्मार्ट हो गई हो कि सारी दुनिया की नब्स पर हाथ रखे हो।
4: अच्छा बड़ा इंप्रेशन जमा रखा है तुमने।
0: अच्छा भाई, तो अब आप लोगों ने क्या सोचा है अपने भविष्य के बारे में?
4: हम तीनों यही सोचकर आए हैं गुरुजी, एनजीओ खोलेंगे, गांव के लोगों को जागरूक बनाएंगे,
0: अच्छा
4: उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास करेंगे।
0: मतलब समाज सेवा, तब तो तुम्हारी सबसे अधिक जरूरत तो गांव देहात में ही है, पर इतना पढ़ लिख कर यहां कैसे आओगे तुम लोग?
1: मैं और शिल्पी तो गांव में रहकर ही काम करना चाहते हैं, पर ये जयंत है ना, शहर की रट लगाए रहते हैं।
2: अरे शहर ना हो, पर कम से कम ब्लॉक या तहसील प्लेस तो हो, जहां रहने खाने पीने और आने जाने की सुविधा तो हो। अरे जिंदगी में 2 पैसे भी तो कमाना है, सिर्फ कुरी समाज सेवा से तो काम नहीं चलेगा ना।
0: अरे मेघा बिटिया,
1: जी
0: इन्हें कुछ दिन गांव घुमाओ,
1: जी
0: हो सकता है यहां की समस्याएं और चुनौतियां इन्हें यहीं रोक ले।
3: लो भाई सब लोग चाय पियो और गांव की समस्याओं और चुनौतियों से लड़ने की तैयारी करो। लो चाय, लो चाय।
1: हाँ
6: हमने कुछ सुना है, क्या तुमने भी सुना है?
7: अरे ऐसा क्या सुन लिया भाई, बड़ी खुसर फुसर हो रही है।
8: अरे यार साफ साफ बोलो ना यार, क्या सुना है बताओ।
6: भैया वो आपके सरपंच जी के चुनाव में दीवान चुनाव नहीं लड़ पाएंगे।
7: क्यों क्यों भाई, क्या हो गया, कोई मामला मुकदमा हो गया क्या?
6: अरे नहीं भैया, वो सीट महिला सीट हो गई है, महिला सीट।
7: अच्छा,
6: तो अब की बार उनकी मालकिन चुनाव लड़ेंगी।
8: अरे लगता है वो जीत भी जाएगी क्या भैया?
7: पर दूसरा क्यों नहीं जीत सकता?
8: दीवान ने सबको फंसा के रखा है कि नहीं? अरे सबको पटा के रखा है यहाँ से माता।
6: भैया इसीलिए तो सब उससे छुटकारा चाहते हैं, भीतर ही भीतर। हाँ
7: पर और कौन लड़ेगा मालकिन के सामने?
6: अरे क्यों, अपनी जमुनिया तो है। हाँ हाँ उसे सब मिलकर खड़ा करो।
8: अरे हाँ हाँ हैं, ये सभी के काम आती है।
6: हाँ हाँ और का,
8: और अब तो पढ़ लिख भी गई है।
6: हाँ भैया सही बात है, पढ़ लिख गई, अपना तो विचार यही है।
8: अखबार पढ़ने लगी है भाई।
6: हाँ भैया।

0: और वैसे भी एक बात तो है, समझदार तो है।
1: हाँ बिल्कुल,
2: बात तो एकदम ठीक है यार। चलो जमुनिया से बात करते हैं।
1: हाँ चलो चलो, जमुनिया से बात चलो
3: चलो। तुम लोग यहाँ का खोसर फोसर कर रहे हो?
4: कुछ नहीं मालिक, कुछ नहीं। सुना है अब की बार मालकिन सरपंची का चुनाव लड़ने वाली है।
3: अच्छा, बड़ी जल्दी बात गांव में फैल जाती है। ठीक सुना है तुम लोगों ने। और सुना, तुम लोग ही उन्हें वोट दोगे? दोगे ना?
4: जी जी मालिक, जी मालिक।
1: और कौन है जिसे हम वोट देंगे?
3: अरे कोई हो तो भी, वोट मालकिन को ही पढ़ना चाहिए, समझ गए?
1: अच्छा मालिक,
3: अच्छा चलते भाई।
4: ये लो, शैतान का नाम लो और शैतान हाजिर।
5: सच्ची भाई, इसके कान कितने तेज है।
0: अरे यार, उसके सामने तो सभी की खिड़की बन गई थी। सबने बोला वोट मालकिन को ही देंगे।
4: अरे भैया, बोलने से क्या होता है, है? ठप्पा लगाना होगा तब ना देखेंगे किसका होता है।
6: अरे इसीलिए मतदान गुप्त होता है।

0: मजा आ गया आप लोगों का गीत संगीत सुनकर। शहर से भी लोग आ गए हैं। सच्ची मजा आ गया, एकदम मजा आ गया।
1: अरे ये कौन है, ग्राम सेवक की बिटिया है का?
2: अरे ये तो बच्चा है। अरे बिटिया नहीं, माफ करना बेटा, उजाला काम है सो बराबर देखो नहीं, हम समझे कि मेघा बिटिया है। हाँ।
3: अरे कोई बात नहीं बाबा। बाबा पर आप लोग सचमुच बहुत अच्छा गाते हैं। बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर।
0: बहुत अच्छा। मैं इधर हूँ झुल्लन काका, मेघा। ये मेरे दोस्त है जयंत। अच्छा। शहर से आए हैं घूमने फिरने, और ये है शिल्पी।
2: अच्छा बेटा।
0: ये भी शहर से आई है।
2: वाह।
0: हम सब लोग साथ ही पढ़ते थे।
2: हाँ।
4: माने हमारे मेहमान ही है ना भाई।
2: हाँ।
4: तो आ बैठो बैठो सब लोग बैठो, और आज भाई तुम लोग भी सुनो हमारे सुख दुख। हाँ। क्या नाम से?
0: ठीक है दीनू चाचा, आप लोग गाओ।
4: हाँ यार, हाँ। गाओ भैया। हाँ। शुरू हो जाओ।
2: हाँ। गाओ भैया गाओ, शुरू तो हो जाओ। हाँ।

0: आप मुकुंदी है ना? मेघा ने बताया था साधन के अभाव में आप अस्पताल नहीं ले जा पाए थे अपनी पत्नी को।
1: वो कहानी छोड़ो बिटिया, याद आता है तो कलेजा फट जाता है। अभी तो हाल ये है कि शाम को 7 बजे ही अंधेरा हो जाता है, हाथ को हाथ भी नहीं सूझता, इतना अंधेरा होता है।
0: क्यों, बिजली नहीं आती क्या?
2: नहीं, शर्म आती है बेचारी बिजली को। और वैसे भी यहां तक आते आते थक भी जाती होगी।
0: नहीं, वो बिजली के खंभे लगे देखे तो समझे कि बिजली होगी।
3: अरे खंभा की मत पूछो भैया, बरसों से ऐसी लगे देख रहे हैं। अरे यार पानी मानी तू लेके आया यार।
2: हाँ भैया, हाँ
3: पानी मानी की पूछो।
2: हाँ सही बात।
0: अरे नहीं, अभी प्यास नहीं है।
2: हाँ।
0: लगेगी तो मांग के पी लेंगे।
2: अच्छा किया साहब, प्यास नहीं है, वरना वही है पंप का पीला पानी पीना पड़ता।
4: और आप अकेले अकेले क्या खा रहे हैं?
5: वही अपनी सदाबहार पकवान है साहब, प्याज के साथ नमक और रोटी।

0: सवेरे से खेत में जुटे थे, सो भूख लगाई थी।
1: आप लोगों के खाने का प्रबंध करें क्या?
2: अरे नहीं, खाना ये लोग मेरे घर खाएंगे। हाँ,
1: ठीक है।
2: गाना जरूर सुनेंगे, इसलिए आए हैं। और हाँ, इतने लोग बैठे हैं यहाँ, कम से कम एक लालटेन का इंतजाम तो कर लो।
0: अरे बेटा, ये क्या खेल रही हो? हैं? यहाँ लालटेन में डालने का तेल कहाँ मिलेगा?
1: अरे हाँ, राशन की दुकान का तो हाल ही मत पूछो। गेहूं, चावल, तेल, खाद, सब कुछ आता है, पर पता ही नहीं चलता कि किसके पेट में चला जाता है।
0: हाँ?
3: अरे कलेक्टर, बीडीओ, तहसीलदार, कोई तो आते होंगे गांव में कभी।
4: अरे भैया, गांव तलक कि उसके आसपास तलक भी, सड़क होती तभी तो आते ना बेचारे।
0: अरे हाँ बेटा, सड़क है नहीं, स्कूल है नहीं, अरे बच्चे पढ़ेंगे तो पढ़े कैसे हैं?
5: अरे आपके सरपंच, विधायक कुछ करते नहीं, यहाँ आते भी नहीं क्या?
6: आते हैं, चुनाव के समय आते हैं,
0: हाँ
6: उस समय सब कुछ मिलता है राशन की दुकान पर। बाद में वही डाक के तीन पात, चुनाव आने वाला है, अब देखना असली खेल। यहाँ मुफ्त दारू तक मिलती है, कम्बल मिलता है, धोती मिलती है, बाद में सब गायब।
0: हाँ।
2: अब बोलो जयंत।
3: लगता है यहीं से शुरू करना पड़ेगा।

0: आज तो होली है ना, आज भी होलिया पंखे बनाओगी?
1: जब मुनिया काम नहीं करेगी तो चिड़ैया को खिलाएगी क्या? खाना तो होली को भी पड़ता है ना,
0: है ना?
1: काम नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या?
0: पर एक दिन तो आराम कर लो ना माई, जब मुझे बुखार आया था तब तो दिन भर मेरे पास बैठी रही, कोई काम नहीं किया।
1: उसी की भरपाई तो करनी पड़ेगी ना, ज्यादा काम करके। हाँ, वैसे भी ये त्योहार गरीबों के लिए नहीं होते। सुना है अब इस गांव में सरपंची औरतें करेंगी, मैं लड़ूंगी चुनाव।
0: का सरपंची? इस सरपंची का होता है माई?
1: तब सरकार जो पैसा गांव को देगी वो सारे काम हमारी मर्जी से होंगे, अपनी मर्जी से गांव की तरक्की कर पाएंगे।
0: अरे वाह, तब तो तू पूरी तरह सही है माई इस काम के लिए। हाँ
1: पर मुझे डर लगता है।
0: क्यों माई, काहे का डर?
1: मैं अकेली क्या कर पाऊंगी?
0: सब कुछ माई, तुम सब कुछ कर सकती हो।
1: सच?
0: माई तब तो हम गोलू भैया को भी ला सकते हैं ना।
1: चिरैया ये क्या कह रही है रे, जिस भाई को तूने देखा नहीं उसकी तुझे इतनी फिक्र है?
0: माई गोलू भैया को ले आना।
2: अरे जमुनिया जरा बाहर निकल कर तो देख बिटिया, हैं? लोग अपनी ड्यूटी पर आए रंग अबीर लेकर। अरे मेघा, मेघा से तो तुम मिल ही चुकी हो ना, ये इनके दोस्त हैं। और
1: प्रणाम। इन सबसे मिलनी हूँ बाबा।
2: हाँ।
1: गुरु जी के घर। ये जयंत जी है।
2: हाँ,
1: और ये शिल्पी। ठीक कह रही हूँ ना?
3: बिल्कुल ठीक कह रही है जमुनिया जी।
2: हम सब बहुत सोच समझ कर तुम्हारे पास आए हैं बिटिया, मना मत करना, सरपंची का पर्चा भर ही देना। पूरा गांव अंदर ही अंदर तुझे सरपंच बनाना चाहता है बिटिया।
1: कहां हम बाबा और कहां सरपंची, ना हमारे बस की बात नहीं। हमें डर लगता है कुछ कुछ नहीं कर पाए तो। हमारा तो ठीक है,

0: आप सबकी हंसी उड़ाएंगे लोग।
1: का माई, अभी तो खुद ही कह रही थी, अब मौका आया तो पीछे काहे हट रही हो?
0: हट यहां से, वो तो सपना था। सपना तो सभी देखते हैं ना।
2: डरो मत जमुनिया, हम सब तुम्हारे साथ हैं।
3: बिल्कुल
4: और हम सब भी आपके साथ हैं। हम सब मिलकर इस गांव के हित में काम करेंगे।
0: जब आप सब लोग साथ हैं तो जैसी आप लोगन की मर्जी।
2: जे हुई ना बात।
4: हमें पूरा विश्वास है कि इस गांव की तस्वीर आपके हाथों से सुधरेगी। बोलो सब लोग।

0: मैं अपना हक लेकर रहूंगी, लेकर रहूंगी, लेकर
1: रहूंगी। अरे ही जमुनिया आखिरकार हमारे खिलाफ खड़ी हो गई। अरे उसकी इतनी हिम्मत,
2: आप कहे तो उसे काट कर फेंकाए, पता भी नहीं चलेगा। चुनाव का समय है मालिक, फूंक फूंक कर कदम रखना पड़ेगा। इस तरह ताव में आकर कुछ कर देंगे तो दाव उल्टा भी पड़ सकता है।
1: नाक नहीं कटनी चाहिए, समझ गए तुम लोग? नहीं तो पूरे गांव में आग लगा देंगे हम। अरे सब फसम हो जाएगा, बताए दे रहे हैं तुम लोगों को। हाँ
2: अरे मालिक, आप नाक चिंता ना करो, आधे वोट तो दारू भंग से खींच लाएंगे, बाकी आधे लाठी के जोर से। इस जमुनिया को वोट देगा कौन?
1: बिल्कुल
2: रहे लोग कमल जट्टा पाली पर आ जाएंगे। आप तो बस अब सबसे मीठा मीठा बोलते रहिए, गुस्सा करने की जरूरत नहीं है।
1: ये ज्यादा समझाओ मत हमें। हाँ अरे अपने काम से काम रखो, समझ गए?
2: जी।

0: मीडियम वेव 188.32 मीटर अर्थात 1593 किलोहर्ट्ज़, साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल पर ये आकाशवाणी भोपाल है। अब हमारी ये सभा मीडियम वेव पर आरंभ होती है, कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा करें। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, शाम के 5 बजे हैं और लीजिए प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को सुबह 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 137वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। सरकार ने कहा है कि देश में चीनी की कोई कमी नहीं है और उचित कीमतों पर पर्याप्त मात्रा में चीनी उपलब्ध कराने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जाएंगे। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने बताया कि हाल के दिनों में चीनी मिलों से बाहर चीनी की कीमतों में लगभग 20% की गिरावट आई है, जबकि खुदरा चीनी की कीमतें भी कम होने लगी हैं। देश और प्रदेश में रक्षाबंधन का पर्व आज हर्षोल्लास और पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ मनाया जा रहा है। बहनें भाइयों की कलाई पर रंग बिरंगी राखी बांधती हैं और उनकी खुशहाली, सेहत और समृद्धि के लिए प्रार्थना करती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में जन धन योजना के अभूतपूर्व परिवर्तनकारी परिणामों का प्रभाव बेमिसाल है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि जन धन योजना वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और देश के लोगों को सक्षम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है और भारत के लिए भाला फेंक स्पर्धा में ओलंपिक में स्वर्ण और रजत पदक जीतने वाले नीरज चोपड़ा ने 2026 डायमंड लीग फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। प्रतियोगिता अगले महीने ब्रुसेल्स में आयोजित होगी। नीरज ने रैंकिंग में 12 अंक हासिल किए। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, लीजिए प्रस्तुत है युवा साथियों का विशेष कार्यक्रम युववाणी। ये आकाशवाणी छतरपुर की प्रस्तुति है।

विद्या ददाति विनयम्, विनयाद याति पात्रताम्, पात्रत्वाद धनमापनोति, धनाद धर्मम् ततः सुखम्। अर्थात विद्या विनय देती है, विनय से पात्रता आती है, पात्रता से धन मिलता है, धन से धर्म होता है और

धर्म से सुख। साथियों, संस्कृत के इसी श्लोक के साथ स्वागत है आपका आपके मनपसंद कार्यक्रम युववाणी में। आज के कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ आपका मित्र पीयूष चतुर्वेदी। तो साथियों, स्वीकार कीजिए मेरा नमस्कार। साथियों, हमारे कार्यक्रम की आज की पहली चर्चा का विषय है रक्षाबंधन पर्व। तो साथियों, सबसे पहले आप सभी को रक्षाबंधन के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, इस चर्चा की शुरुआत करते हैं उस पवित्र मंत्र से जो राखी बांधते समय बोला जाता है। ये मंत्र है, येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वाम प्रतिबद्ध नामी रक्षे माचल माचलः। इसका सरल भाव है, जिस रक्षा सूत्र से महाबली और परम दानवीर राजा बलि को बांधा गया था, उसी पवित्र सूत्र से मैं तुम्हें बांधता हूँ। हे रक्षे, तुम कभी विचलित ना होना, अपने रक्षा के संकल्प पर सदैव अडिग रहना। साथियों, रक्षा सूत्र के केवल एक धागा नहीं बल्कि एक संकल्प है, एक दूसरे की रक्षा और सुख दुख में साथ निभाने का। साथियों, रक्षाबंधन श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। रक्षाबंधन का अर्थ है सुरक्षा का पवित्र बंधन। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधकर उसके दीर्घायु और सुखी जीवन की कामना करती है और भाई जीवन भर उसकी रक्षा और सम्मान का वचन देता है। लेकिन ये पर्व केवल भाई बहन तक सीमित नहीं है, ये हर उस रिश्ते का उत्सव है जिसमें प्रेम, विश्वास और एक दूसरे के प्रति जिम्मेदारी का भाव हो। इतिहास में भी इस पर्व की गहरी जड़ें देखने को मिलती हैं। कहा जाता है कि जब श्री कृष्ण की कलाई से रक्त बह रहा था, तब द्रौपदी ने अपनी साड़ी का टुकड़ा फाड़कर उनकी कलाई पर बांध दिया था। उसी प्रेम के बदले श्री कृष्ण ने द्रौपदी के चीरहरण के समय उनकी रक्षा की। ये कहानी हमें सिखाती है कि रक्षा का बंधन केवल शब्दों का नहीं बल्कि कर्मों का होता है। साथियों, आज के समय में ये पर्व और भी व्यापक हो गया है। बहनें केवल भाइयों को ही नहीं बल्कि सीमा पर तैनात सैनिकों, समाज सेवियों और देश की रक्षा करने वाले हर व्यक्ति को राखी बांध कर उनका सम्मान करती हैं। यही तो इस पर्व की सुंदरता है, जो हमें सिखाती है कि रक्षा केवल शरीर की रक्षा नहीं होती बल्कि किसी के दुख में साथ होना, किसी की मर्यादा की रक्षा करना और किसी के विश्वास को टूटने से बचाना भी रक्षा ही है। इसलिए इस रक्षा बंधन पर आइए हम सब एक छोटा सा संकल्प लें। हम अपने रिश्ते की रक्षा करेंगे, अपनी बहन बेटियों का सम्मान करेंगे और समाज में प्रेम और सद्भावना का बंधन बनाए रखेंगे। राखी का ये छोटा सा धागा हमें याद दिलाता है कि जीवन में पवित्र रिश्तों से बड़ा कोई धन नहीं होता है। तो साथियों, रक्षा बंधन के इस पावन अवसर पर एक बार फिर से हमारे सभी भाई बहनों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। और अब आपको ले चलते हैं गीत संगीत की ओर और सुनवाते हैं ये मधुर गीत।

0: साथियों, अभी आप सुन रहे थे बेईमान फिल्म का ये गीत, जिसमें आवाज थी लता मंगेशकर और मुकेश की, गीतकार थे वर्मा मलिक, संगीतकार थे शंकर जयकिशन। साथियों, कार्यक्रम में आगे चलते हुए हमारी आज की अगली चर्चा का विषय है विश्व संस्कृत दिवस। साथियों, हर वर्ष श्रावण मास की पूर्णिमा को विश्व संस्कृत दिवस मनाया जाता है। संस्कृत को देववाणी कहा जाता है, अर्थात देवताओं की भाषा। ये केवल एक भाषा नहीं बल्कि हमारी संस्कृति की आत्मा है। वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, श्रीमद् भगवद गीता, ये सभी महान ग्रंथ संस्कृत में ही लिखे गए हैं। विश्व की प्राचीनतम भाषाओं में संस्कृत का स्थान सर्वोत्तम माना जाता है। साथियों, कुछ लोग सोचते हैं कि संस्कृत बहुत कठिन है, लेकिन सच तो ये है कि रोज बोलने वाली हिंदी, मराठी, गुजराती, बांग्ला आदि भाषाओं की जड़ें संस्कृत में ही हैं। जैसे माता, पिता, जल, फल, हस्त, कर्ण, ऐसे अनेक शब्द हम बिना जाने संस्कृत से ले रहे हैं। यानी संस्कृत हमसे दूर नहीं, हमारे भीतर ही बसी हुई है। आधुनिक विज्ञान भी संस्कृत की वैज्ञानिकता को मानता है। पाणिनि का व्याकरण इतना सटीक और तर्कसंगत है कि भाषा वैज्ञानिक आज भी चकित हैं। यहाँ तक कहा जाता है कि संस्कृत का व्याकरण कंप्यूटर विज्ञान और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए भी उपयोगी हो सकता है। संस्कृत का अध्ययन करने से स्मरण शक्ति बढ़ती है, एकाग्रता आती है और उच्चारण शुद्ध होता ही है। संस्कृत के श्लोक हमें जीवन जीने की कला सिखाते हैं, जैसे वसुधैव कुटुम्बकम, अर्थात सारा संसार एक परिवार है। सत्यमेव जयते, अर्थात सत्य की ही विजय होती है। ये केवल शब्द नहीं जीवन के मूल मंत्र है। इसलिए साथियों, इस विश्व संस्कृत दिवस पर हम सब ये संकल्प लें कि हम संस्कृत को अपनाएंगे और हमारी संस्कृति को और अधिक समृद्ध बनाएंगे। तो साथियों, ये तो हमने आपसे बात की विश्व संस्कृत दिवस के बारे में, और अब आपको सुनवा देते हैं वार्ता मेहंदी, जिसमें वार्ताकार होंगी मीनाक्षी राजे।
1: मेहंदी का नाम सुनते ही सभी स्त्रियों के जेहन में उसका रंग और खुशबू उभर आती है। मेहंदी सदियों से हमारी भारतीय संस्कृति में रची बसी है। मेहंदी 16 श्रृंगारों में से एक है, इसे हिना भी कहते हैं। श्रृंगार प्रसाधनों में मेहंदी का अपना स्थान है। गली मोहल्लों में हर त्योहारों पर मेहंदी की धूम रहती है। हर व्रत त्योहार में मेहंदी लगाने का चलन है। अलग अलग डिजाइन और पैटर्न की मेहंदी लगवाती हैं महिलाएं व लड़कियां। शादी विवाह सगाई में शगुन की मेहंदी लगाई जाती है। करवा चौथ, शादी उत्सव, त्योहार, हर मौसम में मेहंदी लगाई जाती है। हर वर्ग व हर धर्म की महिलाएं मेहंदी लगाती हैं और अपनी सुंदरता में चार चांद लगाती हैं मेहंदी से। मेहंदी अन्य सौंदर्य प्रसाधनों से सस्ती मिलती है और कुछ समय तक हथेलियों पर टिकी हुई रहती है। हमारे हिंदू धर्म में नागपंचमी के दिन मेहंदी लगाने का रिवाज है। कहा जाता है कि नागपंचमी के दिन लगी मेहंदी का रंग यदि नाखून पर दीपावली के दिए में देखा जाए तो उस व्यक्ति को सर्प नहीं काटता। इसीलिए नागपंचमी के दिन सभी मेहंदी लगाते हैं। पहले मेहंदी के पत्तों को पीस कर हथेलियों पर गोल गोल डिजाइन बनाती थी स्त्रियाँ, क्योंकि बारीक डिजाइन बनाना उस समय मुश्किल होता था पत्तियों से। लेकिन पत्तियों का रंग बहुत सुंदर आता था हथेलियों पर। फिर हथेली पर गुनगुनी मोम से डिजाइन बनाने लगी। फिर पीछे मेहंदी के पत्ते रखे जाते जिससे खूबसूरत डिजाइन हाथों पर आ जाता। कभी कभी भिंडी से भी डिजाइन बनाई जाती हथेलियों पर, जो बहुत ही सुंदर दिखती थी। है ना कमाल की डिजाइन बनाने का पहले की स्त्रियों का तरीका। हमारी भारतीय फिल्मों में और टीवी सीरियल्स में भी मेहंदी को तरजीह दी है। अधिकांश फिल्मों व सीरियल्स में मेहंदी पर फिल्माए गए गानों को आसानी से देख सकते हैं और इन गानों को हम अपनी मेहंदी की रस्म पर गा व नाच कर खुशी मनाते हैं शादी विवाह में। मेहंदी को खुशी से जोड़ा जाता है। प्यार और स्नेह को दर्शाने के लिए लड़कियां अपनी हथेलियों पर अपने प्यार व पति का नाम लिखवाती हैं। जिसका जितना अच्छा रंग चढ़ता है उस

काफ़ी चर्चित गाने हैं जो मेहंदी पर लिखे व फिल्माए गए हैं। कहीं ना कहीं भारतीय समाज में नारी को मेहंदी से जोड़ा जाता है, जैसे वह पिसकर घुटकर अपने रंग से सबका मन मोह लेती है, अपनी खुशबू से दिल जीत लेती है। उसी तरह घर की महिलाओं को भी सब कुछ सहन कर हमेशा खुश रहने व सबके दिल को जीतने की और अपने परिवार को अपने स्नेह के रंग में रंगने की सीख दी जाती है। मेहंदी एक औषधीय पौधा भी है। इसका उपयोग बालों को मजबूती देने के लिए भी किया जाता है। इससे बालों में अच्छा कलर भी आता है। यह सौंदर्य निखारने के लिए तो उपयोग में लाई जाती है, साथ ही साथ इसे औषधि के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। जिन लोगों को हाथ पैरों में जलन की शिकायत होती है, उन्हें मेहंदी के पत्तों को पीसकर हथेलियों व तलवों में लगाना चाहिए, जिससे जलन शांत होती है। कुछ महिलाओं व पुरुषों को सिर दर्द व माइग्रेन की शिकायत होती है, उन्हें सिर में मेहंदी लगाने से ठंडक मिलती है व सिर दर्द में आराम भी मिलता है। और जिन्हें नींद न आने की बीमारी होती है, उन्हें मेहंदी के फूल सिर के नीचे रखे जाते हैं, जिससे नींद भी आती है, उससे उन्हें बड़ा आराम लगता है। आजकल बाजारों में मेहंदी के गुणों से भरपूर शैम्पू व तेल आसानी से उपलब्ध हैं, जिनका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। मेहंदी, रीठा व शिकाकाई को दही के साथ मिलाकर एक पैक बनाया जाता है, जिसे बालों में एक घंटे को लगाकर सादे पानी से धो देना चाहिए, जिससे बालों की कई समस्याएं दूर होती हैं और बालों में डैंड्रफ, बालों का झड़ना, डलनेस सभी दूर होकर बाल मजबूत बनेंगे। आज के समय में बालों को कलर करना जोरों पर है। क्या बच्चे और क्या बूढ़े सभी बालों में मेहंदी लगाते हैं। मेहंदी से बालों में चमक आ जाती है व जड़ों से मजबूत भी हो जाते हैं, खूबसूरत रंग भी आ जाता है। इसी वजह से सभी मेहंदी का उपयोग करने लगे हैं। मेहंदी से जुड़ा एक और तथ्य है हमारे समाज का, जिसमें विधवा स्त्रियों में से मेहंदी लगाने का हक छीन लिया जाता है और छोटी छोटी खुशियों से उन्हें महरूम रखा जाता है। यह हमारे भारतीय समाज की विडंबना ही है कि मेहंदी को भी शगुन या अपशगुन से जोड़ा जाता है। हमारे समाज के बड़े कठोर और कड़े नियम बनाए जाते थे समाज में रहने वालों के लिए, विशेषकर महिलाओं के लिए। मेहंदी लगाने का, श्रृंगार करने का हक केवल सुहागिनों को ही दिया जाता है। जिन स्त्रियों का सुहाग उनसे बिछड़ जाता है, उन्हें समाज के कड़े कायदे कानून का सामना करना पड़ता है। उनकी स्वतंत्रता छीन ली जाती है, उन्हें श्रृंगार और मेहंदी जैसी छोटी छोटी खुशियों से वंचित कर दिया जाता है। यह सब अज्ञानता व अंधविश्वास का ही नतीजा है, जो अभी भी हमारे समाज को कहीं ना कहीं जकड़े हुए है, जिसे सिर्फ शिक्षा से ही दूर किया जा सकता है। और उन स्त्रियों को फिर से जीने का और श्रृंगार करने का हक दिया जाना चाहिए, मेहंदी रचाने का हक दिया जाना चाहिए, और इसका हक उन्हें खुद ही दिया जाना चाहिए, क्योंकि किसी के मेहंदी लगाने या ना लगाने से कोई शगुन या अपशगुन नहीं होता। उन्हें भी तो अपनी खुशियां जीने का पूरा अधिकार है। मेहंदी के अनेकानेक डिजाइन हाथों पर लगाकर इतराती हैं लड़कियां। तरह तरह के डिजाइन, जैसे राजवाड़ी डिजाइन की मेहंदी, अरेबियन मेहंदी का डिजाइन, फूल बूटे, दूल्हा दुल्हन का अक्स आदि कई डिजाइन बनाई जाती हैं, जो रंग आने पर और भी निखर कर आती हैं हथेलियों पर। आजकल हर घर में कोई ना कोई तो मेहंदी लगाना, डिजाइन बनाना जानता ही है। और यदि आपसे मेहंदी लगाती नहीं बनती है तो कोई बात नहीं, जगह जगह ब्यूटी पार्लर खुले हैं। हर गली मोहल्लों में आप चाहे ब्राइडल मेहंदी लगवाएं या अरेबियन मेहंदी हथेलियों पर लगवाएं या फिर पैरों में या अपने बालों में कलर करवाएं, मेहंदी लगाने के लिए एक्सपर्ट मौजूद हैं पार्लरों में। मेहंदी से कई बेरोजगारों को काम भी मिला है, जो कि दूसरे व्यवसायों से अच्छा व कम मेहनत का है, जिसमें पैसा भी खूब है। इसके लिए आपको क्रिएटिव होना चाहिए, ताकि आप कम से कम समय में अधिक डिजाइन बना सकें। आजकल मेहंदी की जगह टैटू ने भी ले ली है, पर फिर भी मेहंदी का अपना अलग स्थान है। मेहंदी से भी कई तरह के टैटू वाले डिजाइन भी बनाए जा सकते हैं। आजकल बाजार में ज्वेल्ड मेहंदी भी लगाई जाने लगी।

0: हैं जिसमें मेहंदी के कोन से पसंदीदा डिज़ाइन बनाकर उसमें चमकीले ग्लिटर से रंग भरा जाता है और नग व कलरफुल स्टोन भी चिपकाए जाते हैं जो देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। कुछ लड़कियां इसी तरह बाजूबंद भी बनवाती हैं जो बहुत खूबसूरत दिखता है। यह बहुत ही प्यारा पौधा है जिसकी पत्तियाँ बड़ा ही अच्छा रंग और भीनी खुशबू छोड़ती हैं हथेलियों पर, जिससे हथेलियाँ सुंदर व नर्म हो जाती हैं। मेहंदी से तो सभी को खुशी मिलती है, चाहे वह अमीर हो या गरीब, सभी पर समान रंग बिखेरती है। इसीलिए सभी को मेहंदी इस्तेमाल करनी चाहिए, चाहे वह हथेलियों पर लगाएं, पैरों पर या बालों में कलर के लिए, या फिर मेहंदी से टैटू बनवाएं फैशन के लिए। मेहंदी के हर रंग से जरूर खुशनुमा बनाएं अपनी जिंदगी।
1: साथियों, अभी आप सुन रहे थे वार्ता मेहंदी, जिसमें वार्ताकार थी मीनाक्षी राजे। साथियों, कार्यक्रम में आगे चलते हुए हमारी आज की अगली चर्चा का विषय है ऐतिहासिक स्थल महाबोधि मंदिर। साथियों, बिहार के गया जिले में स्थित ये मंदिर विश्व के सबसे पवित्र बौद्ध तीर्थ स्थलों में से एक है। महाबोधि का अर्थ है महान ज्ञान या आत्मज्ञान। कहते हैं कि आज से लगभग 2500 वर्ष पहले राजकुमार सिद्धार्थ ने निरंजना नदी के किनारे एक पीपल के वृक्ष के नीचे कठोर तपस्या की थी। वैशाख पूर्णिमा की रात उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त हुआ और वे गौतम बुद्ध कहलाए। वही पीपल का वृक्ष आज बोधि वृक्ष के नाम से प्रसिद्ध है और उसी स्थान पर यह भव्य महाबोधि मंदिर खड़ा है। इस मंदिर का इतिहास भी बहुत गौरवशाली रहा है। सम्राट अशोक ने ईसा पूर्व 3री शताब्दी में यहाँ सर्वप्रथम एक स्तूप और वज्रासन का निर्माण कराया था। बाद में गुप्तकाल में 5वीं-6ठी शताब्दी में मंदिर का वर्तमान भव्य स्वरूप बनाया गया। वास्तुकला की दृष्टि से ये मंदिर भारत के प्राचीनतम ईंट निर्मित मंदिरों में से एक है। इसका मुख्य शिखर लगभग 55 मीटर ऊंचा है, जो दूर से ही श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। मंदिर के भीतर भगवान बुद्ध की एक विशाल स्वर्ण मूर्ति है, जो भूमि स्पर्श मुद्रा में विराजमान है, अर्थात बुद्ध का एक हाथ धरती की ओर, जो ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक है। मंदिर के पीछे स्थित बोधि वृक्ष के नीचे लाल बलुआ पत्थर का वह वज्रासन आज भी है, जहाँ बैठकर बुद्ध ने ध्यान लगाया था। वर्ष 2002 में यूनेस्को ने महाबोधि मंदिर को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। आज ये मंदिर केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के करोड़ों बौद्ध अनुयायियों के लिए आस्था का केंद्र है। यहाँ जापान, थाईलैंड, म्यांमार, भूटान आदि देशों ने अपने अपने मठ और विहार बनाए हैं। साथियों, महाबोधि मंदिर सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि शांति, करुणा और अहिंसा का जीवंत संदेश है। ये हमें सिखाता है कि सच्चा ज्ञान बाहर नहीं हमारे भीतर है। तो साथियों, ये तो हमने आपसे चर्चा की ऐतिहासिक स्थल महाबोधि मंदिर के बारे में, और अब आपको एक बार फिर से ले चलते हैं गीत संगीत की ओर और सुनवाते हैं ये प्यारा सा गीत।

साथियों, अभी आप सुन रहे थे शागिर्द फिल्म का ये गीत, जिसमें आवाज थी मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की, गीतकार थे मजरूह, संगीतकार थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। तो साथियों, कार्यक्रम में आगे चलते हुए हम दे देते हैं आपको हमारी आज की महत्वपूर्ण रोजगार सूचना। RRB यानी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड योग्य उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है। पद का नाम है जूनियर इंजीनियर, पदों की संख्या है 4029। शैक्षणिक योग्यता में संबंधित विषय में 3 वर्षीय इंजीनियरिंग डिप्लोमा या इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए। आयु सीमा न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 33 वर्ष है। आयु सीमा में छूट नियमानुसार दी जाएगी। आवेदन की अंतिम तिथि 15 सितंबर 2026 है। अधिक जानकारी के लिए आप इनकी आधिकारिक वेबसाइट www.rrb.indianrailways.gov.in पर विजिट कर सकते हैं। तो साथियों, इसी के साथ अब वक्त हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो अनुमति दीजिए अपने मित्र पीयूष चतुर्वेदी को। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे युवा साथियों का विशेष कार्यक्रम युववाणी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी छतरपुर की प्रस्तुति थी। हमारा अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में होगा, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी। फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: नमस्कार, मैं राजीव वर्मा स्वच्छता ही सेवा अभियान से जुड़ा हुआ हूं और आप सभी से गुजारिश करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप भी इससे जुड़ें और अपने कार्यालय, घर, कॉलोनी, मोहल्लों को स्वच्छ रखें। धन्यवाद। जय हिंद।
3: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। हमारा अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में होगा, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: हेलो
3: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
2: फिर से
4: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
5: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
2: सर इतने कहाँ से?
5: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
2: सर 2 लाख
6: क्या हुआ पापा?
2: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं। काट दिया।
6: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
2: फ्रॉड?
6: पुलिस, बैंक, आरबीआई इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
2: तो पैसे गवाओगे।
7: आरबीआई कहता है,
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं।
0: आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

प्रीतम का संगीत इरशाद कामिल के लिखे बोल, नीरज श्रीधर और कविता सेठ की आवाज में गीत सुना आपने फिल्म कॉकटेल से। कार्यक्रम का अगला गीत आपके लिए प्रस्तुत है सुनिधि चौहान और नीरज श्रीधर की आवाज में फिल्म लव आजकल से।

प्रीतम का संगीत इरशाद कामिल के लिखे बोल, सुनिधि चौहान और नीरज श्रीधर की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म लव आजकल से। कार्यक्रम का अगला गीत आपके लिए प्रस्तुत है विशाल दादलानी की आवाज़ में फिल्म जिंदगी न मिलेगी दोबारा से।

शंकर एहसान लॉय का संगीत, जावेद अख्तर के लिखे बोल, विशाल दादलानी की आवाज में गीत सुना आपने फिल्म जिंदगी ना मिलेगी दोबारा से। कार्यक्रम का अगला गीत प्रस्तुत है आपके लिए दर्शन रावल की आवाज में फिल्म लूडो से।

प्रीतम का संगीत स्वानंद किरकिरे के लिखे बोल दर्शन रावल की आवाज में गीत सुना आपने फिल्म लूडो से। कार्यक्रम का अगला और अंतिम गीत आपको सुनवाते हैं अरिजीत सिंह बादशाह जॉनिता गांधी और नकाश अजीज की आवाज में फिल्म ऐ दिल है मुश्किल से।

0: प्रीतम का संगीत अमिताभ भट्टाचार्य के लिखे बोल अरिजीत सिंह बादशाह जानिता गांधी और नकाश अजीज की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म ए दिल है मुश्किल से। और इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। हमारा अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में होगा, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
3: हर शनिवार शाम 7:45 से आकाशवाणी भोपाल पर सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
4: नमस्कार, मैं राजीव वर्मा स्वच्छता ही सेवा अभियान से जुड़ा हुआ हूं और आप सभी से गुजारिश करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप भी इससे जुड़ें और अपने कार्यालय, घर, कॉलोनी, मोहल्लों को स्वच्छ रखें। धन्यवाद।
5: वायु को प्रदूषित करता है बल्कि ओजोन परत को भी नुकसान पहुंचाता है, तो अभी से करें पॉलीथीन बैग्स को टाटा बाय बाय। खरीदारी के लिए कपड़े का थैला लेकर जाएं। पॉलीथिन बैग्स को हटाना है, धरती को बचाना है। सारा
1: जहां। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट
6: जन तक सपनों को दें हम आकार,
2: आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
0: राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर ताशकंद का दौरा करेंगे। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति मिर्जियोयेव के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत करेंगे। सरकार ने कहा है कि देश में चीनी की कोई कमी नहीं है और उचित कीमतों पर पर्याप्त मात्रा में चीनी उपलब्ध कराने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जाएंगे। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने बताया कि हाल के दिनों में चीनी मिलों से बाहर चीनी की कीमतों में लगभग 20% की गिरावट आई है, जबकि खुदरा चीनी की कीमतें भी कम होने लगी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को सुबह 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 137वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। नेपाल और तिब्बत में विनाशकारी बाढ़ से मृतकों की संख्या बढ़कर 538 हो गई है। 1545 लोग अब भी लापता हैं। राहत और बचाव दल नदी के किनारों और बस्तियों में जीवित बचे लोगों और बाढ़ में बह गए शवों की तलाश कर रहे हैं। और देश और प्रदेश में रक्षाबंधन का पर्व आज हर्षोल्लास और पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ मनाया जा रहा है। बहनें भाइयों की कलाई पर रंग बिरंगी राखी बांधती हैं और उनकी खुशहाली, सेहत और समृद्धि के लिए प्रार्थना करती हैं। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
7: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए प्रस्तुत है एनसीआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का प्यार भरा नमस्कार
0: और अजीत का भी प्यार भरा नमस्कार। आइए सुनते हैं एक सुंदर विचार जो हमें भेजा है राजाजी नगर बेंगलोर से एनआर प्रसाद और अखिला प्रसाद जी ने। लिखते हैं,
2: सफलता उन लोगों का इंतजार करती है जो कठिन परिश्रम करते हैं। मुश्किलें आसान हो जाती हैं जब मुश्किल से ज्यादा मेहनत पर ध्यान देने लगते हैं।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का इतने खूबसूरत विचार को भेजने के लिए। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है गांव गणेश धाम परसुली जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतीम बाई मानिकपुरी। लिखते हैं,
2: उमंग टीम को पल पल बंदगी करते हैं विमलेश मैडम जी और अजीत साहेब जी, जय जोहार। बंदगी जी, जुलाई वाले सप्ताह में गजब का 16वां लघु कथा प्रसंग सुनाया। गौतम बुद्ध की शरण पाकर अंगुलीमाल डाकू का संत बनना, महात्मा गांधी का मितव्ययता प्रसंग, सुभाष चंद्र बोस के देश प्रेम, मिसाइल मैन अब्दुल कलाम, इन सभी संत महापुरुषों का प्रसंग हमें बहुत शिक्षाप्रद और प्रेरणा दिया। इसी तरह नई नई जानकारी मिलती रहे, दिल से धन्यवाद साहेब।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इस खूबसूरत संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी का। लिखते हैं, आजकल मैं उमंग कार्यक्रमों को नहीं सुन पा रहा हूँ, क्या आप मुझे आकाशवाणी के ऐसे केंद्रों की जानकारी दे सकते हैं जो सुबह 7 बजे से पहले या शाम को 7 बजे के बाद उमंग कार्यक्रम का प्रसारण करते हों? मेरा आपसे अनुरोध है कि आप जरूर बताइएगा।
2: योगेश जी, हम प्रयास करेंगे पता करने की, क्योंकि सभी प्रसारण केंद्रों ने अपनी और छात्रों की सुविधा के अनुसार प्रसारण समय तय कर रखा है। हमारी सलाह होगी कि आप इंस्टाग्राम ऐप अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लें और सीआईटी एनसीईआरटी को फॉलो करें। प्रतिदिन के कार्यक्रमों के लिंक आपको वहां मिल जाएंगे, क्लिक कीजिए और किसी भी समय कार्यक्रम सुनिए।
0: जी, अगला संदेश हमें मिला है बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिंपल दिवांगन जी का।
2: रायगढ़ से गेंदलाल श्रीवास, संतोष श्रीवास और कृष्ण कुमार यादव।
0: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं आप सबके संदेशों के लिए। आइए एक बार फिर से चलते हैं हमारी ज्ञान यात्रा में, यानी ये भी जानिए श्रृंखला की अगली कड़ी में।
2: जी,
0: तो विमलेश जी शुरुआत की जाए। हमारा कल का विषय था जहाँ बारिश भी रुकना भूल जाती है।
2: जी,
0: तो हमारा आज का विषय क्या होगा?
2: अजीत जी, हमारा आज का विषय होगा जहाँ सूरज भी परीक्षा लेता है।
0: वाह, जहाँ सूरज भी परीक्षा लेता है।
2: आज हम बात करेंगे राजस्थान के कुछ ऐसे गांवों की जहाँ गर्मी केवल मौसम नहीं बल्कि जीवन का एक हिस्सा है।
0: जी हाँ श्रोताओ, कल्पना कीजिए, आसमान बिल्कुल साफ है, सूरज सिर के ठीक ऊपर है, हवा चल रही है लेकिन वह ठंडी नहीं है, बहुत गर्म है।
2: जी,
0: धरती इतनी तप रही है कि दोपहर में बाहर निकलना भी किसी परीक्षा से कम नहीं है।
2: हम बात कर रहे हैं राजस्थान के पश्चिमी रेगिस्तानी इलाके की, जहां फलौदी और उसके आसपास के गांवों में गर्मियों के दिनों में तापमान बेहद ऊंचा पहुंच जाता है, 50 से 52 डिग्री सेल्सियस।
0: जी हाँ श्रोताओ, आप कल्पना कर सकते हैं कि यहाँ का मौसम कैसा होता होगा। श्रोताओ, यहाँ की सुबह हमारी सुबह से बहुत अलग होती है।
2: जी हाँ श्रोताओ, जब दिल्ली या किसी दूसरे शहर में लोग सुबह की ठंडी हवा का आनंद लेते हैं, राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में गर्मी सवेरे ही शुरू हो जाती है और लोग जानते हैं कि दिन चढ़ने के साथ गर्मी लगातार बढ़ती चली जाएगी।
0: इसे श्रोताओ, बहुत से काम वहाँ सुबह ही जल्दी निपटा लिए जाते हैं, जैसे पशुओं को चारा देना हो, पानी भरना हो, खेत या घर या कोई जरूरी काम हो।
2: जी,
0: यहाँ लोग पूरी कोशिश करते हैं कि ये काम सूरज के तेज होने से पहले पूरे हो जाएं।
2: बिल्कुल अजीत जी, क्योंकि वहाँ केवल ये सवाल नहीं होता कि आज कितना काम करना है, सवाल ये भी होता है कि काम किस समय करना है।
0: जी हाँ, तो विमलेश जी जरा दोपहर की बात भी तो कीजिए।
2: यहाँ दोपहर में गर्मी इतनी बढ़ सकती है कि बाहर का काम कम करना ही समझदारी होती है, इसलिए गाँव में पुराने समय से ही लोग गर्मी से बचने के लिए अपने पारंपरिक तरीके विकसित करते आए हैं,
0: जैसे मोटे दीवारों वाले घर।
2: जी,
0: छायादार आंगन, हवादार कमरे।
2: जी,
0: और खिड़कियों पर पर्दे। वे कोशिश करते हैं कि उन्हें किसी तरह से दीवारों या पेड़ों की छाया मिल जाए।
2: जी,
0: क्योंकि रेगिस्तान में छाया केवल आराम ही नहीं देती, वो जीवन का सहारा है।
2: श्रोताओ, यहाँ एक और बड़ी चुनौती है, वो है पानी। सच है, जहाँ बारिश कम हो और गर्मी बहुत अधिक हो, वहाँ पानी की हर बूंद की कीमत समझ में आती है।
0: जी हाँ श्रोताओ, राजस्थान के ग्रामीण जीवन में कुएं, टांके, तालाब और पारंपरिक जल संरक्षण की प्राचीन व्यवस्थाएं सदियों से महत्वपूर्ण रही हैं।
2: जी,
0: यहाँ के लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि आज बचाया हुआ पानी आने वाले दिनों में काम आएगा।
2: यही कारण है श्रोताओं कि यहाँ के रेगिस्तान में रहने वाले लोगों ने पानी को केवल उपयोग की वस्तु नहीं माना, बल्कि उसे संपत्ति और जिम्मेदारी की तरह देखा। तो अजीत जी, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, क्यों न हम प्रकृति से यही पाठ सीख लें?
0: जी हाँ विमलेश जी, आपने ये बड़ी महत्वपूर्ण बात कह दी। और अब बात करते हैं वहाँ के भोजन की। गर्मी और शुष्क वातावरण के कारण राजस्थान का पारंपरिक भोजन भी स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप विकसित हुआ है
2: जी।
0: वैसे विमलेश जी, क्या खाते हैं वहाँ के लोग?
2: अजीत जी, वहाँ बाजरा, ज्वार जैसे मोटे अनाज, दालें, सब्जियां और लंबे समय तक सुरक्षित रखे जा सकने वाले पारंपरिक खाद्य पदार्थ भोजन का महत्वपूर्ण हिस्सा रहे हैं
0: जी। बिल्कुल, इसलिए तो बाजरे की रोटी, दाल और स्थानीय सब्जियां राजस्थान के प्रसिद्ध भोजन का हिस्सा हैं।
2: लेकिन अजीत जी, फिर वही बात जो हमने पिछले कार्यक्रम में कही थी, राजस्थान के इन गांवों की जिंदगी केवल गर्मी और पानी की कहानी नहीं है।
0: यहाँ की सबसे बड़ी खूबी है लोगों की सहनशीलता और अनुकूलन की क्षमता
2: जी,
0: यानी स्वयं को वहाँ के वातावरण में ढालने की क्षमता।
2: रेगिस्तान ने लोगों को सिखाया है कि जो कुछ हम बदल नहीं सकते उसे स्वीकार करके जीवन में प्रसन्न रहना चाहिए
0: जी।
2: कई बार प्रकृति को समझना और उसके अनुसार जीवन बनाना ही बुद्धिमानी है
0: जी। हाँ श्रोताओं, जरा सोचिए, हम शहर में गर्मी कुछ डिग्री बढ़ते ही परेशान हो जाते हैं। एयर कंडीशनर चाहिए, कूलर चाहिए, ठंडा पानी चाहिए।
2: लेकिन राजस्थान के गांवों में न जाने कितनी पीढ़ियों ने सीमित साधनों में जीवन को आगे बढ़ाया है। उन्होंने मिट्टी, पत्थर, हवा, छाया और पानी जैसे प्राकृतिक साधनों को अपने जीवन का हिस्सा बनाया है और शायद यही हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है।
0: क्या सीख विमलेश जी?
2: यही कि जीवन हमेशा हमारी सुविधा के अनुसार नहीं चलता
0: जी।
2: जीवन में भी तो मौसम बदलते हैं, कभी गर्मी आएगी तो कभी बारिश बहुत ज्यादा होगी तो कभी सूखा पड़ेगा, कभी रास्ते कठिन होंगे। लेकिन इंसान की असली ताकत इस बात में है कि वो बदलती परिस्थितियों के साथ खुद को कैसे ढालता है।
0: तो आप सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। हमारा आज का प्रश्न है, राजस्थान के किस गांव और उसके आसपास के क्षेत्रों में सबसे अधिक गर्मी पड़ती है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
2: राजस्थान के किस गांव और उसके आसपास के क्षेत्रों में सबसे अधिक गर्मी पड़ती है?
0: आप अपना उत्तर हमारे टोल फ्री नंबर यानी 8800440559 पर या हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं। तो श्रोताओ, अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की। हमारा पहला कार्यक्रम है तीन बुद्धिमान।
2: ये कार्यक्रम कक्षा 7 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित है।
0: तीन बुद्धिमान।
3: बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में किसी निर्धन व्यक्ति के तीन पुत्र थे, विक्रम, प्रताप और धीरेंद्र। एक दिन उसने अपने तीनों पुत्रों को बुलाया और कहने लगा,
4: मेरे पुत्रों।
5: जी पिताजी।
4: देखो, अब मेरे जीवन का कोई भरोसा नहीं है
5: पिताजी।
4: क्या पता कब लोग सिधार जाऊं।
5: पिताजी ऐसा ना कहिए, अभी आपका जीवन बहुत लंबा है।
4: नहीं विक्रम बेटे, मेरी बात ध्यान से सुनो। हमारे पास ना धन है और ना सोना चांदी। तुम

0: पर दुनिया का कोई धन नहीं हो सकता, और वो है बुद्धिमत्ता।
1: जी पिताजी।
0: हर वस्तु और स्थिति को ठीक ठीक समझने का प्रयास करो।
1: जी पिताजी, हम प्रयास करेंगे।
2: समय बीता और कुछ समय बाद पिता चल बसे। सभी बेटे एक दिन मिलकर बैठे और विचार किया।
3: हमारे लिए यहाँ कुछ भी तो करने को नहीं।
4: हाँ, तुम ठीक कहते हो भैया, तो क्यों ना हम एक काम करें।
1: भला वो क्या?
3: चलो घूम फिर कर जगत देखें, कुछ ज्ञान प्राप्त करें। पिताजी कहते थे ना कि घूमने फिरने से भी जब हम चीजों को स्थितियों को देखते हैं तो ज्ञान बढ़ता है।
4: हाँ, ये ठीक रहेगा भैया।
2: तीनों भाई चल दिए। लंबी यात्रा थी। खाने पीने का सामान जब समाप्त हो गया तो उन्होंने रास्ते में पड़ने वाले गांव के खेतों में मेहनत मजदूरी की। रास्ते में वे जो कुछ भी देखते बड़े ध्यान से उसका अवलोकन करते और निष्कर्ष निकालते। चलते चलते वे अंत में किसी नगर के पास पहुंचे। नगर के पास एक मैदान था जिसकी मिट्टी रेतीली थी। सबसे बड़ा भाई चलते चलते रुक गया। उसने ध्यान से मिट्टी को देखा और बोला,
3: भाई प्रताप, मुझे लगता है कि यहाँ से कोई ऊंट गुजरा है।
5: जी भैया, और वो भी बड़ा वाला ऊंट। पैर के चिन्हों से तो यही लगता है, क्यों भाई धीरेंद्र?
1: जी भैया, आप ठीक कह रहे हैं।
3: मुझे लगता है कि ऊंट के साथ एक महिला और एक बच्चा था।
2: वे बातचीत कर ही रहे थे कि एक घुड़सवार उनके पास आकर रुका।
3: महाशय, क्या आप कुछ ढूंढ रहे हैं?
5: हाँ, आपका ऊंट खो गया है ना?
1: हाँ, मेरा ऊंट खो गया है। हमें सब पता है महाशय, आपका ऊंट एक आंख से देख नहीं पाता है ना?
6: हाँ हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता?
3: महाशय, हमें तो ये भी पता है कि उस ऊंट के साथ एक महिला और एक बच्चा भी था।
6: हैं?
3: आप सीधा उत्तर दिशा की ओर जाएं, आपको वहाँ ऊंट मिल जाएगा।
6: ऊंट मिल जाएगा? अरे ऊंट तुम लोगों के ही पास है।
1: नहीं नहीं,
6: अरे
1: नहीं,
6: उसे कहाँ छिपा के रखा है?
1: अरे महाशय, हमने तो ऊंट का मुंह तक नहीं देखा।
6: ऊंट का मुंह तक नहीं देखा?
1: नहीं,
6: तो तुम्हें उसके बारे में सारी बातें पता कैसे चली?
1: वो
6: देखो, मेरा ऊंट मुझे लौटाओ।
1: लेकिन
6: अरे, अरे तुम लोग ठग मालूम होते हो।
1: क्या?
6: मैं कुछ भी सुनने को तैयार नहीं हूँ।
2: भाइयों ने बहुत समझाया, लेकिन वो घुड़सवार सुनने को तैयार ही नहीं था।
6: मुझे कुछ नहीं सुनना।
1: लेकिन महाशय, हमारी बात सुन ले महाशय।
6: ये निकाली मैंने अपनी तलवार, अब चलो मेरे आगे आगे चलो। चलो चलो।
2: इसी बीच उसका भाई भी आ गया। घुड़सवार ने अपने भाई को ऊंट ढूंढने के लिए भेज दिया और तलवार के बल पर उन्हें राजा के पास ले गया।
6: अब तुम सब राजा के पास चलो।
7: दुहाई है महाराज, इन लोगों ने मेरा ऊंट चुराया है, मुझे न्याय चाहिए महाराज।
3: राजन, हम चोर नहीं है, हमने तो ऊंट का मुंह तक नहीं देखा।
8: तुम्हें कैसे पता कि ऊंट इन लोगों ने ही चुराया है? ये तो कहते हैं कि इन्होंने ऊंट को देखा तक नहीं।
7: महाराज, यदि ये कहते हैं कि इन्होंने ऊंट को देखा तक नहीं, तो ऊंट के बारे में मुझे इन्होंने सब कुछ बता कैसे दिया?
8: तुम लोगों को कुछ कहना है?
1: राजन, हमें ऐसी आदत पड़ गई है कि कुछ भी अपनी दृष्टि से चूकने नहीं देते। हमने परिवेश को समझने में बहुत समय लगाया है, इसलिए बिना देखे ही हमने सब कुछ बता दिया।
8: अच्छा, तो ये बात है।
1: जी,
8: हम अभी तुम्हारी सच्चाई की जांच कर लेते हैं।

0: द्वारपाल
1: जी महाराज।
2: राजा ने अपने द्वारपालों को बुलाया और उनके कान में कुछ फुसफुसाकर कहा। थोड़ी ही देर में द्वारपाल एक पेटी लेकर आए और उसे राजा के सामने रख दी।
0: अब बताओ कि इस पेटी में क्या रखा है।
3: महाराज, इस पेटी में कोई गोल वस्तु है, अनार है।
4: और महाराज, वो अनार कच्चा है।
2: जब पेटी खोली गई तो उस पेटी में सचमुच कच्चा अनार रखा था। बात बिल्कुल सही थी। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने उनके लिए स्वादिष्ट व्यंजन मंगवाए और लगा उनकी आवभगत करने।
5: खाइए खाइए, लीजिए।
6: महाराज धन्यवाद।
2: फिर पूछा,
0: तो मुझे ये बताओ कि तुम्हें पता कैसे चला कि पेटी में अनार है।
7: महाराज, जब वे पेटी रख रहे थे तो अंदर से किसी चीज के लुढ़कने की आवाज आई। हम समझ गए कि ये कोई गोल वस्तु है।
4: और महाराज, हमने ध्यान दिया कि द्वारपाल किधर जा रहे हैं। वे आपके राज उद्यान की ओर जा रहे थे, जहाँ अनार के बहुत सारे वृक्ष लगे हुए हैं।
8: और महाराज, अभी अनार पकने का समय ही नहीं आया तो हमने जान लिया कि अनार कच्चा है।
0: वाह, बहुत खूब।
2: राजा बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन उसकी उत्सुकता बढ़ती ही जा रही थी। उसने फिर पूछा,
0: तो अब ये बताओ कि तुमने ऊंट के बारे में बिना देखे कैसे जान लिया।
4: महाराज, वहां पर मिट्टी भुरभुरी थी। हमने ऊंट के पद चिन्हों से जान लिया कि ऊंट बड़ा है।
0: क्या बात।
7: महाराज, उस मिट्टी पर जूतों के निशान थे। ये जूते महिला के थे और साथ ही साथ छोटे छोटे पैरों के निशान भी थे।
0: अच्छा,
7: इससे हमने जान लिया कि महिला के साथ कोई बच्चा भी है।
0: जी बहुत खूब। लेकिन तुमने ये कैसे जाना कि ऊंट एक आंख से ही देख पाता है।
8: राजन, इसका पता लगाना तो बहुत ही आसान था। सड़क की दाहिनी ओर की घास तो ऊंट ने चरी थी, लेकिन बाई ओर की घास जो कि त्यों थी।
0: उत्तम, अति उत्तम। वाह, तुम लोगों की बुद्धि श्रेष्ठ है।
4: धन्यवाद महाराज।
7: जी महाराज, शुक्रिया महाराज।
0: मैं सचमुच चकित हूँ।
7: जी महाराज।
2: फिर क्या था, राजा ने तीनों भाइयों को अपने दरबार में रख लिया और उन्हें महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त कर दिया।
9: श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम तीन बुद्धिमान। आशा है कि आपको ये कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा। और अब सुनते हैं कार्यक्रम सरला ठकराल, भारत की पहली महिला पायलट।

0: सफलता की बुलंदियों को सभी छूना चाहते हैं, कामयाबी सभी हासिल करना चाहते हैं,
1: लेकिन कामयाबी उन्हीं के कदमों को चूमती है जो दृढ़ संकल्प और कठोर परिश्रम के साथ अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहते हैं।
0: आज हम बात करेंगे एक ऐसी शख्सियत के बारे में जो अपनी लगन और कार्यनिष्ठा से लाखों करोड़ों लोगों की और विशेषकर महिलाओं की प्रेरणा स्रोत बन गईं।
1: वे हैं सरला ठकराल, जिन्हें सन 1936 में मात्र 22 वर्ष की आयु में भारत की पहली महिला पायलट यानी विमान चालक बनने का श्रेय प्राप्त है।
0: भारतीय उड्डयन के इतिहास की बात करें तो अनेक महिलाएं हैं जिनका नाम उल्लेखनीय है, लेकिन वो प्रथम महिला कौन है जिन्होंने सबसे पहले इन सब के लिए मार्ग बनाने की शुरुआत की? जी हां, उनका नाम है सरला ठकराल। उनका जन्म 8 अगस्त सन 1914 को दिल्ली में हुआ था। तब भारत में ब्रिटिश

0: राज था। 16 वर्ष की आयु में उनका विवाह लाहौर निवासी श्री पीडी शर्मा से हुआ। विवाह के बाद वो अपने पति के साथ लाहौर चली गईं। सरला के परिवार की एक बात बहुत दिलचस्प थी और वो ये कि उनके परिवार में 9 लोग ऐसे थे जिनका संबंध सीधा उड्डयन से था। पति भी अक्सर सरला को प्रोत्साहित करते। सरला को प्रशिक्षण दिलाने का बीड़ा उठाया उनके ससुर श्री के एस शर्मा जी ने। एक दिन की बात है,
1: सरला सरला बेटी, सरला बेटी।
2: अरे बाबूजी, आप
3: कहां खोई हो बेटी?
2: आप
3: जरा मैं भी तो जानूं कि क्या सोच रही है मेरी बेटी।
2: जी मैं सोच रही थी कि मैं भी खाली समय में कुछ कर लेती।
3: बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं बेटा। एक बात कहूं?
2: जी
3: बेटा, मैंने अक्सर देखा है जब भी हम हवाई जहाज की उड़ान की पायलटों की बात करते हैं तो तुम बड़े शौक से सुनती हो।
2: जी बाबूजी, मुझे ये सब सुनना बहुत अच्छा लगता है।
3: तो फिर देर किस बात की, लाहौर फ्लाइंग क्लब के प्रमुख मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं।
2: अच्छा,
3: मैं उनसे कल ही बात करूंगा।
2: पर
3: मुझे लगता है तुम्हें वहाँ से पायलट बनने की ट्रेनिंग लेनी चाहिए।
2: लेकिन बाबूजी मैं धन्यवाद बाबूजी।
3: ये बात हुई ना बेटा। वेरी नाइस, वेरी नाइस बेटा, वेरी नाइस।
0: साथियों, दूसरे ही दिन श्री शर्मा सरला को फ्लाइंग क्लब ले गए। इसके लिए एक परीक्षा देनी होती थी। सरला शुरू से ही पढ़ाई में कुशाग्र बुद्धि थी। उन्होंने तैयारी की और वे प्रथम प्रयास में ही सफल हो गईं। मेडिकल जांच व अन्य औपचारिकताओं के बाद उनका दाखिला लाहौर फ्लाइंग क्लब में हो गया। और अब शुरू हुआ उनका प्रशिक्षण। आज प्रशिक्षण का पहला दिन था।
4: साथियों, मैं आप सबका लाहौर फ्लाइंग क्लब में डेप्यूटी चीफ फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर की हैसियत से स्वागत करता हूं। सबसे पहले आप सबको बधाई देता हूं पायलट बनने की ट्रेनिंग में चुने जाने के लिए।
5: धन्यवाद सर।
4: देखिए, कुछ मायनों में हमारा ये सत्र पिछले सभी सत्रों से बहुत अलग है। क्या आप बता सकते हैं मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं?
6: सर, मुझे तो सब कुछ वैसा ही लग रहा है।
4: सब कुछ वैसा तो नहीं है, कुछ तो नया है।
7: सर सर, मैं बताऊं सर।
4: हाँ हाँ, कहो कहो।
7: सर, मुझे लगता है पहली बार पायलट की ट्रेनिंग के लिए हमारे बीच एक महिला मित्र हैं।
4: बहुत खूब, पर तुम्हें कैसे पता कि ऐसा पहली बार हुआ है?
7: पिछले सप्ताह एक समाचार पत्र में छपा था।
4: बहुत अच्छे, वेरी वेल ऑब्जर्व। देखिए, पायलट बनने की पहली शर्त है आसपास की बातों का गहराई से अवलोकन करना।
2: हाँ, जी, सही बात।
4: एक पायलट को हमेशा सजग रहना होता है। अच्छा, अब बताओ कि और कौन कौन सी खूबियाँ एक पायलट में होनी चाहिए।
2: सर मैं बताऊँ?
4: हाँ हाँ सरला, तुम बताओ।
2: सर मुझे लगता है कि एक पायलट में सकारात्मक दृष्टिकोण का होना बहुत जरूरी है। उसमें लगातार सीखने की इच्छा होनी चाहिए और उच्च दबाव या तनाव में भी अच्छी तरह से काम कर पाने की काबिलियत होनी चाहिए।
4: बहुत अच्छे सरला।
2: धन्यवाद सर।
4: तो साथियों, तकनीकी ज्ञान अपनी जगह है, लेकिन ये व्यक्तिगत खूबियाँ यदि आप में हैं, तो बेशक एक दिन आप बेहतरीन पायलट बनेंगे। इस ट्रेनिंग के दौरान मैं आप सब से यही उम्मीद करूंगा। ऑल द बेस्ट।
2: थैंक यू सर।
0: प्रशिक्षण शुरू हुआ। इसमें सफलता उन्हीं को मिलती है जिनमें कठोर परिश्रम, कार्य के प्रति समर्पण और एकाग्रता होती है। साथियों, पायलट बनने के लिए ए श्रेणी का उड्डयन लाइसेंस प्राप्त करना होता था और इसके लिए उन्हें 1000 घंटे की उड़ान पूरा करना जरूरी था। और आखिर वो दिन आ गया जब उन्होंने 1000 घंटों की उड़ान बिना व्यवधान के पूरी की।
2: जिस दिन उनके प्रशिक्षण की आखिरी उड़ान थी, उस दिन उनका पूरा परिवार, मित्रगण, पत्रकार और भी कई गणमान्य लोग हवाई अड्डे पर मौजूद थे।
0: मीडिया के लिए एक महिला द्वारा प्रशिक्षण पूरा करना खासा दिलचस्पी का विषय था। उड़ान शुरू हुई।
5: 1000 घंटों की ट्रेनिंग पूरी होना मजाक नहीं होता।
8: I'm so excited.
5: पहली महिला पायलट बनना हम देखेंगे अपनी आंखों से।

0: लैंडिंग फी।
1: कमाल।
2: थैंक यू।
3: बहुत सर लगी।
2: थैंक यू। धन्यवाद।
3: आप कितने अच्छे तरीके से चले गए। अमेजिंग।
4: जब वो अपने जिप्सी मौत विमान से उतरकर लाउंज में आई तो लोगों ने तालियां बजाकर उनका स्वागत किया।
5: दिलचस्प बात ये है कि उन्होंने साड़ी पहनकर ये उड़ान भरी थी और उन दिनों वे 4 वर्ष की एक बेटी की माँ भी थी।
4: इस प्रशिक्षण के बाद उन्हें वायुयान उड़ाने का 1 क्लास लाइसेंस प्रदान किया गया। समाचार पत्रों ने इस महत्वपूर्ण उपलब्धि के बारे में जनता को बताने में कोई कसर नहीं छोड़ी।
5: वायुयान उड़ाने का लाइसेंस प्राप्त करने के बाद उनका अगला लक्ष्य था विमान उड़ाने का व्यावसायिक या कमर्शियल लाइसेंस प्राप्त करना। लेकिन इसी बीच उनके जीवन में एक दुखद घटना घटी।
4: सन 1939 में उनके पति श्री शर्मा का एक विमान दुर्घटना में निधन हो गया। उन्होंने जोधपुर आने का निर्णय लिया और कमर्शियल लाइसेंस के लिए वे प्रयास करती रहीं। अंततः उन्हें लाइसेंस मिल गया और अब वे लंबी दूरी की व्यावसायिक उड़ानों के लिए तैयार थीं। इसी बीच दूसरा विश्व युद्ध छिड़ गया और सभी नागरिक उड़ानें रद्द कर दी गईं। लेकिन हिम्मत की धनी सरला ने हार नहीं मानी और मेयो स्कूल ऑफ आर्ट में दाखिला लेकर ललित कला और पेंटिंग की क्लास में दाखिला लिया और ललित कलाओं की अन्य विधाओं का उन्होंने गहरा अध्ययन किया।
5: उन्होंने वस्त्रों और आभूषणों के एक से एक डिजाइन बनाए और उनका पेटेंट लिया।
4: सुप्रसिद्ध अखबार द ट्रिब्यून को साक्षात्कार देते हुए उन्होंने कहा था,
6: मुझे लगता है कि हमारे पास लक्ष्य के अतिरिक्त कुछ और विकल्प भी हमेशा होने चाहिए। जब मैंने वस्त्रों और आभूषणों का डिजाइन तैयार किया तो उस समय की लगभग सभी प्रसिद्ध महिलाओं को यह डिजाइन बहुत पसंद आए। लेकिन इससे भी बड़ी बात ये थी कि एक बहुत बड़ा कुटीर उद्योग खड़ा हो गया जिसने बहुत सी महिलाओं को 20 वर्ष तक सम्मानजनक रोजगार दिया।
4: अपने जीवन में सफलता के कई आयामों को छूने वाली सरला ठकराल का 15 मार्च 2008 को दिल्ली में 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया। आकाश में पुरुषों के

0: वर्चस्व को तोड़ने वाली भारत की इस प्रथम महिला पायलट का जीवन साहस और आत्मविश्वास का एक अनूठा उदाहरण है, जो महिलाओं के लिए हमेशा प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा।
1: तो अब हमारा समय यहीं पर समाप्त होता है, तो मुझे यानी अजीत को
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार। उमंग उमंग उमंग
3: उमंग। अभी आप सुन रहे थे एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। पहला गीत आपके लिए सुनवा रहे हैं अदनान सामी और लालका याग्निक की आवाज में फिल्म युवा से।

ए आर रहमान का संगीत महबूब के लिखे बोल, अदनान सामी और अलका याग्निक की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म युवा से। कार्यक्रम का अगला गीत आपके लिए प्रस्तुत है केके और सुनीधि की आवाज़ में फिल्म टैक्सी नंबर 9211 से।

विशाल शेखर का संगीत विशाल दादलानी के लिखे बोल केके और सुनिधि की आवाज में गीत सुना आपने फिल्म टैक्सी नंबर 911 से। कार्यक्रम का अगला गीत आपके लिए प्रस्तुत है फिल्म साथिया से, आवाज है सोनू निगम की।

ए आर रहमान का संगीत, गुलजार के लिखे बोल, सोनू निगम की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म साथिया से। कार्यक्रम का अगला गीत आपके लिए प्रस्तुत है प्रीति पिंकी शेखर की आवाज़ में, फिल्म रहना है तेरे दिल में से।

विशाल शेखर का संगीत, समीर के लिखे बोल, प्रीति पिंकी शेखर और समीर की आवाज में गीत सुना आपने फिल्म रहना है तेरे दिल में से। कार्यक्रम का अगला और अंतिम गीत आपके लिए प्रस्तुत है शंकर महादेवन और सुजाता भट्टाचार्य की आवाज में फिल्म कुछ ना कहो से।

शंकर एहसान लॉय का संगीत जावेद अख्तर के लिखे बोल, शंकर महादेवन और सुजाता भट्टाचार्य की आवाज़ में गीत सुना अपने फिल्म कुछ ना कहो से। और इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। हमारा अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में होगा, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: पाना।
1: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
2: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
1: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
2: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुंचिए। मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
1: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420223। क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
2: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
1: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
2: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुंचिए। मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
1: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420223। क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
2: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
1: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
2: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुंचिए। मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
1: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420223।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। नेपाल और तिब्बत में विनाशकारी बाढ़ से मृतकों की संख्या बढ़कर 547 हो गई है। 1545 लोग अब भी लापता हैं। राहत और बचाव दल लापता लोगों की तलाश कर रहे हैं। दक्षिण पश्चिमी चीन में 5.1 तीव्रता के भूकंप के बाद फिर से बाढ़ की आशंका बढ़ गई है। अधिकारियों ने प्रभावित जिलों से 800 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि नेपाल में बुधवार को अचानक बाढ़ के बाद 320 भारतीय नागरिकों से संपर्क नहीं हो सका है। उन्होंने कहा कि अन्य देशों के भारतीय मूल के लगभग 100 लोगों से भी संपर्क नहीं हो सका है। श्री जायसवाल ने नई दिल्ली में बताया कि तमिलनाडु के 21 भारतीय नागरिक बाढ़ प्रभावित इलाके से नई दिल्ली पहुंच गए हैं।
2: 21 भारतीय नागरिक जो फंसे हुए थे कैलाश मानसरोवर की यात्रा पे गए थे, कल काठमांडू पहुंचे उस क्षेत्र से जहां पर ये हादसा हुआ, और कल हमारे राजदूत उनसे मिले, उनका हालचाल पूछा और हमारी एम्बेसी ने उनके लिए ये ट्रैवल अरेंजमेंट बनाया। आज वो दिल्ली पहुंच चुके हैं। उसके अलावा 63 भारतीय नागरिक जो त्रिशूली हाइड्रो पावर में काम करते हैं, त्रिशूली 1, उनको भी वहां से बचाया गया है। 96 भारतीय नागरिक चीन से नेपाल की तरफ आ चुके हैं और ये सभी लोग सुरक्षित हैं।
1: श्री जायसवाल ने कहा कि चीन की तरफ फंसे 96 भारतीय नागरिक सुरक्षित रूप से जमीन के रास्ते नेपाल पहुंच गए हैं और उन्हें वहां से निकालने के प्रयास जारी हैं। उन्होंने कहा कि चीन की तरफ लगभग 400 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और अपने परिवारों के संपर्क में हैं। इस बीच भारत ने नेपाल को मानवीय सहायता बढ़ा दी है। भारत ने बचाव और राहत कार्यों में मदद के लिए 47 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी है। श्री जायसवाल ने कहा कि सरकार ने विदेश मंत्रालय में 24 घंटे कार्यरत नियंत्रण कक्ष बनाया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नेपाल से सुरक्षित वापस आए तमिलनाडु के 21 तीर्थयात्रियों से मुलाकात की। ये तीर्थयात्री कल बाढ़ प्रभावित क्षेत्र से काठमांडू पहुंचे थे और आज दोपहर नई दिल्ली पहुंचे। डॉक्टर जयशंकर ने नेपाली सेना और सरकार को इसके लिए धन्यवाद दिया। सरकार ने कहा है कि देश में चीनी की कोई कमी नहीं है और उचित कीमतों पर पर्याप्त मात्रा में चीनी उपलब्ध कराने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जाएंगे। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने बताया कि हाल के दिनों में चीनी की कीमतों में लगभग 20% की गिरावट आई है, जबकि खुदरा चीनी की कीमतें भी कम होने लगी हैं। सरकार ने चीनी की समयबद्ध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा मासिक कोटा प्रणाली के स्थान पर अगले महीने से पाक्षिक चीनी आवंटन प्रणाली शुरू करने का निर्णय लिया है। नए सीजन के लिए गन्ने की पेराई 15 अक्टूबर से शुरू होगी। इस दौरान 10 लाख टन से अधिक चीनी उत्पादन की संभावना है। सरकार ने चीनी मिलों को अक्टूबर में उत्पादित चीनी को बिना किसी प्रतिबंध के बेचने की अनुमति दे दी है। परीक्षा सुधारों के लिए गठित उच्च स्तरीय कार्यबल ने विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों सहित सभी हितधारकों से सुझाव आमंत्रित किए हैं। सुझाव 13 सितंबर तक वेबसाइट, व्हाट्सएप या फोन नंबर 1800-1804747 के माध्यम से भेजे जा सकते हैं। ये सुझाव ईमेल एग्जाम रिफॉर्म्स टास्क फोर्स @dopt.gov.in के माध्यम से भी भेजे जा सकते हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना के आज 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। ये देश में वित्तीय समावेशन की दिशा में प्रमुख पड़ाव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जनधन योजना वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और देश के लोगों को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। योजना के अंतर्गत अब तक 59 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की यात्रा पर कल उज्बेकिस्तान जाएंगे। श्री मोदी उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर ताशकंद जा रहे हैं। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति मिर्जियोयेव के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से 6 दिन की अमरीका यात्रा पर हैं। यात्रा के दौरान वित्त मंत्री शिकागो, एशविल और न्यूयॉर्क जाएंगी। वे शिकागो में प्रमुख निवेशकों के साथ गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगी। एशविल में श्रीमती सीतारामन की अध्यक्षता में G20 सदस्य देशों के वित्त मंत्री, केंद्रीय बैंक के गवर्नर

0: तथा वरिष्ठ आर्थिक अधिकारी वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। भारत के वेलवन सेंथिल कुमार आज रात पीएसए बुडापेस्ट स्क्वाश ओपन फाइनल में हंगरी के खिलाड़ी बालाज फारकस से खेलेंगे। सेमीफाइनल में कल सेंथिल कुमार ने भारत के ही वीर चोटरानी को हराया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। आइए अब हम आपको आज के शेष और कल के प्रमुख कार्यक्रमों का विवरण दे दें।

सुर्खियों में सुनिएगा आज रात 8 बजे कार्यक्रम खेल जगत के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय महिला बॉक्सिंग कोच नेहा कश्यप से बातचीत प्रसारित होगी रात 9:30 पर। 10 बजे सुने कार्यक्रम आपकी फरमाइश। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में आज रात 10:30 पर सुनेगा देवव्रत चौधरी का सितार वादन राग रागीश्री। कार्यक्रम आपकी फरमाइश सुन सकेंगे कल दोपहर 12 बजे। कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत रेडियो धारावाहिक जमुनिया की 11वीं कड़ी सुनिएगा कल दोपहर 12:30 पर। महिला कार्यक्रम सुनवाया जाएगा दोपहर 1 बजे। लोक संगीत का कार्यक्रम सुन सकेंगे कल दोपहर 1:30 पर और सुगम संगीत का कार्यक्रम सुनवाया जाएगा दोपहर 1:45 पर। ये तीनों कार्यक्रम आकाशवाणी रीवा की प्रस्तुति होंगे।

कार्यक्रम आपकी फरमाइश सुनवाया जाएगा कल दोपहर 2:30 पर। युवा साथियों का विशेष कार्यक्रम युववाणी प्रसारित होगा कल शाम 5:02 पर। यह कार्यक्रम आकाशवाणी रीवा की प्रस्तुति होगा। प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान प्रसारित होगा कल शाम 6:30 पर। सुर्खियों में सुनवाया जाएगा कल रात 8:00। 9:30 पर सुनिएगा युवा भारती और संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में कल रात 10:00 सुनिएगा डॉक्टर मंडपाका शारदा का कर्नाटक वोकल। ये दोनों कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।

आकाशवाणी भोपाल से प्रसारित होने वाले कार्यक्रम इस प्रकार हैं। आज रात 7:21 पर सुने कार्यक्रम ग्राम सभा। कार्यक्रम नमस्कार भोपाल सुनवाया जाएगा कल सुबह 7:20 पर। सुरमई सवेरा सुन सकेंगे कल सुबह 8:30 पर। और 9:15 पर लोक संगीत के कार्यक्रम में सुनेगा बुंदेल सिंह लोधी द्वारा गाए बुंदेली लोकगीत।

झलकी लॉटरी खुल गई, सुनिएगा कल सुबह 9:30 पर। लेखक हैं अशोक बुलानी, प्रस्तुतकर्ता राकेश ढोंडियाल। जिले की चिट्ठी सुनवाई जाएगी कल सुबह 10:00 और 10:05 पर सुने कार्यक्रम गीत सागर। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम रागमाला में कल सुबह 10:30 पर सुन सकेंगे रमेश प्रेम का विचित्र वीणा वादन, राग बसंत मुखारी। और कल रात 7:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम किसान वाणी।

0: ये थे आज के शेष और कल प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रम। हमारा अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में होगा, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी

0: बदली स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: आज देश में हर एक सेकंड में होते हैं 1 करोड़ रुपए के यूपीआई पेमेंट्स और हैं 81 करोड़ से ज्यादा यूपीआई पेमेंट पॉइंट्स।
1: स्ट्रीट वेंडर से लेकर आपकी गाड़ी के शोरूम तक आपकी सारी पेमेंट सिर्फ एक क्यूआर कोड स्कैन करके हो जाती है।
0: यूपीआई के 10 साल डिजिटल, आत्मनिर्भर, बेफिक्र।
2: मेरी बैंक हमेशा मेरे साथ चलती है। सुबह उठती हूँ तो पैसे जमा कर आती है, कस्टमर ज्यादा हो जाते हैं तो पूरा गल्ला संभाल लेती है, आधी रात को भी उठा के बताती है कि मैडम लक्ष्मी फल भंडार का पेमेंट आ गया है, जनधन बैंक खाता क्या मिला। मुझे तो उंगलियों के छोर पर बीमा, पेंशन, डीबीटी सारी बैंकिंग सुविधाएं मिल गई हैं।
3: 12 साल में 59 करोड़ जनधन खाते खुले, जिसमें 56% खाते तो सिर्फ महिलाओं के हैं। पीएम जनधन योजना के 12 साल, ज्यादा बचत, ज्यादा काम।
4: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं राणा शाहिद। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 2 दिवसीय उज्बेकिस्तान यात्रा पर जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन के खाचरौद के चिरौला घाट आश्रम में पूजन किया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अमृतसर में रक्खड़ पुन्निया मेले में हिस्सा लिया और प्रदेश में रक्षाबंधन का पर्व पूरे उत्साह और उमंग के साथ मनाया जा रहा है। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की यात्रा पर कल उज्बेकिस्तान जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर ताशकंद का दौरा करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति मिर्जियोयेव के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत करेंगे।
1: यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ताशकंद में शास्त्री मेमोरियल जाने की उम्मीद है। ताशकंद शहर में शास्त्री स्ट्रीट पर भारत के तीसरे प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री के सम्मान में एक कांसे की प्रतिमा स्थापित की गई थी। 1976 में शुरू हुए इस मेमोरियल को स्थानीय उज्बेक मूर्तिकार याकोव शापिरो ने डिजाइन किया था। ताशकंद आने वाले भारतीय पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि देने के लिए बड़ी संख्या में यहां पहुंचते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ताशकंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ ओरिएंटल स्टडीज में महात्मा गांधी सेंटर जाने की भी उम्मीद है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद, उज्बेकिस्तान।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रक्षाबंधन के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि यह पर्व स्नेह, सम्मान, विश्वास और आपसी सहयोग की भावना को मजबूत करता है। उन्होंने समाज और राष्ट्र की रक्षा तथा विकसित भारत के निर्माण का संकल्प लेने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कामना की कि रक्षाबंधन सभी के जीवन में खुशहाली, समृद्धि और सफलता लाए तथा प्रेम और आपसी विश्वास के बंधन हमेशा मजबूत रहें। रक्षाबंधन के अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज उज्जैन जिले के खाचरौद स्थित चिरौला घाट आश्रम पहुंचकर दर्शन पूजन किया। मुख्यमंत्री ने भगवान शिव का पुष्पाभिषेक और दुग्धाभिषेक कर प्रदेशवासियों के सुख, शांति, समृद्धि और कल्याण की कामना की। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश महान संतों और विभूतियों की तपोभूमि रहा है और संतों की भावना के अनुरूप प्रदेश के प्रत्येक परिवार में खुशहाली बनी रहे।
2: संत निजानंद जी आश्रम पर मैं आज आया हूँ और रक्षाबंधन के पावन पर्व पर आप सबको बधाई। यही ये वैसे तो हमने पूरा मालवा, पूरा प्रदेश, देश सनातन संस्कृति के ऐसी विभूतियों से इसके आलोकित आभा दुनिया परिचित होती है। स्वामी सच्चिदानंद महाराज ने इस स्थान की चेतना देते हुए पूरे क्षेत्र को चैतन्य किया है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सबको लेके चलने का जो कल्याण का भाव है, ये वेद वाक्य को अमरता के साथ धारण करते हुए हम सबके कल्याण की कामना करें।
0: केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रक्षाबंधन के अवसर पर पंजाब के अमृतसर जिले में बाबा बकाला साहिब की पवित्र धरती पर आयोजित रक्खड़ पुन्निया मेले में सहभागिता की। उन्होंने बाबा बकाला साहिब में मत्था टेक कर गुरु तेग बहादुर जी की

0: की तपोस्थली को नमन किया। इससे पहले उन्होंने श्री दरबार साहिब में भी मत्था टेका और कहा कि सेवा का भाव व्यक्ति के अहंकार को दूर करता है। बाद में उन्होंने पंजाब सरकार पर किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से वंचित रखने का आरोप लगाते हुए भ्रष्टाचार को लेकर आम आदमी पार्टी पर भी निशाना साधा।
1: मेरे पंजाब के किसान बहनों और भाइयों, अगर ये फसल बीमा योजना लागू होती तो हजारों करोड़ रुपया राहत और मुआवजे के रूप में, क्लेम के रूप में आपको मिलते। मैं ये भी कहना चाहता हूं आपको, हमने एक नहीं कई योजनाएं बनाई। अभी हम सस्ता यूरिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार 266 रुपया में, जो बोरी 3-3 हजार में मिलती है उसको 266 रुपया में दे रहे। हमने पूरे देश में कहा कि खाद के वितरण का ऐसा सिस्टम बनाइए कि ये खाद सस्ता केवल किसानों को मिले, ये डाइवर्ट ना हो पाए।
0: अब समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रदेश में रक्षाबंधन का पर्व पूरे उत्साह और उमंग के साथ मनाया गया। अलीराजपुर जिला जेल में बहनों ने जेल में बंद भाइयों की कलाई पर राखी बांधी और उनके बेहतर भविष्य की कामना की। विदिशा जेल में ब्रह्मा कुमारी बहनों ने बंदियों को राखी बांधकर अपराध से दूर रहने का संकल्प दिलाया। वहीं भोपाल सेंट्रल जेल में भोपाल के साथ सीहोर, रायसेन, विदिशा और राजगढ़ से बड़ी संख्या में बहनें पहुंची और भाइयों को राखी बांधी। सतना में बहनों ने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा। अशोकनगर के वन स्टॉप सेंटर में कलेक्टर साकेत मालवीय ने सपत्नीक बालिकाओं के साथ रक्षाबंधन मनाया, जहां बालिकाओं ने उन्हें राखी बांधी। छिंदवाड़ा, शिवपुरी, मंडला, धार, झाबुआ, बैतूल सहित सभी जिलों में रक्षाबंधन पर्व पारंपरिक उल्लास और धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को सुबह 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 137वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और मोबाइल ऐप पर भी किया जाएगा। साथ ही आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर इसका सीधा प्रसारण भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी क्षेत्रीय भाषाओं में भी कार्यक्रम का प्रसारण करेगा। एम्स भोपाल में आज 9 माह के शिशु के दोनों कानों में एक साथ सफल कॉकलियर प्रत्यारोपण किया गया है। उपचार करने वाली टीम के अनुसार यह मध्य भारत में कॉकलियर प्रत्यारोपण पाने वाला सबसे कम उम्र का बच्चा है। समय से पहले जन्मे इस शिशु को 1 माह से अधिक समय तक NICU में रखा गया था। सर्जरी में आधुनिक कॉकलियर इम्प्लांट तकनीक और स्मार्ट नेव निगरानी प्रणाली का उपयोग किया गया। ऑपरेशन ENT विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर विकास गुप्ता और डॉक्टर गढ़ कल्याण बहेरा ने किया। प्रदेश में मानसून सक्रिय बना हुआ है। मौसम विभाग ने आज टीकमगढ़, छतरपुर, कटनी, सीधी, अनूपपुर, सिवनी और बालाघाट में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में 2.5 से 4 इंच तक बारिश होने की संभावना है। भोपाल समेत कई जिलों में कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार रविवार तक गरज चमक की गतिविधियां जारी रह सकती हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। नर्मदापुरम जिले में त्योहारों के मद्देनजर खाद्य सुरक्षा प्रशासन ने दूध और दुग्ध उत्पादों में मिलावट की रोकथाम के लिए चलाए गए अभियान में 42 किलोग्राम पनीर जब्त किया है। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत खंडवा जिले के वरिष्ठ नागरिकों को मुंबई स्थित डॉक्टर अंबेडकर चैत्य भूमि स्मारक की यात्रा कराई जाएगी। विशेष ट्रेन 15 सितम्बर को रवाना होगी। मुरैना कलेक्टर लोकेश कुमार जांगिड़ कल बानमौर तहसील के भ्रमण पर रहेंगे। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए कल सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

0: कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान भैयारों को सुधांशु भैया की राम राम। भैयारों, आज रक्षाबंधन को त्यौहार है और आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भैयारों, अपना देश त्यौहार और परंपराओं को देश है। अपने देश में कई त्यौहार मनाए जाते हैं और जय त्यौहारों में रक्षाबंधन को विशेष महत्व है। जे पर्व भाई बहन के प्रेम, स्नेह, विश्वास और आपसी जिम्मेदारी को प्रतीक माना जाता है। भैयारों, जदना बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है और सुख समृद्धि और दीर्घायु की कामना करती है और भाई अपनी बहन की रक्षा और हर परिस्थिति में उसका साथ देने का संकल्प लेता है। रक्षाबंधन श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। राखी का धागा देखने में बहुत साधारण होता है, लेकिन इसके पीछे भावनाओं का जुड़ा संसार होता है। रक्षाबंधन से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं हैं। मान्यता है, जब श्री कृष्ण की उंगली में चोट लगी तब द्रौपदी ने अपनी साड़ी का एक टुकड़ा फाड़कर उनकी उंगली पर बांध दिया था। श्री कृष्ण ने द्रौपदी के इस स्नेह को स्वीकार किया और संकट के समय उनकी रक्षा का वचन दिया। भैयारों, चर्चा अपनी चलती रहेगी, अब लेते तनक सो विराम और सुनत जे संदेश।
1: अब पढ़ाई के साथ कमाई भी। मध्य प्रदेश सरकार लाई है मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना। 18 से 29 साल के युवाओं को मिलेगी इंडस्ट्री ट्रेनिंग और हर महीने 8,000 से 10,000 रुपए तक का स्टाइपेंड। हुनर सीखो, पैसा कमाओ और करियर बनाओ एक साथ। रजिस्टर करने का मौका अभी है।
2: mmsky.mp.gov.in पर जाएं। सीखो, कमाओ और लाइफ में कुछ बड़ा करो।
3: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
4: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
3: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
4: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुंचिए। मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
3: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800-420-2233।
0: भैयारों, अभी अपन ने सुनो ये संदेश और अपन चर्चा कर रहे थे रक्षाबंधन के त्यौहार के बारे में। भैयारों, रक्षाबंधन के दिन बहनें सुबह स्नान कर नए कपड़े पहनती हैं। इसके बाद वे पूजा की थाली सजाती हैं। पूजा की थाली में रोरी, अक्षत, दीपक, मिठाई और राखी रखी जाती है। भैयारों, बहन भाई को तिलक लगाती है, आरती उतारती है और भाई की कलाई पर राखी बांधती है। इसके बाद भाई बहन को मिठाई खिलाता है और उपहार देता है। भैयारों, बहन का रिश्ता जीवन का सबसे सहज और आत्मीय रिश्ता होता है। यह त्यौहार प्रेम और अपनापन बढ़ाने की प्रेरणा देता है। भैयारों, रक्षाबंधन केवल परिवार का त्यौहार नहीं, बल्कि यह सामाजिक एकता और भाईचारे का भी संदेश देता है। यह त्यौहार हमें सिखाता है कि समाज के सभी लोगों को एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। महिलाओं के सम्मान की सुरक्षा की जिम्मेदारी केवल उनके परिवार की नहीं, बल्कि पूरे समाज की है। भैयारों, बहन की रक्षा का संकल्प केवल राखी के दिन तक सीमित नहीं होना चाहिए। समाज में प्रत्येक महिला का सम्मान और समान अवसर और सुरक्षित वातावरण मिलना चाहिए। रक्षाबंधन भारतीय संस्कृति का एक सुंदर और भावनात्मक पर्व है। यह भाई बहन के रिश्ते में प्रेम और विश्वास को मजबूत करता है, साथ ही परिवार को एक साथ आने को अवसर देता है। साथ ही साथ अपन देखते ना कि जब बहन भाई के कलाई पर राखी बांधती है तो राखी का एक धागा हमें याद दिलाता है कि रिश्तों की वास्तविक मजबूती धन से नहीं, बल्कि प्रेम, विश्वास, सम्मान और जिम्मेदारी से होती है। भैयारों, चर्चा अपनी चलत रहेगी, अब तनक मनोरंजन हो जाए तो सुनत है ये लोकगीत।

0: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
1: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
0: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
1: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए, मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
0: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420223।

0: भैया रो, अभी अपन ने सुना ये प्यारा सा लोकगीत, और अपनी जो अगली चर्चा का विषय है वो है आँखों की सुरक्षा क्यों और कैसे। भैया रो, आँखें हमारे शरीर का अत्यंत महत्वपूर्ण और संवेदनशील अंग है। इन्हीं के माध्यम से अपन आसपास की दुनिया देखते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, काम करते हैं और विभिन्न गतिविधियों को समझते हैं। भैया रो, प्रकृति ने हमें दो आँखें दी हैं, इसलिए उनकी देखभाल की जिम्मेदारी हमारी है। आज अपन देखते हैं कि अपन मोबाइल को, फ़ोन को उपयोग कराते हैं, कंप्यूटर चलाते हैं, टीवी देखते हैं और अन्य उपकरणों को उपयोग करते हैं, जैसे कहा है कि अपनी आँखन पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है। जाके अलावा अपन देखा था ना, कहीं कहीं अगर बाज़ार में चले जाएँ तो धूल है, धुआं है और गर्मी के समय तेज धूप है, प्रदूषण है, संक्रमण है और जो अपनी असंतुलित जीवन शैली है, जो अपन पोषक तत्वों का जो सेवन नहीं करत, वासे भी कहा है अपनी आँखन पर भी प्रभाव पड़ता है। भैया रे, अपनी जो आँखें हैं वो बहुत ही नाजुक होती हैं और जामे जो छोटी छोटी समस्याएं होती हैं वे अपने दैनिक जीवन को भी प्रभावित कर सकते हैं। भैया, जब अपन को आँखों की उच्च देखभाल नहीं कर तो अपन वामे कहा है कि जलन, खुजली, लालिमा, सूखापन, पानी आना, सिरदर्द और धुंधला दिखाई देने जैसी समस्याएं हो सकते हैं। अपन देखा था ना कि अपन लगातार मोबाइल की स्क्रीन को उपयोग करते हैं, तो जैसे कहा है कि अपने आँखों को थकान और सूखापन महसूस होता है और अपने जो बच्चे हैं, युवा हैं, वे भी लगातार मोबाइल को और कंप्यूटर को अधिक उपयोग कराते हैं, इससे भी आँखों संबंधित समस्याएं हो सकते हैं। भैया ना, कोशिश करें कि अपन अपने मोबाइल, कंप्यूटर और टीवी को लगातार लंबे समय तक उपयोग करने से बचें, जैसे कहा है कि अपनी आँखों को आराम मिलेगा और अपन आँखों को सुरक्षित रख सकते हैं। जाके अलावा बहुत कम या बहुत तेज रोशनी में पढ़ने से आँखों पर अनावश्यक प्रभाव पड़ता है और अपन जब भी पढ़ाई करें तो कमरे में पर्याप्त रोशनी होनी चाहिए और अपन जो मोबाइल को उपयोग कराते हैं और कंप्यूटर को उपयोग कराते हैं वो बिल्कुल अंधेरे कमरे में और लंबे समय तक नहीं करें। भैया, चर्चा अपनी चलत रहेगी, अब लेते हैं तनक्सो विराम।
1: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
2: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान,
1: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
2: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए, मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
1: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420223।
0: भैया, चर्चा अपनी चलत रहेगी, पहले सुनते अपन अपनी भेंटवार्ता, जाको विषय है फसलों में पोषक तत्वों की कमी के लक्षण एवं प्रभाव। भैया, अपन अपनी जो खेती किसानी करते हैं तो बामे अपन को ये जानकारी होनी चाहिए कि अपने फसलों में कौन से पोषक तत्वों की कमी है, बाकी काका लक्षण है और बाकी काका प्रभाव होते हैं, जाके बारे में जानकारी देंगे डॉक्टर YP सिंह और भेंट करता है सोहन सिंह। तो आइए सुनते हैं ये भेंटवार्ता।
3: किसान भाइयों, खरीफ की फसलें लगी हुई हैं। खरीफ की फसलों में पोषक तत्वों के अभाव में उत्पादन काफ़ी प्रभावित होता है। फसलों में पोषक तत्वों की कमी के किस प्रकार लक्षण प्रतीत होते हैं और इनका हमारी फसलों पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे कार्यक्रम में आमंत्रित हैं डॉक्टर YP सिंह। डॉक्टर साहब, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है।
4: धन्यवाद।
3: डॉक्टर साहब, हमारी जो फसलें लगी हुई हैं इनमें पोषक तत्वों की कमी से फसलों पर जो लक्षण प्रतीत होते हैं वो किस तरह से हमारे किसान भाई पहचान सकते हैं और कौन कौन सी ऐसी पोषक तत्व हैं, इनका प्रयोग भी कर सकते हैं?
4: पौधे का जो निर्माण होता है उसमें 16 तरह के पोषक तत्व होते हैं। 16 तरह के पोषक तत्वों में 3 पोषक तत्व होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इसको पौधा जो है पानी और वायुमंडल से लेता है, हवा से लेता है। बाकी 13 बचे पोषक तत्व पौधा मिट्टी से और पानी से लेता है। 13 पोषक तत्वों में जो 3 पोषक तत्व होते हैं वो मुख्य पोषक तत्व होते हैं, इसमें नत्रजन, फास्फोरस और पोटेशियम, और 3 पोषक तत्व द्वितीयक होते हैं, इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर, बाकी जो बचे हुए जिंक, आयरन, कॉपर, मैग्नीज, मॉलिब्डेनम, बोरोन, ये सूक्ष्म मात्रा में पौधा अवशोषण करता है। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश, इसको पौधा ज्यादा मात्रा में लेता है। आपूर्ति होती है वो मिट्टी से होती है और पानी से होती है। हमारे किसान भाई सघन खेती करते चले आ रहे हैं, अधिक पैदावार देने वाली कम बढ़ने वाली प्रजातियों का प्रयोग हो रहा है, इससे हमारी मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर और जिंक की कमी ज्यादातर सामान्य मिट्टियों में देखी जाती है। पौधा देख के भी हम पहचान सकते हैं पौधे में किस तरह की पोषक तत्वों की कमी है। खेती के साथ में पशुधन किसान भाइयों के पास अच्छा नहीं होगा, क्योंकि जितने ज्यादा पशु होंगे उतने ज्यादा गोबर का खाद होगा, जितना ज्यादा गोबर का खाद होगा उतनी हमारी फसलें अच्छी होंगी, और फसलों के साथ में उनकी गुणवत्ता, जैसे प्रोटीन की मात्रा है, कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन है, उसमें उत्पादन नहीं आएंगे तब तक उत्पादन को अच्छा नहीं माना जाएगा। गोबर के खाद से जो पैदा किया हुआ उत्पादन होता है उसको हम लोग उपयोग करते हैं तो हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। चूंकि अब देखा गया है कि दिन प्रतिदिन किसान भाई गोबर का खाद कम प्रयोग करते हैं, कूड़ा कचरा होता है खेत में उसको भी जला देते हैं, जलाना नहीं चाहिए। जलाने से बहुत सारे पोषक तत्व हैं, नाइट्रोजन है, सल्फर है, जैसे पोटेशियम भी कुछ नुकसान होता है, फास्फोरस का भी कुछ नुकसान होता है, तो खत्म हो जाते हैं और साथ में वायुमंडल को खराब करते हैं। मिट्टी पर जहां भी जलाए जाते हैं तो वहां जो हमारे लाभदायक सूक्ष्म जीवाणु है वो भी खत्म होते हैं। वैज्ञानिकों ने यह देखा है कि उसी जमीन पे दोबारा आप जलाते हो लाभदायक सूक्ष्म जीवाणु बिल्कुल ही खत्म हो जाते हैं। किसान भाइयों को कचड़े को जलाना नहीं चाहिए, खेत में ही मिला देना चाहिए, जुताई करके मिलाएं चाहे गोबर खाद बना के मिलाएं, तो उससे हमारा जो उत्पादन होगा अच्छा होगा, पोषक तत्वों की कमी नहीं आएगी। परंतु चूंकि हमारे खेतों में 2 से 3 फसलें ली जा रही हैं प्रतिवर्ष और सघन खेती की जा रही है, तो उसमें देखा यह गया है कि नाइट्रोजन और फास्फोरस, सल्फर और जिंक की कमी है। नाइट्रोजन एक चलायमान तत्व है मिट्टी के अंदर, जैसे हम सिंचाई करते हैं या अधिक बरसात हो जाती है या खेत में पानी छोड़ देते हैं और पूरे खेत में एक तरफ से ही पानी चलता रहता है, खेत में पानी की मात्रा ज्यादा जाती है और पानी की मात्रा ज्यादा जाने से मिट्टी के अंदर चलायमान तत्व हैं जिनमें आपका नाइट्रोजन है, सल्फर है, थोड़ा बहुत पोटेशियम का भी नुकसान होता है, बोरोन है, इन तत्वों का नुकसान हो जाता है और जड़ क्षेत्र से नीचे चले जाते हैं और मिट्टी में कमी आने लगती है। तो इसलिए खेत में सिंचाई करें, क्यारी बना के करें, हल्की सिंचाई करें, फसलों की आवश्यकता के अनुसार सिंचाई करें, जिससे हमारी मिट्टी में जो पोषक तत्व हैं वो जड़ क्षेत्र से नीचे नहीं जाएंगे, पौधा हमारा ग्रहण कर लेगा। नाइट्रोजन हमारा किसान भाई यूरिया के माध्यम से देता है। नाइट्रोजन पौधे में भी चलायमान होता है और मिट्टी में भी चलायमान होता है। ज्यादा पानी दे दिया, जड़ क्षेत्र से नीचे चला गया, पौधे के अंदर, फसल के अंदर नाइट्रोजन की कमी है, पौधे की ऊपर की पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं। पीली पड़ने से क्या होता है, बढ़वार कम होने लगती है और बढ़वार कम होने की वजह से का उत्पादन गिर जाता है। यूरिया खेत में जब प्रयोग करें तो उस समय खेत में नमी ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, कम भी नहीं होना चाहिए। कम होगी, घुलता है यूरिया, सबसे पहले इसका अमोनिया बनती है, अमोनिया गैस बनती है, अमोनिया के बाद नाइट्रेट बनता है और नाइट्रेट को पौधा नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करता है। तो सूखी मिट्टी में अगर हम यूरिया का प्रयोग करेंगे तो वायुमंडल में उड़ के ये चला जाएगा और पौधे को कम मात्रा में मिल पाएगा। इसी प्रकार से अगर अधिक नमी है उसमें आप प्रयोग करेंगे तब भी पौधे की जड़ क्षेत्र से नीचे चला जाएगा। यूरिया का प्रयोग हमें उस समय करना चाहिए जब जुताई करते हैं, उतनी नमी होना चाहिए, जैसे लड्डू बनाए मिट्टी का तो लड्डू बन जाना चाहिए और जमीन पर डालें तो फूट जाए, ऐसी अवस्था में यूरिया का प्रयोग करें। और सामान्यतः ये देखा गया है कि दलहनी फसलों में यूरिया का प्रयोग हम बुवाई के समय ही करते हैं, क्योंकि दलहनी फसलों में सूक्ष्म जीवाणु होते हैं, उनके माध्यम से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। दलहनी फसलों को एक तरह से यूरिया की फैक्ट्री माना गया है। दलहनी फसलों में बुवाई के समय यूरिया का प्रयोग करें। दलहनी फसलों में ज्यादातर जैसे आपकी उड़द हो गया, मूंग हो गया, सोयाबीन हो गया, 30 से 40 किलो नाइट्रोजन लगता है, परंतु उड़द मूंग में 20 किलो नाइट्रोजन की मात्रा लगती है। दलहनी फसलें 25 से 30 दिन फसल की हो जाते हैं तो उस समय उसकी जड़ों में गांठों का निर्माण हो जाता है और जो राइजोम में बैक्टीरिया जो होता है वो वायुमंडल से नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने लगता है और स्थिरीकरण करने के बाद वो पौधा गांठों के माध्यम से पौधा उस नाइट्रोजन की पूर्ति कर लेता है। धान की फसल लगी हुई है, बाजरा की फसल लगी हुई है, नाइट्रोजन की मात्रा है, 3 भागों में इसको बांट लें और 1/3 मात्रा रोपाई करते हैं धान की, उसके लगभग 10 से 15 दिन के बाद हम यूरिया का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरी मात्रा है जो फसल जो है लगभग 40 दिन के आसपास हो जाए उस समय प्रयोग करें, और जो तीसरी मात्रा है वो 60-65 दिन की फसल हो जाए उस समय प्रयोग करके धान की फसल से हम अच्छी पैदावार ले सकते हैं। बाजरा है, बाजरा में हमारे यहाँ किसान भाई खुरप करते हैं, इस समय बहुत बेहतर समय चल रहा है, कुछ किसान भाइयों ने कर भी दिया है, कुछ किसान भाई खुरप कर रहे हैं, रिज बन जाती है और बाजरा की जो फसल है वो रिज के ऊपर आ जाती है और जो खरपतवार हैं वो भी खत्म हो जाते हैं उससे, और जो बरसात का पानी है वो पूरा संग्रहित होता है। बाजरा की फसल में जो हम यूरिया का प्रयोग करते हैं वो खुरप से पहले हम लोग कर दें तो बहुत अच्छी हमारी फसल हो जाती है। और बाजरा में लगभग 40 किलो नत्रजन खुरप करने से पहले हम प्रयोग कर सकते हैं और उससे बाजरा की फसल बहुत हमारी अच्छी हो जाएगी। दूसरा जो तत्व है वो फास्फोरस तत्व है। फास्फोरस से जड़ों का विकास होता है, दलहनी फसलों में भी जड़ों का विकास होता है, धान हो, बाजरा हो, सोयाबीन हो, उसमें हम फास्फोरस की मात्रा का बुवाई के समय ही प्रयोग करते हैं। फास्फोरस की कमी से क्या होता है कि आपके पौधे की बढ़वार रुक जाती है, पौधे के नीचे से तीसरी चौथी पत्ती जो होती है वो हल्के हल्के उस पीले से धब्बे आने लगते हैं। आपने बुवाई के समय फास्फोरस की पूर्ति जैसे डीएपी से करते हैं और या सिंगल सुपर फास्फोरस से करते हैं, खड़ी फसल में अगर कमी के लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो आप घुलनशील आपके नत्रजन, फास्फोरस और पोटेशियम सारे तत्व आते हैं खड़ी फसल में, 2% का घोल बना के एनपीके घुलनशील आता है, 2% गोल बना के उसका खड़ी फसल में भी हम फास्फोरस की पूर्ति कर सकते हैं। फास्फोरस मिट्टी में स्थिर तत्व है, इसलिए हम लोग या तो बुवाई से पहले प्रयोग करें और या फिर खड़ी फसल में छिड़काव के माध्यम से उसकी पूर्ति कर सकते हैं। पोटेशियम एक ऐसा तत्व है, फसल की जो गुणवत्ता है उसको बढ़ाता है, पौधे के अंदर जो पानी का बैलेंस है उसको संतुलित करता है, कई बार सूखे की समस्या हो जाती है तो सूखा सहन करने की शक्ति को बढ़ाता है, उत्पादन की गुणवत्ता को बढ़ाता है, तो इसलिए पोटेशियम का प्रयोग भी आवश्यक है। अधिक लाभ सब्जी वाली फसलों में मिलता है इसके प्रयोग से। सल्फर मिट्टी में चलायमान तत्व है, की कमी अगर फसल पर देखना है, फसल की जो ऊपर की पत्तियां हैं वो हल्की सफेद पीली पड़ने लगती हैं, इसकी पूर्ति के लिए जिप्सम का प्रयोग कर सकते हैं बुवाई के समय। सल्फर की कमी हमने सर्वे किया है, उसमें देखा लगभग 40-50% मिट्टियां हमारे यहाँ की सल्फर की कमी से प्रभावित है, की पूर्ति के लिए जो एलिमेंटल सल्फर आता है उसके माध्यम से दे सकते हैं, जिप्सम के माध्यम से दे सकते हैं, सिंगल सुपर फॉस्फेट के माध्यम से दे सकते हैं। और चूंकि सल्फर का जो काम है वो बहुत महत्वपूर्ण काम है पौधे के अंदर, सल्फर जैसे प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाता है, तेलहनी फसल है उस तेल की मात्रा को बढ़ाता है, और जो दलहनी फसल है उसमें नत्रजन के स्थिरीकरण को बढ़ाता है, और साथ ही जो सल्फर तत्व है हमारे जैसे कई बार कई जगह खारा पानी है, किसान भाई से सिंचाई करते हैं ऊसरपन आ जाता है, ऊसरपन भी दो तरह का होता है, जो कड़ी मिट्टियां हैं जिनमें पानी भरा रहता है उसमें सल्फर वाला तत्व या तो एलिमेंटल सल्फर है, तो जिप्सम का प्रयोग आप खेत में करेंगे, मिट्टी में करेंगे तो लाभ मिलेगा। फसल की पूर्ति के लिए ये देखा गया है कि जिप्सम का 1 कट्टा 50 किलो का प्रति बीघा के हिसाब से हमारे भाई किसान प्रयोग करें। साल भर की जो फसलें हैं उसमें बाजरा लगाया है, बाजरा के बाद सरसों लगाएंगे, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, आपकी सल्फर की पूर्ति हो जाएगी। और सल्फर के बारे में ये कहा गया है सल्फर के प्रयोग से लगभग 30-40% तक पैदावार बढ़ जाती है। सबसे ज्यादा लाभ सरसों की फसल में होता है, ज्यादातर पोषक तत्वों का पूर्ति है वो डीएपी और यूरिया से करते हैं, तो इन दोनों खादें हैं इनमें सल्फर की मात्रा नहीं होती है। हमारे किसान भाइयों को सल्फर की पूर्ति के लिए या तो जिप्सम की व्यवस्था करें या एलिमेंटल सल्फर की व्यवस्था करें, डीएपी की जगह सिंगल सुपर फॉस्फेट और यूरिया का प्रयोग करें तो सल्फर की पूर्ति में हो जाएगी, बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा, उत्पादन में भी लाभ मिलेगा, गुणवत्ता भी उसकी सुधरेगी और मिट्टी भी अच्छी होगी। दलहनी फसल है तो नत्रजन स्थिरीकरण भी ज्यादा होगा, प्रोटीन की मात्रा भी ज्यादा उत्पादन में आएगी। जिंक सल्फेट में ही देखा गया है कई जगह धान में खैरा रोग आ जाता है, पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं, पीले पीले धब्बे आने लगते हैं, जिंक की कमी से रोग आता है, खैरा रोग इसको बोलते हैं। जब हमारा धान 40-45 दिन का हो जाता है उसमें नीचे की पत्तियां ऊपर नीचे से दूसरी तीसरी पत्ती पीली पड़ने लगती है और तांवे जैसे रंग के धब्बे बनने लगते हैं, तो ऐसी अवस्था में हमारे किसान भाइयों को जिंक सल्फेट का फोलियर स्प्रे जैसे छिड़काव के रूप में 4 किलो यूरिया ले लें और 2 किलो जिंक सल्फेट ले लें, 500 लीटर पानी में घोल के और 1 हेक्टेयर में छिड़काव कर दें, खैरा रोग की समस्या है वो दूर हो जाएगी, और ज्यादा ही समस्या है तो छिड़काव को एक सप्ताह बाद उसको दोहरा दें। बाजरा में भी कई जगह जब देखा जाता है 30-40 दिन का जब बाजरा की फसल होती है उस समय नीचे से तीसरी चौथी पत्ती हल्की पीली पड़ने लगती है, पीले पीले धब्बे आने लगते हैं, ऐसी अवस्था में जिंक की कमी देखी गई है, तो जिंक सल्फेट का हमारे किसान भाई प्रयोग करें तो हमारे किसान भाइयों को सजग रहना चाहिए, खेतों का भ्रमण करना चाहिए, प्रतिदिन उनका निरीक्षण करें, पौधे को पहचानें, पौधे को देखें किस तरह की इसमें समस्या आ रही है, जल भराव की समस्या तो नहीं है, सूखे की समस्या तो नहीं है, पोषक तत्व की कमी तो नहीं है, खरपतवार की समस्या तो नहीं है। कोई भी फसल हो 70-140-150 दिन का उसका जीवन चक्र होता है और उसके जीवन चक्र में किस तरह की समस्या आती है, मान लो 4-5 दिन या 10 दिन उसकी किसी रोग से बीमारी से पोषक तत्व की कमी से पौधा अगर प्रभावित रहा तो निश्चित रूप से आपका उत्पादन भी कम होगा और आपकी गुणवत्ता जो होना चाहिए वो भी कम होगी। उस तरह के उत्पादन को चाहे हमारा पशुधन भूसे के रूप में उसका प्रयोग करे, मानव जाति उसके दाने का प्रयोग करे, पोषक तत्व हैं उनकी कमी उनके शरीर में भी आएगी और उनके उनको उसका दुष्प्रभाव देखने को मिलेगा।
3: डॉक्टर साहब, आज आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने हमारे किसान भाइयों को फसलों में पोषक तत्वों की कमी से किस तरह से लक्षण प्रतीत होते हैं और हमारे किसान भाई कौन कौन से पोषक तत्व प्रयोग करके फसलों से कमी के लक्षणों को दूर कर सकते हैं और फसलों से अच्छा उत्पादन ले सकते हैं, इसके बारे में जानकारी दी और इस जानकारी से हमारे किसान भाई निश्चित रूप से लाभ उठाएंगे, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: भैया, अभी अपन सुन रहे थे भेंट वार्ता, जिसका विषय था फसलों में पोषक तत्वों की कमी के लक्षण एवं प्रभाव, और इसके बारे में जानकारी दे रहे थे डॉक्टर YP सिंह और भेंट करता थे सोहन सिंह। तो निश्चित तौर पे आप सभी को इस भेंट वार्ता से लाभ मिलेगा। और भैयारों, अपन चर्चा कर रहे थे आँखों की सुरक्षा क्यों और कैसे। अभी अपन ने चर्चा करी कि अपन बहुत तेज रोशनी में पढ़ने से आँखों पर अनावश्यक प्रभाव पड़ सकता है, या बहुत कम रोशनी में पढ़ें तो भी प्रभाव पड़ता है। तो अपन कोशिश करें कि पढ़ते समय कमरे में पर्याप्त और समान रोशनी हो, मोबाइल कंप्यूटर को अंधेरे कमरे में लंबे समय तक न चलाएं। भैया, जब आँखों में खुजली हो या कुछ चला जाए तो अपन को उसको जोर से रगड़ना नहीं चाहिए, इससे क्या है कि अपनी आँखों को नुकसान हो सकता है। साफ पानी से आँखों को धो सकते हैं। यदि कोई कण आँख में फंस गया है और आसानी से न निकल रहा हो तो अपन नज़दीकी डॉक्टर को जाके दिखा सकते हैं। जाके अलावा अपन जब तेज़ धूप में बाहर जाएं तो अच्छी गुणवत्ता वाले धूप के चश्मों का उपयोग करें, साथ ही साथ टोपी और छतरी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे भी कहा है कि ये भी तेज़ धूप में अपनी आँखों को बचाव कर सकते हैं। जाके अलावा अपनी आँखें स्वास्थ्य जो आँखों हैं आँखें हैं बिनके स्वास्थ्य के लिए अपन को संतुलित भोजन बहुत ज़रूरी है। अपन कोशिश करें कि हरी पत्तेदार सब्जियां, गाजर, शकरकंदी, दालें, फल, मेवे और बीज जैसे पौष्टिक खाद्य पदार्थ लें और पानी भी पर्याप्त मात्रा में पिएं। तो इससे क्या है कि अपने जो आँखों का स्वास्थ्य है वो अच्छा बना रहेगा। जाके अलावा अगर अपन लगातार कम नींद लेते हैं तो इससे भी क्या है, आँखों में थकान, भारीपन और सूखापन महसूस होता है। तो इसलिए अपन क्या करें कि नियमित और पर्याप्त नींद लें। और जाके अलावा अपन आँखों को छूने से पहले हाथों को अच्छी तरह से धोएं, तौलिया, रूमाल या कॉस्मेटिक दूसरे को उपयोग नहीं करनी चाहिए, जैसे कहा है कि आँखों में संक्रमण होने की संभावना रहते हैं। अब अपने कुछ भैया वेल्डिंग को काम कराते हैं, मशीनों पर काम कराते हैं, तो जैसे कहा है कि धूल या छोटे जो कण हैं भी आँखों में जा सकते हैं, तो जाके लाने का करें सुरक्षात्मक चश्मों का इस्तेमाल करें। अब अपने बच्चा बच्ची हैं वे फटाके और अन्य में जो अपन उपयोग कराते हैं तो बिन से अपन को उचित दूरी बनाए रखनी चाहिए। और अगर अपन को लगे कि अपनी आँखों की दृष्टि जो है धुंधली हो रही है, बार बार सिर दर्द होता है, पढ़ते समय आँखों में परेशानी हो रही है, दूर अथवा पास की वस्तुओं को देखने में कठिनाई हो रही है, तो अपन को अपनी आँखों की जांच करानी चाहिए। और जिन लोगों को पहले से आँखों की समस्या है उन्हें विशेषज्ञ की सलाह लेनी चाहिए। और यदि अपन को लगे कि अचानक अपनी आँखों की दृष्टि कम हो गई है, आँख में कोई गंभीर चोट लग जाए, तेज़ दर्द हो और अचानक बहुत अधिक लालिमा आ जाए या सूजन आ जाए, रोशनी चारों ओर सामान्य चमक दिखाई दे या अचानक बहुत सारे काले धब्बे चमक दिखाई दें, तो अपन क्या करें कि तुरंत नेत्र विशेषज्ञ से सलाह लें। तो भैया, अगर अपन इन बातों को ध्यान रखेंगे तो अपन अपनी आँखों को बचा सकते हैं। भैया, आँखें अपने जीवन की अनमोल धरोहर हैं। स्वस्थ आँखें हमें शिक्षा, रोजगार, मनोरंजन और दैनिक जीवन के कामों को आसानी से करने में मदद करती हैं। तो इसके लाने का करें कि आँखों की सुरक्षा के लाने स्क्रीन को उपयोग करें, पर्याप्त रोशनी में पढ़ें लिखें, पौष्टिक भोजन करें अच्छी नींद लें, स्वच्छता और नियमित जांच जैसी आदतों को अपन जीवन का हिस्सा बनाएं। जाके अलावा आँखों की सुरक्षा केवल समस्या होने पर नहीं बल्कि बचपन से ही अपन को शुरू कर देनी चाहिए। छोटी छोटी सावधानी अपनी आँखों को लंबी सुरक्षा दे सकते हैं। भैया चर्चा अपनी चलत रहेगी, अब तनक मनोरंजन हो जाए तो सुनत जे लोकगीत।

भैया रहो, अभी अपन ने सुनो ये प्यारा सा लोकगीत, और अब हो गई ये चलवे की बेला। तो सभी किसान भैयारों को सुधांशु भैया की राम राम, जय जवान जय किसान।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम सभा, ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में।
1: सुर्खियों में ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए, हिमालय क्षेत्र में प्राकृतिक आपदाओं से निपटने में पूर्व चेतावनी, आपदा प्रबंधन और क्षेत्रीय सहयोग के महत्व पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के प्रोफेसर सूर्य प्रकाश और आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार।
2: प्रोफेसर सूर्य प्रकाश जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
3: धन्यवाद।
2: प्रोफेसर साहब, सबसे पहले अगर हम बात करें तो हिमालयी क्षेत्र जो है, जो ये इलाके हैं, यहाँ पर फ्लैश फ्लड्स यानी कि अचानक आने वाली बाढ़ है, तो ये अब इतनी गंभीर और अनिश्चित क्यों होती जा रही है? इसमें जलवायु परिवर्तन की क्या भूमिका है और ग्लेशियर के पिघलने या फिर जो निर्माण कार्य चल रहे हैं उनकी या फिर भूमि के इस्तेमाल में जो बदलाव हो रहा है, कौन से ऐसे मूल कारण हैं?
3: देखिए, ये जो हमारी तीव्र गति की बाढ़ है, ये जो पहाड़ी क्षेत्रों में होती है ज्यादातर, और सडन आकस्मिक होती है और काफी सीवियर भी होती है इसके इम्पैक्ट्स। और जलवायु परिवर्तन की वजह से जो हमारी वर्षा की इंटेंसिटी बदल रही है, माप बदल रहा है और उसका डिस्ट्रीब्यूशन बदल रहा है, उसकी वजह से काफी इम्पैक्ट आ रहा है। और दूसरा, जो टेम्परेचर चेंजेज हो रहे हैं जिसकी वजह से ग्लेशियर भी पिघल रहे हैं, ग्लेशियर मेल्ट भी बढ़ रहा है, डिस्चार्ज बढ़ रहा है रिवर्स में, और इसके अलावा हाई अल्टीट्यूड लेवल्स में जो है भूस्खलन की घटनाएं भी काफी घटित हो रही हैं। तो इस तरह से मिलकर, एक तो ग्लेशियर का पिघलना जलवायु परिवर्तन की वजह से, जिसमें हमारे एवरेज टेम्परेचर्स राइज कर रहे हैं, दूसरा हमारे यहाँ जो वर्षा अधिक मात्रा में हो रही है जिसको हम क्लाउड बर्स्ट बोलते हैं, और तीसरा भूस्खलन भी हो रहे हैं इनके साथ। तो बड़े रॉक डिटैचमेंट्स में, जैसे कि हमारी धौलीगंगा रिवर में भी हुआ था पहले, ऋषि गंगा और धौलीगंगा में 7 फरवरी 2021 में, और ऐसे ही सिक्किम में लोनाक लेक में हुआ था 4 अक्टूबर 2023 में। तो इसी तरह की ये घटना इस बार नेपाल में घटित हुई है। मौसम के पूर्वानुमान के बावजूद भी संभावनाएं नहीं पल लगा पाए कि इस तरह की तीव्र गति की बाढ़ आ सकती है, जो जिसका ओरिजिन जो है चाइना से हुआ, और उसकी टाइमली इंफॉर्मेशन ना होने की वजह से काफी लोग उसमें मौत का शिकार हुए
2: जी।
3: और आपदा से ग्रसित हुए, अभी भी काफी लोग लापता हैं। और इस तरह की परिस्थितियां ऐसा नहीं है कि हमारे सामने पहली बार आई हैं, कई बार, जैसे मैंने आपको उदाहरण के तौर पे चमोली का दिया, सिक्किम का दिया, और ऐसे ही और कई इलाकों में भी बाढ़ आती रही है, हिमाचल में भी आई है
2: जी।
3: और जम्मू एंड कश्मीर में भी आई है। तो इस तरह का प्रक्रियाएं प्राकृतिक हैं, परंतु इसमें हमारी मानव दखलंदाजी जो है ज्यादातर हमारे शिकार होने का कारण बनती है, क्योंकि हम ऐसे क्षेत्रों में अपने निवास स्थल भवन बना रहे हैं, संरचनाएं बना रहे हैं जो बाढ़ आपदा से ग्रसित रहती हैं। यहाँ पर अक्सर बाढ़ आती है, और सामान्य मौसम की जानकारी होते हुए भी, जो कि हमारा भारतीय मौसम विभाग जैसे अक्सर 7 दिन पहले या पूरे मानसून सीजन का पूर्वानुमान देता है, और उसके बाद 3 दिन का भी देता है, फिर डेली बेसिस और ओवरली बेसिस पे भी डॉपलर वेदर रडार के जरिए वो सूचनाएं प्रदान करता रहे।
2: ये जो ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड है, यानी कि जिसे हम हिंदी में कह सकते हैं कि हिमनदीय झील के अचानक फटने से आने वाली बाढ़ है, तो इसको क्या मॉनिटर करना इतना कठिन है या फिर इसकी इंटेंसिटी इतनी बढ़ जाती है कि हम इसे जल्दी से पता नहीं लगा सकते हैं, तो ये बड़े पैमाने पर नुकसान अचानक से आकर पहुंचा देती है?
3: देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा
2: जी,
3: कि हम आकस्मिक ऐसी तीव्र बाढ़ में क्यों फंस जाते हैं, जबकि हमारे पास मौसम का तो पूर्वानुमान है, परंतु जो हाई अल्टीट्यूड के, जैसे मैंने कहा, भूस्खलन होते हैं, उनकी सही हमारे पास जानकारियां कई बार नहीं होती हैं। और ग्लेशियर बॉडी, जैसे मैंने बताया चमोली में भी ऐसा ही ग्लेशियर बॉडी डिटैच हुआ था एक बड़े रॉकफॉल के साथ, इसी तरह से ये इस बार भी हुआ कि 1 किलोमीटर से ज्यादा का स्लो फेस गिरा और उसके साथ ग्लेशियर बॉडी भी आई और उसके बाद एक लेक बनी और सडन उसका ब्रेचिंग हुआ। तो ये जानकारी भूस्खलन व संबंधित जो समय अवधि के अनुसार, ये थोड़ा सा मुश्किल होती है। अदरवाइज मौसम की और ग्लेशियर मेल्ट की जानकारियां डिस्चार्ज और एटमॉस्फेरिक मॉनिटरिंग के जरिए हम
2: जी
3: रखते हैं, वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम्स के जरिए।
2: प्रोफेसर साहब, कई बार इस तरह की जब आपदाएं आती हैं तो सवाल ये उठता है कि ये घटना पूरी तरह से प्राकृतिक रही है या इंसानी गतिविधियों ने इसकी इंटेंसिटी बढ़ाई जिसकी वजह से हमें ऐसी विनाशकारी परिस्थिति देखने को पड़ी है। एक वैज्ञानिक नजरिए से आप इसे किस तरह से देखते हैं? क्या हिमालय में मानवीय हस्तक्षेप के बाद बाढ़ के खतरे बढ़ रहे हैं?
3: आपने बिल्कुल सही बोला है, मानवीय दखलंदाजी बाढ़ ग्रसित क्षेत्रों में बढ़ गई है। हम लोग जो भी बाढ़ क्षेत्र थे, जो जैसे हम तीन जोन में फ्लड जोनेशन में बात करते हैं,
2: जी।
3: एक तो है प्रोविटेड जोन जिसमें नदी को हमेशा आना है जाना है और मानसून में उसका बड़ी मात्रा में डिस्चार्ज वहां पे दिखना है, परंतु उसके बाद हमारा एक रेस्ट्रिक्टेड जोन होता है और एक हमारा होता है परमिटेड, परमिटेड विद रेगुलेशंस। हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रोहिबिटेड जोन में ही बना दे रहे हैं और उसकी वजह से हमारे यहाँ ज्यादा नुकसान। अगर आपने देखा हो इस बाढ़ में भी नदी किनारे बहुत सारे घर थे
2: राइट।
3: और नदी के बीचों बीच जो असल में ब्रिजेज भी बन रहे हैं ना, वो हम अभी भी शॉर्टेस्ट स्पैन देख के बना रहे हैं, हम
2: जी
3: सेफ्टी मेजर्स देखते हुए नहीं बना रहे हैं। शॉर्टेस्ट स्पैन में पानी की वेलोसिटी काफी बढ़ जाती है और उसके साथ जब सेडिमेंट आता है तो उसकी इरोजिव कैपेसिटी कई गुना हो जाती है, तो ऐसे में ब्रिज के पियर्स बिल्कुल जो है इरोड हो जाते हैं और साथ ही साथ ब्रिज भी पानी के साथ बहता हुआ जाता है।
2: जी
3: तो इस तरह की परिस्थितियां आती हैं कि आपके रोपवेज हैं या झूला पुल हैं या दूसरे पुल बने हुए हैं, बांध बने हुए हैं या फिर सड़कें हैं, ये सब भी आपदा का शिकार बन जाती हैं क्योंकि उनका जो डिजाइन प्लानिंग कंस्ट्रक्शन ये उस हिसाब से नहीं है जिसमें एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स का ध्यान दिया गया।
2: जी
3: तो अगर हम ये नहीं देखेंगे कि किस तरह की आपदाएं से हमारी जो संरचनाएं या भवन प्रभावित हो सकते हैं और उसके लिए क्या बचाव कार्य हमें करने चाहिए और किस तरह का निर्माण कार्य हमें करना चाहिए, विकास कार्य करना चाहिए, तब तक हम सुरक्षित अपने को महसूस नहीं कर सकते हैं।
2: जी
3: एक चीज और मैं आपको यहाँ पे बताना
2: जी,
3: चाहूंगा,
2: जरूर, जरूर।
3: अगर आपने नेपाल की खबरें सुनी है तो बहुत सारे लोग हैं जो आउटसाइडर्स होते हैं जिनको इस लोकल फिनोमिनाज का आइडिया भी नहीं होता, उन्होंने कभी ऐसी फ्लैश फ्लड्स देखी भी नहीं है, वो इसका ज्यादा शिकार बनते हैं। जो स्थानीय लोग हैं, जन समुदाय होते हैं, उन्होंने कई बार अपने जीवन में इस तरह की प्रक्रियाएं देखी होती हैं तो उनको पता है कि ऐसा कुछ भी घटित होता है तो जान माल का खतरा है और ऊपर की तरफ चले जाना चाहिए और जो बहुमूल्य वस्तुएं हैं उनको भी अपने साथ ऊपर ले जाना चाहिए, वो पहले से तैयारी करते हैं मानसून सीजन के लिए। हमारे यहाँ जो विभाग है उनको भी पहले से मानसून के लिए तैयार किया जाता है और पहले से रिसोर्सेज भी डेडिकेट किए जाते हैं और पहले से प्रीपोजिशनिंग भी करते हैं हम अपने रेस्पॉन्स फोर्सेज की
2: जी।
3: तो ये सब प्रक्रियाएं होते हुए इसके अलावा पूर्व चेतावनी उस पर्टिकुलर भौगोलिक क्षेत्र में दी जाती है ताकि वो लोग पहले से अपने सही सुरक्षित स्थान पर रिक्तिकरण कर पाए।
2: प्रोफेसर साहब, आप नेपाल की बात कर रहे हैं तो मैं इस क्वेश्चन पर आने वाला था। हम अगर नेपाल की बात करते हैं तो ये जो अचानक से बाढ़ आई जिसके बाद हमने देखा बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ, जानमाल का भी वहां पर लॉस हुआ है, तो राहत और बचाव अभियान शायद उस लेवल तक नहीं पहुंच पाए क्योंकि रास्ता नहीं मिला, सड़कें तबाह हुई, पुल और संचार व्यवस्था सब एक साथ बाधित हुए। तो भारत के नजरिए से अगर हम इस फ्लड को देखते हैं तो हमें क्या समझना चाहिए, किस तरह की रणनीति अपनानी चाहिए?
3: देखिए, जैसे मैंने कहा आपका सारा एक्सेसिबिलिटी उसमें मुश्किल हो जाएगी, इसलिए हमें पहले से ये जो रेड अलर्ट देते हैं और जो हाई रिस्क जोन में हम डिफाइन कर देते हैं एरिया को
2: जी,
3: वहां के लिए पूर्व तैयारी की बहुत जरूरत होती है। आपदा के दौरान हम कुछ ज्यादा नहीं कर सकते अगर हमने पूर्व तैयारी नहीं की है, तो उसके हिसाब आप स्ट्रीम एरिया से हेल्प इजिली आ सकती है, डाउनस्ट्रीम एरिया कट ऑफ हो जाते हैं। तो ऐसे में जो नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे तो जो जल का प्रवाह भी बढ़ जाता है और उसकी मात्रा भी बढ़ जाती है और उसका कटाव भी बढ़ जाता है, तो इस वजह से नीचे से ऊपर की तरफ को मदद पहुंचाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। परंतु ऊपरी क्षेत्र है जहां पर हमने पहले से इस तरह की सामग्री एकत्रित की हो, जो हम आपदा से जो प्रताड़ित लोग हैं उनको मदद की के लिए पहुंचा सके तो वो ज्यादा अच्छा रहता है। तो इसीलिए ये प्री पोजिशनिंग की जो मैंने कहा, रिसोर्सेज की भी और पर्सनल की भी, ये बहुत जरूरी होता है।
2: प्रोफेसर साहब, अभी अगर हम वर्तमान चीजों की बात करते हैं तो उपग्रह चित्र होते हैं हमारे पास, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ड्रोन है, दूर संवेदी तकनीक है, इन सब का काफी विकास हो रहा है और इन तकनीकों की मदद से मौसम से संबंधित जो गतिविधियां होती हैं उन पर नजर रखी जाती है। लेकिन क्या आपको लगता है कि अभी भी हमें इस दिशा में बहुत कामकाज करने की जरूरत है, क्योंकि अचानक से जो बाढ़ आ रही है उसकी जानकारी इकट्ठा कर पाना शायद अभी उतना आसान नहीं हो पाया है?
3: बाढ़ एक वार्षिक प्रक्रिया है। मौसम की जानकारी, जैसे आपने भी बोला, काफी अच्छे तरह से आज के दिन में हम कर पा रहे हैं, पर

0: रिलायबल क्रेडिबल पूर्व चेतावनी तंत्र लगाने की जरूरत है। इसके अलावा ये एरियाज काफी कठिन होते हैं पहुंच के हिसाब से,
1: जी
0: और वहां पर एक कार्य करना, तकनीक का इस्तेमाल करना और भी मुश्किल होता है। तो इसलिए हमको वहां पर समुदाय आधारित जोखिम आपदा प्रबंधन की ज्यादा जरूरत है। वहां पे समुदाय आधारित पूर्व चेतावनी तंत्र लगाने चाहिए जो लोकल कम्युनिटी खुद से ऑपरेट कर सके और पहले से अलर्ट्स अपने आप से जारी कर सके और वहां के लोगों को इवैक्यूएट कर सके। तो स्थानीय कम्युनिटी बेस्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम्स की भी जरूरत है, जहां हम सैटेलाइट बेस्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम या एआई बेस्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम को प्रमोट करें। एआई हमारे लिए हेल्पफुल है क्योंकि हम पे इसमें बहुत सारा डाटा एक साथ मल्टीपली और डिफरेंटली यूज कर सकते हैं प्रेडिक्शंस के लिए, अर्ली वार्निंग सिस्टम्स के लिए। परंतु सैटेलाइट हो, एआई हो या और कोई भी सिस्टम हो, उसका फायदा तब है जब स्थानीय जो जनता है, जन
1: जी
0: समुदाय है, उस तक वो सूचना पहुंचे जो उससे प्रभावित होने वाले हैं, ताकि वो अपने बचाव के लिए उचित कार्रवाइयां कर सके।
1: प्रोफेसर सूर्य प्रकाश, जैसे आपने जिक्र किया कि लोकल कम्युनिटी का सहयोग बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस चीज में, तो हमें इस चीज की जरूरत है कि हम ज्यादा से ज्यादा जानकारी उन तक पहुंचाएं और साथ में ही ऐसी व्यवस्था करें कि अगर इस तरह की कोई आपदा आती है तो सबसे पहले मानवीय और तकनीकी सहायता जल्द से जल्द उपलब्ध कराई जा सके।
0: बिल्कुल सही बोला आपने। हमारे यहाँ राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जो है, वहां से एक ऐप को लॉन्च किया गया, सचेत ऐप को,
1: जी
0: जो जियो फेंस्ड है और मल्टीलिंगुअल है। तो लोकल एरियाज के लिए इंफॉर्मेशन देने के लिए पुश मैसेजिंग स्कीम है। तो इस तरह के जो एप्स हैं, जिसको हम कॉमन रनर प्रोटोकॉल के जरिए अपनी आपदा प्रबंधन जो इकाइयां हैं उनको भी देते हैं, और इसके अलावा हर व्यक्ति तक पहुंचाने की हम कोशिश करते हैं, क्योंकि आजकल हर घर में एक ना एक व्यक्ति के पास तो मोबाइल रहता ही है।
1: जी
0: तो मोबाइल के जरिए जो हम ये आउटरीच की कोशिश कर रहे हैं और पूरक चेतावनी देने की कोशिश कर रहे हैं, वो बहुत ही अच्छी है। इसके अलावा कई और भी स्मार्ट एप्स डेवलप हो रही हैं, जैसे तमिलनाडु ने टीएन स्मार्ट बनाया, ऐसे ही असम ने फ्लूज करके मॉडल बनाया फ्लड अर्ली वार्निंग सिस्टम के लिए, मुंबई चेन्नई ने भी आई फ्लूज करके बनाया, और हमारे सेंट्रल वाटर कमीशन ने भी एक ऐप लॉन्च करी फ्लड वॉच करके।
1: जी
0: तो इस तरह की सारी ये जो इंफॉर्मेशन है, अगर सबके पास हो, और इसके अलावा अगर आप फंस जाते हो सबके बावजूद भी, तो आप डिसास्टर हेल्पलाइन 112 पे कॉल कर पाए।
1: प्रोफेसर सूर्य प्रकाश जी, इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और हमसे चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी।
2: अभी आप सुन रहे थे हिमालय क्षेत्र में प्राकृतिक आपदाओं से निपटने में पूर्व चेतावनी, आपदा प्रबंधन और क्षेत्रीय सहयोग के महत्व पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के प्रोफेसर सूर्य प्रकाश और आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
3: सुर्खियों में

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुर्खियों में, ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए प्रस्तुत है फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम फिल्म संगीत, और कार्यक्रम का पहला गीत आपके लिए प्रस्तुत है फिल्म यादें से, आशा भोसले, उदित नारायण और सुनिधि चौहान की आवाज में, साथ है सुखविंदर सिंह।
1: जब दिल मिले मिले मिले दिल मिले, तब गुल खिले खिले खिले गुल खिले, जब दिल मिले तब गुल खिले, जब गुल खिले तब दिल मिले, मिले मिले मिले मिले दिल मिले,

0: रिश्ता करें।
1: आनु मलिक का संगीत आनंद बख्शी के लिखे बोल, सुनिधि चौहान, सुखविंदर सिंह, आशा भोसले और उदित नारायण की आवाज में गीत सुना अपने फिल्म यादें से। कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म फिजा से सुनवा रहे हैं आपको सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाज में।

अनु मलिक का संगीत गुलजार के लिखे बोल, सुनने का मार अलका याग्निक की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म फिजा से। कार्यक्रम का अगला गीत अलका याग्निक और अभिजीत की आवाज़ में, फिल्म का नाम है आप मुझे अच्छे लगने लगे।

राजेश रोशन का संगीत इब्राहिम अश्क के लिखे बोल, अलका याग्निक और अभिजीत की आवाज में गीत सुना आपने फिल्म आप मुझे अच्छे लगने लगे से। कार्यक्रम का अगला गीत आपके लिए प्रस्तुत है लकी अली और राम्या की आवाज में, फिल्म का नाम कहो ना प्यार है।

0: राजेश रोशन का संगीत इब्राहिम अश्क के लिखे बोल, रम्या और लकी अली की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म कहो ना प्यार है से। और इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। हमारा अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में होगा, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: कभी हंसाकर, कभी रुलाकर, कभी कहानी बनकर तो कभी कविता बनकर, कभी कोई तराना तो कभी जिंदगी नामा, कभी खबरें हमारी जिंदगी में रंग भरे, मन की बात, जन जन की बात, 1936 से आकाशवाणी आपके।

0: हर शनिवार शाम 7:45 से आकाशवाणी भोपाल पर सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम ज्ञान।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। हमारा अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा, कृपया प्रतीक्षा करें।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। भारत ने बाढ़ प्रभावित नेपाल के लिए तीसरी उड़ान से 10 टन मानवीय सहायता भेजी। विदेश मंत्रालय ने कहा 320 भारतीय नागरिकों से अब भी कोई संपर्क नहीं। नेपाल तिब्बत में विनाशकारी बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 547 हुई। सीमा के दोनों तरफ 1500 से अधिक लोग अब भी लापता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की 4 दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगे। सरकारी उपायों से बाजार में चीनी की उपलब्धता बढ़ी। मिलों से सीधे प्राप्त चीनी की कीमतों में लगभग 20% की गिरावट। देश के औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर इस वर्ष जुलाई में 6.7% रही। और बुडापेस्ट स्क्वाश ओपन के फाइनल में आज रात भारत के वेलवन सेंथिल कुमार का सामना हंगरी के बालाज फारकश से।

0: अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया है कि नेपाल में बुधवार को अचानक बाढ़ के बाद 320 भारतीय नागरिकों से कोई संपर्क नहीं हो सका है। उन्होंने कहा कि अन्य देशों के भारतीय मूल के लगभग 100 लोगों से भी संपर्क नहीं हो पा रहा है। श्री जायसवाल ने नई दिल्ली में बताया कि तमिलनाडु के 21 भारतीय नागरिक बाढ़ प्रभावित इलाकों से नई दिल्ली पहुंच गए हैं।
1: 21 भारतीय नागरिक जो फंसे हुए थे कैलाश मानसरोवर की यात्रा पे गए थे, कल काठमांडू पहुंचे उस क्षेत्र से जहां पर ये हादसा हुआ, और कल हमारे राजदूत उनसे मिले, उनका हालचाल पूछा और हमारी एम्बेसी ने उनके लिए ये ट्रैवल अरेंजमेंट बनाया। आज वो दिल्ली पहुंच चुके हैं। उसके अलावा 63 भारतीय नागरिक जो त्रिशूली हाइड्रो पावर में काम करते हैं, त्रिशूली 1, उनको भी वहां से बचाया गया है। 96 भारतीय नागरिक चीन से नेपाल की तरफ आ चुके हैं और ये सभी लोग सुरक्षित हैं।
0: इस बीच भारत ने नेपाल को मानवीय सहायता बढ़ा दी है। 10 टन मानवीय सहायता लेकर तीसरी उड़ान काठमांडू के लिए रवाना हो गई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए ये जानकारी दी। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि इस उड़ान में डॉक्टरों, पैरामेडिक्स और टनल रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए रेकी टीम के 11 सदस्य भी शामिल हैं। नेपाल और तिब्बत में विनाशकारी बाढ़ से मृतकों की संख्या बढ़कर 547 हो गई है। 1545 लोग अब भी लापता हैं। राहत और बचाव दल लापता लोगों की तलाश कर रहे हैं। दक्षिण पश्चिम चीन में 5.1 तीव्रता के भूकंप के बाद बाढ़ की आशंका फिर बढ़ गई है। अधिकारियों ने प्रभावित जिलों से 800 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। भोटे कोशी नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण त्रिशूली क्षेत्र के निवासियों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने का आदेश दिया गया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नेपाल से सुरक्षित वापस आए तमिलनाडु के 21 तीर्थयात्रियों से मुलाकात की। ये तीर्थयात्री कल बाढ़ प्रभावित क्षेत्र से काठमांडू पहुंचे थे और आज दोपहर नई दिल्ली पहुंचे। डॉक्टर जयशंकर ने नेपाली सेना और सरकार को इसके लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने नेपाल के विदेश मंत्री से बात की और हर संभव सहायता देने की पेशकश की।
2: They told me about exactly what happened to them, how the floods came.
3: उन्होंने मुझे बताया कि उनके साथ असल में क्या हुआ था और बाढ़ कैसे आई थी। वे बहुत आभारी हैं, खासकर नेपाल सेना के, जिन्होंने उस बेहद मुश्किल जगह से निकालने के लिए इतना बड़ा प्रयास किया। इसलिए अभी हमारा प्रयास लोगों की राहत और बचाव कार्यों में नेपाल की मदद करने का है। आज सुबह ही मैंने नेपाल के विदेश मंत्री से बात की है। हमने उन्हें कई तरह की सहायता की पेशकश भी की है।
2: We have given them range of support offers.
0: सिक्किम सरकार नेपाल में बाढ़ की स्थिति पर कड़ी नजर रख रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सरकार वहां फंसे सिक्किम निवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए समुचित कदम उठा रही है।
4: सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तवांगोले ने सिक्किम के 8 निवासियों से फोन पर बात की। जानकारी मिली है कि सभी 8 लोग सुरक्षित हैं। फंसे हुए सिक्किम का निवासियों के लिए सिक्किम सरकार ने कल नेपाल फ्लैश फ्लड टास्क फोर्स का गठन किया है। टास्क फोर्स को स्थिति से प्रभावित सिक्किम के नागरिकों के लिए आवश्यक सहायता के समग्र समन्वय, निगरानी और सुविधा प्रदान करने की जिम्मेवारी सौंपी गई है। टास्क फोर्स भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के साथ नियमित समन्वय बनाए हुए है और संबंधित सिक्किम निवासियों तथा उनका परिवारों के साथ भी लगातार संपर्क में। मोइनक चटर्जी, आकाशवाणी समाचार, गैंगटॉक।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
5: मेरी बैंक हमेशा मेरे साथ चलती है। सुबह उठती हूँ तो पैसे जमा कर आती है, कस्टमर ज्यादा हो जाते हैं तो पूरा गल्ला संभाल लेती है, आधी रात को भी उठा के बताती है कि मैडम लक्ष्मी फल भंडार का पेमेंट आ गया है। जनधन बैंक खाता क्या मिला मुझे, तो उंगलियों के छोर पर बीमा, पेंशन, डीबीटी, सारी बैंकिंग सुविधाएं मिल गई हैं।
6: 12 साल में 59 करोड़ जनधन खाते खुले, जिसमें 56% खाते तो सिर्फ महिलाओं के हैं। पीएम जनधन योजना के 12 साल, ज्यादा बचत, ज्यादा काम।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के आज 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। ये देश में वित्तीय समावेशन की दिशा में प्रमुख पड़ाव है। एक रिपोर्ट।
7: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में जनधन योजना के अभूतपूर्व परिवर्तनकारी परिणामों का प्रभाव बेमिसाल है। श्री मोदी ने कहा कि जनधन योजना वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और देश के लोगों को सक्षम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इस योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में आज ही के दिन किया था। योजना के तहत अब तक 59 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं। ये योजना सभी भारतीयों के लिए बैंकिंग पहुँच को बना रही है। योजना के तहत महिलाओं के लगभग 56% खातों सहित 78% खाते ग्रामीण या अर्ध शहरी क्षेत्रों में खोले गए हैं। दीपेंद्र की रिपोर्ट।

0: के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की 4 दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री मोदी उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर ताशकंद का दौरा करेंगे। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति मिर्जियोयेव के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत करेंगे।
2: भारत और उज्बेकिस्तान ने 2011 में अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। तब से द्विपक्षीय संबंध कई क्षेत्रों में व्यापक रूप से बढ़े हैं। प्रधानमंत्री की आगामी यात्रा भारत और उज्बेकिस्तान के बीच करीबी, बहुआयामी और बढ़ते राजनीतिक साझेदारी को बढ़ावा देगी। चर्चा के दौरान आपसी सहयोग के कई इलाकों को शामिल किए जाने और द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के नए रास्ते तलाशने की उम्मीद है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद, उज्बेकिस्तान।
1: सरकार ने कहा है कि देश में चीनी की कोई कमी नहीं है और उचित कीमतों पर पर्याप्त मात्रा में चीनी उपलब्ध कराने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जाएंगे। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने बताया कि हाल के दिनों में चीनी की कीमतों में लगभग 20% की गिरावट आई है, जबकि खुदरा चीनी की कीमतें भी कम होने लगी हैं।
3: पाक्षिक कोटा के अंतर्गत चीनी मिलों को आवंटित मात्रा से कम 40% चीनी पहले सप्ताह में और शेष मात्रा अगले सप्ताह में बेचनी होगी। मंत्रालय के अनुसार नए सीजन के लिए गन्ने की पेराई 15 अक्टूबर से शुरू होगी। अक्टूबर महीने के दौरान 10 लाख टन से अधिक चीनी उत्पादन होने की उम्मीद है। सरकार ने चीनी मिलों को अक्टूबर में उत्पादित चीनी को बिना किसी प्रतिबंध के बेचने की भी अनुमति दी है, जिससे नए सीजन का उत्पादन जल्द से जल्द घरेलू बाजार में उपलब्ध हो सके। नवंबर में चीनी का उत्पादन लगभग 45 लाख टन रहने की उम्मीद है, जिससे घरेलू खपत के लिए चीनी की अतिरिक्त आपूर्ति में पर्याप्त वृद्धि होगी। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: कृषि, किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पंजाब के किसानों को आश्वासन दिया है कि केंद्र सरकार उनके हितों से कोई समझौता नहीं करेगी और किसी भी देश के साथ किए गए हर समझौते में किसानों के हितों को सर्वोपरि रखा जाएगा। अमृतसर जिले के बाबा बकाला में आज एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी समेत विपक्षी दल ये झूठा प्रचार कर रहे हैं कि केंद्र सरकार किसानों के हितों के खिलाफ समझौते कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। कृषि मंत्री ने विशेष रूप से पंजाब सरकार को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू न करने के लिए जिम्मेदार ठहराया।
4: भारत सरकार ने योजना बनाई किसानों की आमदनी बढ़ाने की, आय बढ़ाने की, हम पंजाब में भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपकी भ्रष्ट सरकार के कारण हमारी कोशिशें सफल नहीं हो रही। पंजाब के कृषि के लिए एक नया रोड मैप टॉप के साइंटिस्टों की टीम बनाएगी। हम पंजाब की कृषि की दशा बदलेंगे, दिशा बदलेंगे और किसान की हालत बदलेंगे।
1: परीक्षा सुधारों के लिए गठित उच्चस्तरीय कार्यबल ने विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों सहित सभी हितधारकों से सुझाव आमंत्रित किए हैं। सुझाव 13 सितंबर तक वेबसाइट, व्हाट्सएप या फोन नंबर 1800184747 के माध्यम से भेजे जा सकते हैं। ये सुझाव ईमेल examreformstaskforce@dopt.gov.in के माध्यम से भी भेजे जा सकते हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: परीक्षा के संचालन, सुरक्षा, जवाबदेही और संस्थागत व्यवस्थाओं के अलावा परीक्षा में अनुचित साधनों का पता लगाने, रोकथाम करने और उनके समाधान सहित अन्य संबंधित क्षेत्रों के बारे में सुझाव आमंत्रित किए गए हैं। कार्यबल संस्थागत प्रणालियों और प्रक्रियाओं को मजबूत करने, परीक्षा की निष्पक्षता, उपयुक्त तकनीकों को लागू करने और विद्यार्थियों के हितों की रक्षा करने के उपायों की जाँच कर रहा है। इसका उद्देश्य मजबूत, सुरक्षित, पारदर्शी, न्यायसंगत और भविष्य के लिए तैयार सार्वजनिक परीक्षा प्रणाली विकसित करना है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा परीक्षाओं सहित सार्वजनिक परीक्षाओं के सुगम संचालन और प्रशासन से संबंधित व्यापक सुधारों की जांच के लिए प्रसिद्ध प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ नंदन निलेकणी की अध्यक्षता में कार्यबल का गठन किया गया है। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं चंद्रशेखर शर्मा।
1: इस बीच राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने UGC नेट 2026 की 84 विषयों की अंतिम उत्तर कुंजी जारी कर दी है। उत्तर कुंजी UGCnet.NTA.NIC.IN पर उपलब्ध है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया है। ये नोटिस मालदा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में इस महीने 60 नवजात शिशुओं की मौत की खबर पर जारी किया गया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने उत्तर प्रदेश में बलिया जिले के सरकारी स्कूल में पिछले 2 वर्षों से 6 से 8 कक्षा के विद्यार्थियों को दोपहर का भोजन नहीं परोसे जाने के मामले में मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया है। आयोग ने संज्ञान लेते हुए 2 सप्ताह के भीतर इस मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in

0: IN और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं। ये आकाशवाणी है। देश में इस वर्ष जुलाई में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP द्वारा मापी गई औद्योगिक उत्पादन वृद्धि दर वार्षिक आधार पर 6.7% रही। इन आंकड़ों से संकेत मिलता है कि इस दौरान औद्योगिक गतिविधियों में अच्छी गति से वृद्धि जारी रही। हालांकि इस अवधि में विकास की गति जून के संशोधित स्तर से कम रही। एक रिपोर्ट।
1: जून में IIP वृद्धि दर 7.3% से बढ़कर 8.8% पहुंच गई थी, जो यह भी संकेत देती है कि जुलाई तिमाही में प्रवेश करने वाली औद्योगिक गति शुरू में अनुमान से अधिक मजबूत रही। आज जारी सरकारी आंकड़ों के अनुसार IIP सूचकांक में सबसे अधिक महत्व रखने वाले विनिर्माण क्षेत्र में जुलाई में 7.3% की वृद्धि हुई, जबकि बिजली और गैस की आपूर्ति में 8.7% की वृद्धि दर्ज हुई। जल आपूर्ति, सीवरेज और अपशिष्ट प्रबंधन में 7.4% की वृद्धि हुई। हालांकि खनन क्षेत्र पिछले महीने 0.9% की नकारात्मक वृद्धि दर्ज करते हुए पिछड़ गया। इंतखाब की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशेष शुक्ला।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज से 6 दिन की अमेरिका यात्रा पर हैं। यात्रा के दौरान वित्त मंत्री शिकागो, एशविल और न्यूयॉर्क जाएंगी। एशविल में श्रीमती सीतारमण की अध्यक्षता में G20 सदस्य देशों के वित्त मंत्री, केंद्रीय बैंक गवर्नर तथा वरिष्ठ अधिकारी वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। जम्मू कश्मीर में वार्षिक श्री अमरनाथ जी यात्रा आज पारंपरिक छड़ी मुबारक की रस्मों के साथ संपन्न हो गई। ये यात्रा 3 जुलाई को शुरू हुई थी। इस वर्ष 4,80,000 से ज्यादा तीर्थयात्रियों ने पवित्र गुफा में दर्शन किए। भारत के विल्वन सेंथिल कुमार आज रात बुडापेस्ट स्क्वाश ओपन के फाइनल में हंगरी के खिलाड़ी बालाज फारकश से खेलेंगे। सेमीफाइनल में कल सेंथिल कुमार ने भारत के ही वीर चोटरानी को हराया था। नॉर्वे के सम्राट हेराल्ड पंचम का आज ओस्लो में निधन हो गया। वे 89 वर्ष के थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने इस वर्ष की शुरुआत में नॉर्वे की यात्रा के दौरान सम्राट हेराल्ड पंचम से अपनी मुलाकात को याद किया। और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने ओडिशा के कुछ इलाकों में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कल बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, मैदानी पश्चिम बंगाल, झारखंड, उत्तराखंड और उत्तर पूर्वी राज्यों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इस बीच दिल्ली के कुछ हिस्सों में आज हल्की बारिश हुई। कल राजधानी में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने बाढ़ प्रभावित नेपाल के लिए तीसरी उड़ान से 10 टन मानवीय सहायता भेजी। विदेश मंत्रालय ने कहा 320 भारतीय नागरिकों से अब भी कोई संपर्क नहीं। नेपाल तिब्बत में विनाशकारी बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 547 हुई। सीमा के दोनों तरफ 1500 से अधिक लोग अब भी लापता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की 4 दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगे। सरकारी उपायों से बाजार में चीनी की उपलब्धता बढ़ी। मिलों से सीधे प्राप्त चीनी की कीमतों में लगभग 20% की गिरावट। देश के औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर इस वर्ष जुलाई में 6.7% रही। और बुडापेस्ट स्क्वाश ओपन के फाइनल में आज रात भारत के वेलवन सेंथिल कुमार का सामना हंगरी के बालाज फारकश से होगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम मनोज सिंह राणा विद द न्यूज एट 9। The headlines: India sends third flight carrying 10 tons of humanitarian assistance to flood-hit Nepal. External Affairs Ministry says 320 Indian nationals remain uncontactable. Death toll in devastating Nepal-Tibet flash floods rises to 547. Over 1,500 people remain missing on both sides of the border. Prime Minister Narendra Modi to embark on a 4-day visit to Uzbekistan and Kyrgyzstan tomorrow. Government measures improve market availability of sugar, ensure faster movement, ex-mill sugar prices fall by around 20%. India's index of industrial production records growth of 6.7% in July this year. And India's beloved Senthil Kumar to

लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत आनंद बख्शी के लिखे बोल, मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म आया सावन झूमके से। कार्यक्रम का अगला गीत आपके लिए प्रस्तुत है लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म हकीकत से, और इस गीत की फरमाइश हमें मिली है बेरड़ी से। लिखने वाले हमारे श्रोता हुकुम करमरकर, सुनीता करमरकर, हार्दिक, प्राची और तनु करमरकर, रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, और आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, शौरव, शाइना और निवान शर्मा। तो आप सभी श्रोताओं के लिए प्रस्तुत है ये गीत आपकी पसंद का।

मदन मोहन का संगीत कैफी आजमी के लिखे बोल लता मंगेशकर की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म हकीकत से। कार्यक्रम का अगला गीत आपके लिए प्रस्तुत है किशोर कुमार की आवाज़ में फिल्म नमक हलाल से और इस गीत की फरमाइश हमें मिली है सिंहपुर बड़ा से राजेश नेमा, संगीता भावना और प्राची नेमा की तरफ से। गोला बाजार बक्सर से हमें लिखा है श्रद्धानंद आर्य, अभयनंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज, प्रमोद, रोहित और मोहित ने। गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर बिरक, जैतेक बिरक और मीका बिरक ने। तो आप सभी श्रोताओं की देर प्रस्तुत है यह अगला गीत फिल्म नमक हलाल से, आवाज किशोर कुमार की।

लो भैया हम अपने पैरों के ऊपर खड़े हो गए और मिला ली है ताल, दबा लेगा दांतों तले उंगलियां

मपी रहरी का संगीत प्रकाश मेहरा और अनजान के लिखे बोल किशोर कुमार की आवाज में गीत सुना आपने फिल्म नमक हलाल से। और इसी गीत के साथ अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। हमारा पता नोट करें, कार्यक्रम आपकी फरमाइश द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी श्यामला हिल्स भोपाल मध्य प्रदेश पिन कोड 462002। नमस्कार, ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपकी फरमाइश। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में लीजिए प्रस्तुत है देवव्रत चौधरी का सितार वादन, राग रागेश्री।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में अभी आपने सुना देवव्रत चौधरी का सितार वादन राग राग्यश्री। हमारा अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में होगा, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: पंछी बोले पते की बात, जंगल धरती की सौगात, आओ मिलकर पेड़ लगाएं, धरती की खुशियां लौटाएं।
1: जो होंगे जंगल तो आएंगे बादल, बरसेगा पानी, धरती की चुनर हो जाएगी धानी, और पंछी छेड़ेंगे सुरीली तान।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। हिंदी में समाचार कुछ ही पलों में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: बड़ी समाचार के साथ मैं आशुतोष मिश्र। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि नेपाल में बुधवार को अचानक आई बाढ़ के बाद 320 भारतीय नागरिकों से संपर्क नहीं हो सका है। उन्होंने कहा कि अन्य देशों के भारतीय मूल के लगभग 100 लोगों से भी संपर्क नहीं हो पा रहा है। श्री जायसवाल ने नई दिल्ली में बताया कि तमिलनाडु के 21 भारतीय नागरिक बाढ़ प्रभावित इलाके से नई दिल्ली पहुंच गए हैं।
2: 21 भारतीय नागरिक जो फंसे हुए थे कैलाश मानसरोवर की यात्रा पे गए थे, कल काठमांडू पहुंचे उस क्षेत्र से जहां पर ये हादसा हुआ, और कल हमारे राजदूत

0: खुद उनसे मिले, उनका हालचाल पूछा और हमारी एम्बेसी ने उनके लिए ये ट्रैवल अरेंजमेंट बनाया। आज वो दिल्ली पहुंच चुके हैं। उसके अलावा आप 63 भारतीय नागरिक जो त्रिशूली हाइड्रो पावर में काम करते हैं, त्रिशूली 1, उनको भी वहां से बचाया गया है। 96 भारतीय नागरिक चीन से नेपाल की तरफ आ चुके हैं और ये सभी लोग सुरक्षित हैं।
1: इस बीच भारत ने नेपाल को मानवीय सहायता बढ़ा दी है। 10 टन मानवीय सहायता लेकर तीसरी उड़ान काठमांडू के लिए रवाना हो गई है। नेपाल और तिब्बत में विनाशकारी बाढ़ से मृतकों की संख्या बढ़कर 547 हो गई है। 1545 लोग अब भी लापता हैं। दक्षिण पश्चिमी चीन में 5.1 तीव्रता के भूकंप के बाद फिर से बाढ़ की आशंका बढ़ गई है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के आज 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। यह देश में वित्तीय समावेशन की दिशा में प्रमुख पड़ाव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में जनधन योजना के अभूतपूर्व परिवर्तनकारी परिणामों का प्रभाव बेमिसाल है। श्री मोदी ने कहा कि जनधन योजना वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और देश के लोगों को सक्षम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की 4 दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री मोदी उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर ताशकंद का दौरा करेंगे। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति मिर्जियोयेव के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत करेंगे। भारत और उज्बेकिस्तान ने 2011 में अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। तब से द्विपक्षीय संबंध कई क्षेत्रों में व्यापक रूप से बढ़े हैं। सरकार ने कहा है कि देश में चीनी की कोई कमी नहीं है और उचित कीमतों पर पर्याप्त मात्रा में चीनी उपलब्ध कराने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जाएंगे। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने बताया कि हाल के दिनों में चीनी की कीमतों में लगभग 20% की गिरावट आई है, जबकि खुदरा चीनी की कीमतें भी कम होने लगी हैं। परीक्षा सुधारों के लिए गठित उच्च स्तरीय कार्यबल ने विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों सहित सभी हितधारकों से सुझाव आमंत्रित किए हैं। सुझाव 13 सितंबर तक वेबसाइट, व्हाट्सएप या फोन नंबर द्वारा भेजे जा सकते हैं। इस बीच राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने यूजीसी नेट 2026 की 84 विषयों की अंतिम उत्तर कुंजी जारी कर दी है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पंजाब के किसानों को आश्वासन दिया है कि केंद्र सरकार उनके हितों से कोई समझौता नहीं करेगी और किसी भी देश के साथ किए गए हर समझौते में किसानों के हितों को सर्वोपरि रखा जाएगा। अमृतसर जिले के बाबा बकाला में आज एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी समेत विपक्षी दल यह झूठा प्रचार कर रहे हैं। देश में इस वर्ष जुलाई में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP द्वारा मापी गई औद्योगिक उत्पादन वृद्धि दर वार्षिक आधार पर 6.7% रही। इन आंकड़ों से संकेत मिलता है कि इस दौरान औद्योगिक गतिविधि में अच्छी गति से वृद्धि जारी रही। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज भारत में यूरोपीय संघ के निवर्तमान राजदूत हर्वे डेल्फिन को विदाई दी। डॉक्टर जयशंकर ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने और दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी मजबूत बनाने में निवर्तमान राजदूत के योगदान की सराहना की। मौसम विभाग ने ओडिशा के कुछ इलाकों में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कल बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, मैदानी पश्चिम बंगाल, झारखंड, उत्तराखंड और उत्तर पूर्वी राज्यों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इस बीच दिल्ली के कुछ हिस्सों में आज हल्की बारिश हुई। कल राजधानी में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। भारत के वेलवन सेल्थिन कुमार आज रात PSA बुडापेस्ट स्क्वाश ओपन के फाइनल में हंगरी के खिलाड़ी बालाज फारकस से खेलेंगे। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेनू कटारिया। India has stepped up humanitarian assistance to Nepal affected by flash floods as the third flight carrying 10 tons of humanitarian assistance has departed for Kathmandu. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar informed this in a social media post. The minister said that the assistance includes portable generator sets, dignity kits, food packets and water purification tablets. Dr. Jaishankar said that an 11-member team of doctors, paramedics and Reiki team for tunnel rescue operations is also